और कोई तलाश है जिंदगी तो कोई साथी चाहिए। अब हम चलते हैं कुमार शानू के बांट में एक बार फिर मोहम्मद अजीज की ओर।

तो मोहम्मद अजीज ने कहा कि ये गम ना होता तो वो शराब कभी नहीं पीता। तो उसके बाद हम चलते हैं टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू एंड अलका याग्निक।

और दोस्तों अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज का ये सॉन्ग थे। उसके बाद हम चलते हैं एक बार और आलका याग्निक कुमार शानू के उरे और हमारे यारो तो हम चलते हैं एवरी ग्रीन कुमार शानू एंड आलका याग्निक।

और बरसात में भी आग लग जाती है दोस्तों, तो ये सब तो प्यार की बातें होती है यार। शासक से तख्त में जो सदाबहार सॉन्ग है और वो है कुमार शानू अलका यांगनी का एक गीत, आपको हम सुनाते हैं। और दिलबर के बाद में हम क्या आते हैं,

0: और दोस्तों मोहम्मद अजीज अनुराधा पौडवाल का ये सॉन्ग है।
1: तो आज का सॉन्ग है और ये है फिल्म के नाम है मिस मेरी की ओर हम जाते हैं।

0: to enjoy ever.
1: और रात के मुसाफिर चंदन जरा बता दे मेरा कसूर क्या है और ये फैसला आप जरूर सुना दे. हम चलते हैं एक और राज कपूर नरगिस की ओर जो अपनी जमाना में भैया योगेश बहुत मस्त था ना. तो ये सब गीत हम आप लोग को आज ओल्ड एंड गोल्ड सुनाएंगे और इस प्रोग्राम जो है तो हम और यूसेफ बना रहे हैं. तो दोस्तों और चलते हैं और आगे को इस गीत के ओर क्या हो गया क्या नहीं होगा तो आओ चला जाए. और वो है आजा सनम.

जरा मेरे हाथ थाम कर देखो, तुम जरा मेरे हाथ थाम कर तो देखो, जल जाएगी लोग महफिल में चिरागों की तरह। तो ये सब कुछ शेर भी आज हम आप लोग को कितने दिनों बाद सुनाते हैं। किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे, किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे कि दर्द की कीमत क्या है, कि दर्द की कीमत क्या है। हमने हंसते हुए कहा, पता नहीं कुछ अपने मुफ्त में दे गई। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और ये अगला गीत है ये मर्द बड़ा दिल जर्द नाटकी लता जी परमाश्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है, और मूवी के नाम है मिस मैरी।

ये मर्द बड़ी दिल जर्द बरी नच जे लता जी परमान श्री मोहम्मद रफी मिस मेरी का मूवी का नाम है। दोस्तों आज प्यार के मूड में हम आ गए हैं, कुछ शायरी और शायरी के मूड में भी हम हैं। तो हम चलते हैं, कहते हैं कि क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं कि यही कहते हैं कि

मोहब्बत आज भी बरकरार है, क्योंकि एक तरफ प्यार आज भी वफादार है, एक तरफ प्यार भी आज वफादार है।

जिंदगी मिला ना वफा मिला, ना जिंदगी मिला ना वफा मिली, क्यों हर खुशी हमसे खफा मिली। झूठी मुस्कान लिए दर्द छुपाते रहे, सच्ची मोहब्बत की क्या खूब सजा मिली। तो सच्ची मोहब्बत की सजा तो कभी कभी मिल जाते हैं हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और आज हम ओल्ड एंड गोल्ड की और यानी मूड में है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला लवली प्यार ओल्ड एंड गोल्ड जोंग की ओर, और ये है और नाइटी मुकेश राज कपूर इस फिल्म में काम किए हैं, और मौफी के नाम है श्रीमन सत्यवती। ये पुराना गीत है दोस्तों, तो आप लोग को चलो माइटी मुकेश की आवाज में।

और द हार्ट ऑफ द मिलियंस मुकेश। मूवी का नाम है श्रीमान सच्चेवती, जिसमें राज कपूर ने काम किया है दोस्तों। और उसके बाद तो हम चलते हैं शायर और शायरी की मूड में तो हम हैं दोस्तों, लेकिन आपको हम क्या क्या सुनाएंगे क्या नहीं सुनाएंगे। कहते हैं क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक तरह नाम रहे जुबान पर, एक तरफ नाम रहे जुबान पर, और जैसे कि चांद रहे आसमान पर। हा, ये तो खूब है दोस्तों, एक तरह नाम रहे जुबान पर जैसे चांद रहे आसमान पर। ये जिंदगी है दोस्तों, कौन सी बात है तुम्हें ऐसी जो मुझे तुम इतनी अच्छे लगती हो। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो है मूवी के नाम है तकदीर। मूवी के नाम है तकदीर और गीत के नाम है बोतल में क्या होता है, कभी शराब होता है लेकिन यहां कुछ और बात है। परमाश्री मोहम्मद रफीर का गीत है।

होगे, दौड़ तो प्याले फेंक तो बोतल, मेरे पीछे होलो राम बोलो राम बोलो राम बो बो बो बोलो। हाय बोतल में बंद जवान।

0: आप दरवाजा खोलो, राम बोलो राम बोलो राम बोलो।
1: और राम बोलो बोतल में बंद जवानी फरमान श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये सॉन्ग है दोस्तों। तो कहते हैं मत पूछो मेरे दिल को क्या हो गया है, दोस्तों मत पूछो मेरे दिल को क्या हो गया है, तुझे देखते ही तेरा ही हो गया है। तो ये कुछ और बात है ना हमारे यारो, एक तू ही है आदत मेरी, एक तू ही है आदत मेरी, इस दिल को है जरूरत तेरी। तो कुछ प्यार भरी गीतों आपको हम सुनाते हैं, तो हम चलते हैं अगला सॉन्ग की ओर। और ये है परमाश्री मोहम्मद रफी आशा भोसले का सॉन्ग, मूवी के नाम है अदालत। अदालत ही अदालत, जिसमें जी प्रदीप इस गीत को गाया है नरगिस के साथ में। और हम चलते हैं ये सॉन्ग की ओर।

जब दिन हसीने दिल हो जवां परमा श्री मोहम्मद रफी का सॉन्ग है तो जलते ही दोस्तों प्यार के मूड में आ भी होए हम भी है तो कुछ प्यार के बात करते हैं। किस्मत वाले होते हैं वो लोग दोस्तों, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलते हैं। और दोस्तों हम चलते हैं एक गीत के और है, टैक्सी स्टाइल 1958 का परमा श्री रफी का और आशा जी का ये सॉन्ग है।

है तो चले आओ, तो इसके बाद हम चलते और गीत की ओर, और गीतों की ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग हम आप लोग को और सुना। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो भी एक प्यार भरी गीत है, तो ये हम आपको सुनाते। किसी एक को लेना पड़े है, किसी एक को लेना पड़ा है, ऋषि को है भैया, यूं ही नहीं पूरा है, जाता है इक्ष्ट, जो किसी और को लेना है दोस्तों, दान इज्जत ऋषि को दान मुझे वाल खुद ओपस। तो हम चलते हैं, यहां पर एक गीत है, जाने तेरी नजरों ने क्या कर दिया, और मौफी का नाम है, मौफी के नाम है घरस्ती, घरस्ती जटल है जी हाँ, परमाचरी परमाची मोहम्मद रफी और नाइजी जे लता जी का ये लवली सॉन्ग है।

0: तेरी जानी तेरी नजर ने क्या कर दिया है। और नचजी लता परमा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं मेरी दुनिया और मेरी खुशियां बस तुमसे शुरू बस तो वहीं से खत्म है। तो हम और एक गीत की ओर जाते हैं हमारे दोस्तों। और ये क्या है, ये क्या है, आप खुद ही सुनिए। और ये राजेश कुमार नगर का और मूवी के नाम तो यहां पर बताए गए हैं आओ फिर प्यार करें। इसे कुछ लिखा है दोस्तों और
1: आओ प्यार करो
0: यहां पर लिखा है, तो आओ सुना जाए।

और दोस्तों तुम अकेले तो कभी बाग में ना जाया करो। तो दोस्तों ये सब प्यार भरे गीतों का सॉन्ग आज हम आप लोग को

आँच में जाके पता चला है कि चोली के पीछे क्या होता है। चोली के पीछे दिल होता है दोस्तों, और दिल तो सबके पास होता है, लेकिन किसी को उज्जवल

और तो ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट वन और कुछ नाचने स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है

और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई वो, और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारी यार वो, और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर। और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बांति, चोली के बांति क्या आता है, क्या आता है।

और गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह जहां पान नहीं सोना था।

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते हैं और गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस।

छम्मा छम्मा कौन है, किसका नाम है छम्मा छम्मा, और छम्मा छम्मा के बाद तो हम और आगे चलते हैं, और वो क्या है।

0: नौ एन टी मारे बेरियो फन हैप्पी ऑल टेट एन थ्री सेंसेशन
1: एक नशा से चढ़ता है
0: ऑन रेडियो फॉर वन.

ओ नींद के मारे में क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत मत कर देना। नींद में बहुत कुछ हो जाए, नींद में बहुत कुछ हो जाए।

0: है बाबूजी।
1: जय सिंह, ये आवाज किसकी है?
0: इसी गांव की लड़की है, रोज सुबह गाना गाकर गांव को जगाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है अगर ये गाना ना गाए तो
1: शायद सूरज उदय नहीं होगा। नाम क्या है इसका?
0: रूपा।
1: रूपा, जिसकी आवाज इतनी सुंदर है, उसका रूप कितना सुंदर होगा।

कहते कि हर पल में प्यार है, हर पल में प्यार है, हर पल में खुशी है। जी लो तो जिंदगी खो दो, बस या तो यादें हैं। मोहब्बत तो बस एक एहसास है, मोहब्बत तो बस एक एहसास है, जिनके हो जाए बस वही खास है। हम आपको बहुत प्यार के साथ आपको हम यहाँ से स्वागत कर रही हैं सुनने वालों। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम अदाबर सो नमस्कार हो जी। आप सब कैसे हो? इस खूबसूरत दिवस में आप सब कैसे हो? बस यही आशा उम्मीद है कि आप जहां हो जैसे भी हो खुशहाल में हैं। आपको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से बहुत सारे प्यार मिले, बहुत सारे प्यार मिले, खुशियां मिले,

एक प्यार भरे दिन आप सबको पेश किया जाता है और ये सुंदर गीत से जो हम मिलकर सुनेंगे मुख्तार शाह जी की आवाज़ में।

इतनी सुंदर से फरमाए हैं मुख्तार शाह और उनके साथ भी दे रहे थे उनके साथी। और कहते हैं कि वो दरिया ही क्या जिसमें रवानी ना हो, वो दरिया ही क्या जिसमें रवानी ना हो, जब होश ही नहीं किस काम की जवानी।

से पुकार कर रहे हैं, मोहम्मद रफी जी साथ दे रही है लता जी के आन मिलो सजना। टाइटल सॉन्ग जो हमने आपने सुने आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से सुनने वालों जो देनहाग शहर में है, हाँ देनहाग शहर में न्यू टाउनस्ट्रैट नंबर 25 पे है। दिल और फूल, दिल और फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। जी हाँ, दिल और फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन लोगों के दिल और फूल से ज़्यादा, लोगों के दिल फूलों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, जैसे कि आपके। जी हाँ, जैसे आपके दिल भी खूबसूरत है, तो आपके दिन हमेशा, आपका दिन हमेशा फूलों की तरह भी बस खिलते रहें।

इस बार यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं अराउंड द वर्ल्ड। जी हाँ, दुनिया के शहर करेंगे हम, और मुख्तार शाह जी की आवाज़ में हम सुनेंगे जोश जवानी हाय रे हाय।

जी हाँ, जोश जवानी और हाय रे हाय, हम यहाँ से दुनिया के शेयर करें अराउंड द वर्ल्ड जो हमने उस फिल्म से सुने हैं। और ये गाने वाला है मुख्तार शाह।

और यहाँ से हम साथ में मिलकर सुनेंगे रफ़ी जी की आवाज़ में कि तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है।

प्यार भरी आवाज है कि फिरता हूँ बेकरार और कहीं करती होगी वो आपका इंतजार। सुन वालों आपने सुने जाने पहचाने आवाज। फिल्म अभिमान के एक सुंदर सा गीत यहाँ से आपके लिए चला रही हूँ और वो भी कोफर हुआ।

फिल्म अभिमान से निकाला गया है। सुन वालों, ये सुंदर सा गीत जो कफर किया जन यानी कि नाख सॉन्ग है। लाट जाओ लेख वंदाग स्ट्रालन, लाट जे लेख वंदाग स्ट्रालन, ओन बोवेस हेल्प ये एर फीलन में। फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से आपको एक शुभ दिन en we mogen weer genieten van een mooie dag.

जी हाँ सुनने वालों, हमने मिलकर सुने और वो भी रजिस पनवर और पल्लवी जी की आवाज़ में। कहते हैं कि नेवर वेट फॉर अ परफेक्ट मोमेंट, जस्ट टेक अ मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट।

प्रिय भाई बहनों, जब हम हिम्मत करते हैं तो ताकत बढ़ती है। जब हम जुड़े होते हैं तो एकता बढ़ती है। और जब हम स्नेह करते हैं तो प्यार बढ़ता है। और जब हम देते हैं तो रिश्ते

भाई बहनों, आपका अच्छा व्यवहार आपके रिश्ते को निर्धारित करता है। यदि दुनिया में कोई वास्तविक चुंबक है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है, तो वह आपका प्यार और आपका व्यवहार है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये आपकी संपत्ति है या धन है। नहीं दोस्तों, नहीं, ये आपकी संपत्ति या कुछ और नहीं है, ये सिर्फ आपका प्यार और आपका व्यवहार है। आपका व्यवहार है, ये आप अपनी जीवन में लागू कीजिए मित्रों, लागू कीजिए।

दोस्तों, गलतियां, असफलताएं, अपमान, निराशा और अस्वीकृतियां प्रगति वृद्धि का हिस्सा है। इन पांच चीजों का सामना किए बिना किसी ने कभी भी कुछ भी मूल्यवान हासिल नहीं किया है। मित्रों, मुझे क्षमा करना, तो क्या आप कोई विशेष इंसान हो जो ये पांच चीजों का सामना किए बिना सब कुछ हासिल कर लेंगे? नहीं, नहीं, आपको भी इस चक्की में जाना पड़ेगा। और जब आप इससे बाहर निकलते हैं, तब आप एक वास्तविक अनुभवी व्यक्ति होते हैं। मित्रों, ये याद रखना, ये हमेशा याद रखना।

भाई बहनों, खूबसूरत दिन तब आता है जब आप जागते हैं और पाते हैं कि जीवन अभी भी आपकी दुनिया का रंग है, क्योंकि उन लोगों की वजह से जो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं और आपको कभी नहीं भूलते हैं, और इसका अनुभव केवल तभी कर सकते हैं जब आप वास्तव में दूसरों के प्रति मधुर और दयालु हो। यह आप पर अच्छा लगेगा, ये आप पर अच्छा लगेगा। इसलिए बिना किसी घमंड के हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें मित्रों, बिना घमंड के।

मित्रों, रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। किसी और की खुशी के लिए आपको अपना दिल दुखाना ही पड़ेगा। मित्रों, इसके लिए वास्तव में आपका हृदय साफ होना चाहिए और प्रभु का आशीर्वाद होना चाहिए।

कभी मत भूलो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मुझे आशा है कि आप खुद पर उतना ही विश्वास करती है जितना मैं आप पर विश्वास करता हूँ। जब जिंदगी तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगी तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं आपको पूरे जीवन रहने का वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो वादा कर सकता हूँ वो ये है कि मैं तुम्हें जीवन भर प्यार करूँगा, जीवन भर प्यार करूँगा।

हे मेरे प्रभु, मैंने देखा है कि जब तू देता है तो तेरे हाथ दिखाई नहीं देते, परंतु जब तू देता है तो मैंने तेरे झोली भर कर देते देखा है। प्रभु, भर कर, झोली भर कर तू देता है, इसलिए मैं हमेशा अनुभव करता हूँ हर रूप में आपकी कृपा। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं हमेशा आपके प्रेरणा विषय को सुन सकूं प्रभु, और जब सुनूं तो अक्सर जो सुनता हूं उसका अनुसरण कर सकूं। भगवान, अगर मैं सहमत भी हो जाऊं तो भी मैं वही करता हूं जो मैं चाहता हूं। प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाओ, सही मार्ग दिखाओ, ये मेरा अनुरोध है। प्रभु, ये मेरा अनुरोध है।

वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाशवाणी रेडियो फाहुन के सुनने वालों, प्रिय भक्तजनों, प्रिय आत्माओं, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है आज इस खूबसूरत दिवस में। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम नमस्कार। उपस्थित हो गई हूँ आपके स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम लेकर। तो यहाँ से चलते हैं शुरुआत कर लेने की है। आप सभी को एक खूबसूरत दिवस होवे, मंगलमय दिवस होवे, खुशियां भरा दिन मिले आप सभी को। आरंभ करने को जा रही हूँ देना खलास कफेन फोर पार्क से आनंद अर्जुन शर्मा। आनंद अर्जुन शर्मा ख्रोथांदल बेफे। जानकारी के लिए आप जरूर सितार की जेनो 655-378-2767 पर श्रीमान आनंद अर्जुन शर्मा की तरफ से हम आरंभ करने को जा रही हूँ हनुमान चालीसा के साथ।

जय राम, जय जय राम। हनुमान चालीसा के साथ आरंभ किया गया है स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम, और वो भी देन हाग लेस्कफेन 4 पार्क से आनंद अर्जुन शर्मा ख्रोथ हांडल बेफे की तरफ से। देन हाग मकाइस्ट्रात नंबर 6 से हिंदू बास स्कूल फाहोन Vereniging Algemeen Hindu Onderwijs Nederland के तरफ से सुनेंगे हम सुंदर सा गणेश भजन।

जी हाँ, हमने ये सुंदर गणेश मंत्र श्रवण की है। सुंदर सा गणेश मंत्र जो पेश किया गया है, जो मिलकर हम यहाँ से श्रवण की है, देनहा मका इसरात नंबर 6 से हिंदू बास स्कूल फॉर फाहोन फरेनिंग अलकमे हिंदू अंडरवेस नीदरलैंड के तरफ से सुने हम। देनहा स्ट्रात नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांगुरबेन के निर्देश में है, श्रद्धा भक्ति के साथ।

हाँ, माँ सरस्वती ज्ञान की बुद्धि दे रही है, हम सभी की जीवा पे भी बैठे हैं, ताकि हम सभी अच्छे अच्छे मीठे मीठे बात कर सकते एक दूसरे के लिए। और अपने उद्धार करने के लिए पेश किया गया है दिनांके इकनवी तो स्त्रात नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार, संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरबीन के निर्देश में है। Den Haag Leiskafé 4 Park. Is bij de zondaggroothandel. Zondaggroothandel in groente en fruit. In Kamalik Johehana. Sriman Parshurama Mohalal. Aur jankari ke liye aap jarur se taar kijiyega. 06-22-79-58-62 par. Sravan karenge Sundar Sa Durga Bhajan.

कि स्वागतम और सदा माता हम सभी के आम सभी के ऊपर अपना प्यार भरा कृपा बरसाए रखे। माता भजन पेश किया गया है दनाखलेस कफेन फोर पार्क से सुंदर ग्रोथ हैंडल इन ग्रोंते एंड फ्रॉइड। इनका मालिक जो है श्रीमान परशुराम मोहनलाल जी। देन हाग के रहने वाली श्रीमती लैन

लिए और जब हम भैरव बाबा के दर्शन ना जाए करें तो कहते भी यात्रा में कमिताए रहता है। यह सुंदर सा भैरव बाबा जी की एक भजन।

0: सुंदर सा भैरव बाबा की भजन यहाँ से मिलकर श्रवण की है और पेश किया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों, देन हाँ के रहने वाली श्रीमती लैना बाबू राम जी की तरफ से। इस खूबसूरत दिवस में हम सभी का ये सुंदर सा भजन आपके स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम में चला दिया गया है। Den Haag Lijskeveen voor Park Seem. Bouw- en onderhoudsbedrijf. Bouw- en onderhoudsbedrijf. Inka Malik Johe. Sriman Haridat Rohit Devnaranji. Jankari ke liye aap jarur se tar karke aur aage ke jankari praap kar sakte ho. Tar ka number hai 06-26-07-02-41. माँ दुर्गा की कहानी।
1: हजारों साल पहले असुरों के अंधेरे साम्राज्य में रंभा नाम का एक शक्तिशाली राजा रहता था। एक दिन उसकी नजर नदी के किनारे चर रही एक खूबसूरत भैंस पर पड़ी। उसकी खूबसूरती से मोहित होकर रंभा ने खुद को एक भैंस में बदल लिया और उसके साथ जंगल में रहने लगा। उनके मिलन से महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली और भयानक बच्चा पैदा हुआ। महिषासुर का जन्म एक अनोखे रूप में हुआ था, आधा मनुष्य और आधा भैंसा। महिषा का मतलब भैंस और असुर का मतलब राक्षस होता है। अपनी माँ से जंगली जानवर की ताकत और अपने पिता से राक्षस की दुष्टता के कारण महिषासुर हमेशा बुराई और विनाश करना चाहता था। अमर होने की आशा में महिषासुर ने भगवान ब्रह्मदेव का ध्यान और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। बिना भोजन और नींद के अटूट संकल्प के साथ उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। धरती कांप उठी, आसमान में अंधेरा छा गया और एक अनंत काल के बाद उसकी प्रार्थनाएं सुनी गईं। आखिरकार ब्रह्मदेव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए।
2: महिषासुर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो।
3: हे ब्रह्मदेव, मैं अमर होना चाहता हूँ।
2: यह असंभव है, जो भी पैदा होता है उसे मरना ही पड़ता है, यही ब्रह्मांड का नियम है।
1: महिषासुर ने कुछ देर सोचा और कहा,
3: हे प्रभु, क्या आप मुझे ऐसा वरदान दे सकते हैं कि मैं किसी मनुष्य या देवता के हाथों न मारा जाऊं? अगर मुझे मरना ही है तो किसी स्त्री के हाथों से ही मरूं।
1: महिषासुर एक बहुत बड़ा राक्षस था। उसे पूरा विश्वास था कि कोई भी स्त्री उसे नहीं मार पाएगी। भगवान ब्रह्मा एक क्षण के लिए हिचकिचाए, लेकिन वे जानते थे कि इस वरदान में खामियां हैं, इसलिए उन्होंने वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार बढ़ गया और उसका आतंक का राज शुरू हो गया। उसने अपनी राक्षसी असुर सेना को इकट्ठा किया और पृथ्वी पर मनुष्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मार डाला और नष्ट कर दिया। पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग में देवताओं से लड़ने का फैसला किया। उसने अपनी विशाल असुर सेना के साथ इंद्रलोक की राजधानी अमरावती पर हमला कर दिया, जो भगवान इंद्र का निवास स्थान था। सभी देवताओं ने अपनी पूरी ताकत से महिषासुर से लड़ने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। महिषासुर अजेय था, कोई भी देवता या मनुष्य उसे हरा नहीं सकता था। असुरों ने अमरावती पर कब्जा कर लिया और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। इंद्रदेव मदद के लिए त्रिमूर्ति, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के पास भागे। ब्रह्मा ने उन्हें वरदान की याद दिलाई और कहा,
2: कोई भी देवता या मनुष्य महिषासुर को नहीं मार सकता, हालांकि एक महिला उसे मार सकती है, लेकिन तीनों लोकों में रहने वाली कोई भी महिला इस दुष्ट राक्षस को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है।
1: इसलिए त्रिमूर्ति ने एक शक्तिशाली महिला बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। उनकी दिव्य शक्तियों के संयोजन से आकाश में प्रकाश का एक ज्वलंत स्तंभ प्रकट हुआ। यह इतना चमकीला था कि सूर्य भी मंद दिखाई दे रहा था। इससे देवताओं ने देवी दुर्गा का निर्माण किया, जो महिषासुर को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। देवताओं ने उन्हें राक्षस महिषासुर को हराने के लिए शक्तिशाली हथियारों से सुसज्जित किए। भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र भेंट किए। शिव ने उन्हें अपना शक्तिशाली त्रिशूल दिए और ब्रह्मा ने अपना कमंडल भेंट किए। उन्हें युद्ध में सवार होने के लिए एक भयंकर शेर भी भेंट मिला। इन दिव्य उपहारों और देवताओं के आशीर्वाद से लैस देवी दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर का नाश करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वह अमरावती के पास पहुंचे, उनकी भयंकर गर्जन आकाश में गूंज उठी। पहाड़ कांपने लगे और समुद्र ऊंची ऊंची लहरों से भर गए। उनकी उपस्थिति ने ही पूरे ब्रह्मांड में भय की लहरें फैला दी। जब उनके आगमन की खबर महिषासुर तक पहुंची, वह हंसने लगा।
3: एक साधारण महिला मुझे चुनौती देने आई है। एक महिला, वह मेरे समय के लायक भी नहीं है। मैं उससे निपटने के लिए अपनी सेना भेज दूंगा। वे उसे वैसे ही कुचल देंगे जैसे वे बाकी सभी को कुचलते हैं।
1: महिषासुर ने असुरों की अपनी विशाल सेना को देवी दुर्गा का सामना करने का आदेश दिया। युद्ध का मैदान जल्द ही हथियारों की टक्कर से गूंज उठा और राक्षसों की लहरें देवी पर टूट पड़ी। लेकिन एक एक करके सभी राक्षस देवी के सामने गिर गए। उनकी दिव्य शक्ति से आसानी से पराजित हो गए। अंत में महिषासुर स्वयं दुर्गा देवी के विरुद्ध युद्ध करने गया। देवी को भ्रमित करने के लिए बेताब महिषासुर ने अपनी सारी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया। अलग अलग जानवरों का रूप धारण किया। सबसे पहले वह एक क्रूर शेर बन गया जो भयानक गति से दुर्गा पर हमला करने लगा। देवी ने उसे दिव्य सटीकता से मारा जिससे वह घायल हो गया। आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हुए वह एक विशाल हाथी में बदल गया और उनकी ओर गरजने लगा। एक बार फिर दुर्गा ने अपने हथियारों से जवाबी हमला किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। 10वें दिन महिषासुर एक विशाल भैंसे में बदल गया और दुर्गा देवी के पर हमला किया। लेकिन दुर्गा मां तैयार थे। एक तेज और शक्तिशाली चाल के साथ उन्होंने उसे अपने त्रिशूल से मार डाला जिससे उसका आतंक का राज खत्म हो गया। महिषासुर पराजित हुआ और देवता स्वर्ग में अपने घरों को लौटते हुए खुशी से झूम उठे। उस दिन से देवी दुर्गा की नवरात्रि के दौरान पूजा की जाती है, विशेष रूप से 9वें दिन जब उन्हें महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा जाता है।
0: दुर्गा मैया के सुंदर सा कथा, सुंदर कहानी हमने श्रवण की है। मेरे प्यारे सुनने वालों, पेश किया गया है दनाखलेस कफेन 4 पारक से बाव एन ऑनर हाउस बद्रेव। बाव एन ऑनर हाउस बद्रेव इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण। देन हाग से श्रीमती लिलियन मोती राम जी की तरफ से श्रवण करेंगे।
4: काल की बात है,

0: कहानी सुने हमने भैरव बाबा की दशहरा के उपलक्ष पर और माता के
1: sterke deals die je niet kan laten liggen. We zitten aan laptop om.
0: पेश किया गया है देन हाग के रहने वाले श्रीमती लिलियन मोतीराम जी की तरफ से हम सभी को एक शुभ एक मंगलमय दिवस पेश कर रही है ये खास भजन के साथ श्री नाम अली फॉर नो मैन का नाम हुक इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर इस ठंडी ठंडी खूबसूरत दिवस में भजन माला कार्यक्रम में शुभ प्रभात और मंगलमय दिवस कहते हुए

सुंदर सा माता भजन आपने श्रवण की है मेरे प्यारे सुनने वालों। पेश किया गया है श्री नाम अर्ली फॉर नो मैन कंडाम हुक इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर की तरफ से खूबसूरत दिवस में खूबसूरत भजन के साथ मिलकर यहाँ से हमने श्रवण की है। और आँख को लेकर चलते हैं इस बार रोटरडाम वेस्ट रोटरडाम होक फ्लिट टेक्सस वैक नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडाम वेस्ट ब्लॉक माकरस्ट्रात से रोटरडाम वेस्ट ब्लॉक माकरस्ट्रात सेशन फेयर तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के तरफ से श्रवण करेंगे।

अति सुंदर अति सुंदर अति सुंदर सुंदर भजन पेश किया गया है रोटरडाम वेस्ट रोटरडाम होपफुली टेक्सस वेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडाम वेस्ट ब्लॉक मार्कर स्ट्रैट 46 से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के तरफ से श्रवण की ये सुंदर सा भजन सुप्रभात और एक मंगलमय दिवस फाहोन रेडियो के देर एक्सिस स्टाफ पर्सोनेल सभी फ्रेवेलर्स के तरफ से मेरे प्यारे सुनने वालों तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के वास्ते

सुंदर सा प्रार्थना है आप सभी के लिए। फाउन रेडियो की डायरेक्सी स्टाफ पर्सोनल सभी फ्राइवेलकर्स के तरफ में प्यार सुनने वालों तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के वास्ते स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम देने सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है। स्वीकार कीजिए इस वक्त के लिए सेविका शांता की प्यार भरे नमस्कार। एक मंगलमय एक शुभमय दिन आप सभी के लिए।

कमाली के प्यारे प्यारे सुनने वालों, जान पहचान दोस्तों, भाई बहनों, कहती हूँ कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। रिश्ते को वक्त देना सीखो, रिश्ते को वक्त देना सीखो, प्यार भी रहेगा और साथ भी रहेगा।

सेविका शांता। स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी राम राम प्रणाम सलाम शास्त्रीय अकाल राधे राधे यानी कि शाम से मिला दे। नमस्कार हो जी, आप सब कैसे हो?

सभी को हार्दिक से स्वागत है इस खूबसूरत दिवस में। जो कोई आज कोई भी शुभ कार्यों को कर रही है या तैयारियां करती है, आप सभी को बहुत सारे शुभकामनाएं पेश हैं। जो दुखित परिवार है, बीमार है, लाचार है, उन सभी को सहन शक्ति मिले, यही दुआ है, प्रार्थना है प्रभु परमात्मा से।

मैं आ गया हूँ अमित कुमार जी की आवाज में हमने सुने सुने वाला, और फिल्म का नाम आप जरूर पूछते होंगे, सोचते होंगे कौन सा फिल्म है। तो मैं सोचती हूँ आपको बता दे, क्योंकि अच्छा लगता है जानने के लिए कभी कभी कि कौन फिल्म से ये गीत निकाला जाता है। फिल्म का नाम है औलाद के दुश्मन। नेखन तक में ये पिक्चराइज किया गया है। जी हाँ, अमित कुमार जो किशोरदा के सुपुत्र है, हार जाना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु फिर से प्रयास ना करना ये बहुत बुरी बात है। हीरा को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, हीरा को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकता है।

जी हाँ आ गया आ गया। अपनी गलती पर माफी मांगना आपके सम्मान को कभी कम नहीं करता, बल्कि उससे और बढ़ता।

भूल जाओ बीते हुए कल को, भूल जाओ बीते हुए कल को, दिल में बसा लो आने वाले कल को। मुस्कुराते रहो चाहे जैसे भी हो पल, मुस्कुराते रहो चाहे जैसे भी हो पल, खुशियाँ लेकर आएगा आने वाला कल।

फिल्म का नाम आप मुझे अच्छे लगने लगे। तो इदोय संतुई के पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। हवाओं ने ये कहा और क्या कहा, तो यहाँ से हम आप और मिलकर सुने हैं। तुम खफा हो गए तो कोई खुशी ना रहेगी, तुम्हारे बिना चिरागों में रोशनी ना रहेगी। क्या कहे क्या गुजरी इस दिल पर, जिंदा तो रहेंगे पर जिंदगी ना रहेगी।

हो जाने दो, प्यार को हो जाने दो। फिल्म का नाम दुश्मन और सुनाया हमको द नाइटिंगेल लता जी और साथी।

अभी आप सुन रहे थे बोले चूड़िया बोले कंगना फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम से हमने पेश किए हैं। जाने दिल में कब से है तू फ्रॉम द मूवी मुझसे दोस्ती करोगे इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, सुनो हमसे अगर गिला हो तो माफ़ करना, हमसे अगर गिला हो तो माफ़ करना, तुमको याद ना कर पाए तो माफ़ करना, दिल से तो तुमको भूलेंगे नहीं, अगर ये धड़कन रुक जाए तो माफ़ करना।

फ्रॉम द मूवी मुझसे दोस्ती करोगे, इसी फिल्म से हमने पेश की है जाने दिल में कब से है तू। उदित नारायण के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे। एक सच्चा दिल सबके पास होता है, फिर क्यों नहीं सब पर विश्वास होता है। इंसान चाहे कितना भी सिंपल क्यों ना हो, वो किसी ना किसी के लिए ज़रूर खास होता है। दीवाना है देखो बेकरार हो, अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं। और अलका याग्निक के साथ में सोनू निगम और करीना कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम।

0: are you?
1: अभी आप सुन रहे थे दीवाना है देखो बेकरार हो फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी हमसे हमने पेश किए हैं। एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते अलका याग्निक के साथ में कुमार सानू और उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं द टाइटल फ्रॉम द मूवी दिल है तुम्हारा।

अभी आप सुन रहे थे द टाइटल फ्रॉम द मूवी दिल है तुम्हारा। अलका याग्निक के साथ में कुमार शानू और उदित नारायण आपको सुनाने वाले थे। इसी फिल्म से एक और गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, और गीत का बोल है कसम खा के कहो। अलका याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले हैं।

कसम खा के कहो, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक के साथ में कुमार शानू आपको सुनाने वाले थे। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू फिक्र में अपनी हंसी बर्बाद ना कर। मोहब्बत, मोहब्बत क्या होता है सुनने वालों, बताओ, नहीं बताने वाली, क्योंकि आप खुद सुन लीजिएगा। उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले हैं।

आइए, आप सुन चुके होंगे कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत दिल का सुकून है, एतबार तेरे आने से आए, तेरे जाने से जाए। अलका याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले हैं, फ्रॉम द मूवी रन से आप सुनेंगे।

से आए तेरे जाने से जाए। अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में फ्रॉम द मूवी रन से हमने पेश किए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब लोग फ्री होते हैं तो देर तक सोते हैं और देर से अपने बिस्तर से निकलते हैं, तो चलिए उन लोगों के वास्ते ये गीत हम पेश करते हैं, तेरे संग सिंपल सी कॉफी क्यों ना हो जाए। फ्रॉम द मूवी जमीन से हम पेश करते हैं।

फ्रॉम द मूवी जमीन से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते तेरे संग एक सिंपल सी कॉफी भी किक देती है। और जब आप लोग मुझे किक देते हैं ना तो मेरा दिल क्या होता है, डिंग डोंग डिंग डोलने लगता है। फ्रॉम द मूवी कुछ तो है इसी फिल्म से ये सॉन्ग हो जाए।

फ्रॉम द मूवी कुरुक्षेत्र से अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू आपको सुनाने वाले थे। अब तेरे दिल में हम आ गए तो फ्रॉम द मूवी आरसू से आप सुनेंगे कुमार सानू और अलका याग्निक।

अभी आप सुन रहे थे तेरे दिल में हम आ गए तो, फ्रॉम द मूवी आरसू से हमने पेश किया है कुमार सानू और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे। जरा सा हम देखे, जी हाँ, उदित नारायण और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं तेरा दिल मेरे पास रहने दे।

तेरा दिल मेरे पास रहने दे। अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे। सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी मुस्कान से आप सुनेंगे वो हो तुम।

सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले थे वो हो तुम, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, फ्रॉम द मूवी तुम बिन से आप सुनेंगे, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी तुम बीन। तुम्हारी नीयत की आजमाइश उस वक्त होती है जब तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करो जिससे तुम्हें कोई चीज़ की उम्मीद ना हो, क्योंकि इतना प्यार करते है तुम्हें हम सनम। फ्रॉम द मूवी क्योंकि

अभी आप सुन रहे थे क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, ऐतराज है फिल्म का नाम, और आपको सुनाने वाले हैं अलका याग्निक के साथ में उदित नारायण जी। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, वो ये है कि हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोश रहने की वजह कोई कोई समझता है। और ये गीत हम पेश करते हैं ख़ास करके शर्ली जी के वास्ते जो ये प्रोग्राम को भी सुन रही है।

फ्रॉम द मूवी एतराज से हमने पेश किए हैं आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया वो तुम ही हो ऐ सनम। अलका यज्ञिक और उदित नारायण आपको सुनाने वाले थे। वह सिखा देता है जीने का हुनर, फिर क्या नसीब, क्या मुकद्दर और क्या हाथ की लकीर है। तशन है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर जी की आवाज़ में आप सुनेंगे फलक तक चल साथ मेरे।

उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर भी आपको सुना रहे थे। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। कुछ लोग छोटे पलों में इतना कुछ दे जाते हैं कि जिंदगी भर उनका एहसास रहता है। शुक्रिया है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं निसोनिया निसोनिया अखा लड़ गईया।

0: पापा आपको तो पता है कि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सुबह की फ्लाइट से निकलना होगा।
1: होप यू डोंट माइंड। मैं तो समझ जाऊंगा बेटा, पर आई होप तुमने अंजलि को समझा दिया।
0: जी पापा, समझा दिया।
1: अंजलि का ख्याल रखना।
0: जी पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे पापा?

अभी आप सुन रहे थे नी सोनिया नी सोनिया अखा लड़ गईया फ्रॉम द मूवी शुक्रिया से हमने पेश किए हैं। इंसान का मिजाज भी कितना अजीब है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ जा रहा है और जो यही रह जाना है उसे जोड़े जा रहा है। फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल से आप सुनेंगे तुने दी बेकरारी।

0: हुआ तुझे।
1: अभी आप सुन रहे थे तन्हा जिया ना जाए फ्रॉम द मूवी टॉम डिक एंड हैरी से हमने पेश किए हैं, और आपको सुनाने वाले थे हिमेश रेशमिया जी। सोनू निगम आपको सुनाने वाले हैं जूही बब्बर के साथ में, काश आप हमारे होते हैं।

काश आप हमारे होते। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी काश आप हमारे होते, द टाइटल हमने पेश किए हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में। फ्रॉम द मूवी धूम से हम पेश करते हैं सुनने वालों दिल बोले शिकदुम शिकदुम। शान और श्रेया घोषाल जी आपको सुनाने वाले हैं।

शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे दिल बोले शिक धूम फ्रॉम द मूवी धूम से हमने पेश किए हैं। जिंदगी की राह में कुछ रिश्ते टूट जाते हैं मगर उनकी यादें हमेशा दिल में बसी रहती हैं। जरा जरा टच मी टच मी टच मी फ्रॉम द मूवी रेस से आप सुनेंगे।

मोनाली ठाकुर आपको सुनाने वाले थे जरा जरा तचमी तचमी तचमी फ्रॉम द मूवी रेस से हमने पेश किए हैं योर माई लव फ्रॉम द मूवी पार्टनर से हम पेश करते हैं। बहुत मुश्किल होता है दर्द हंसकर बर्दाश्त करना।

फ्रॉम द मूवी पार्टनर से हमने पेश की है माई लव जाने जा योर माई लव। वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदलती है वक्त के साथ, वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ। हम शकल्स हैं फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते कॉलर ट्यून।

अभी आप सुन रहे थे कॉलर ट्यून। प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं और बीवी नंबर 1 से हम पेश करते हैं इश्क सोना है।

अभी आप सुन रहे थे इश्क चांदी है इश्क सोना है। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी ऐतराज से आप सुनेंगे अदनान सामी और सुनीरी चौहान आपको सुनाने वाले हैं गीला गीला गीला गिल गीला गीला।

ये थे गिला गिला गिला गिल गिला गिला मिला मिला मिला कोई मिला मिला फ्रॉम द मूवी ऐतराज से हमने पेश किए हैं। मेरी यार की शादी है इसी फिल्म से हम पेश करते हैं। जाके जाके अरमा है जाके जाके हम

अभी आप सुन रहे थे जागे जागे अरमा है जागे जागे हम। प्रोग्राम को हम और आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं आपको सुनाने वाले हैं शान सुनेरी चौहान और के।

0: शान सुनिधि चौहान और के आपको सुनाने वाले थे देखो नशे में, मूव योर बॉडी नाउ फ्रॉम द मूवी किस्मत कनेक्शन।
1: Now listen, get up, that's right.

फ्रॉम द मूवी किस्मत कनेक्शन से हमने अभी पेश किए हैं आप सभी के वास्ते।

तुझे। सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुनी हमारी हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, मैं आशा है कि प्रोग्राम आप लोग को जरूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारी प्यार भरी। राम राम, नमस्कार, खुदा हाफिज। हैव अ नाइस संडे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Till next time.

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाउन की सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरे नाम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है, हमारा काम यही है, हमारे मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

और ये खबर है तो आप लोग को हम न सूरीनाम लेकिन और देश की बातें समाचार हिंदुस्तानी भाषा में, नीदरलैंड्स भाषा में, निंगरे के

भाषा में और रकम रकम भाषा में आपको हम जरूर सुनाएंगे। तो दोस्तों आओ चला जाए हम लोग सूरीनाम की ओर। सूरीनाम में दोस्तों बातचीत ये हो रहा है कि लांटी के जो गाड़ी है मशीन है, लांटी के अपराध जोन है, लांटी के बोले कि जो सामान है, तो कितनी जनता है भैया उसे बहुत बहुत मिसब्रेक कितना करे हैं, और कितना है जो उसे सैनक ना बोले ना लांटी बोले लाविंती वाई लांटी पाई, तो बोले लांटी चीज है चाहे टूटी और चाहे रही बोले हमें का। ऐसे बातचीत हो रहा है एगो इसुसु ओतो के बारे में हमारे दोस्तों। इसुसु तू जाने है नाल लावला भैया क्रेन वाहन के बातचीत हुए है जो एक दोस्त के ना मिले भैया हजारन से मिले हैं। एगो करिया इसुसु डीमैक्स भैया, तो ये गाड़ी जो है सूरीनाम के है लांटी के ओतो है, तो लांटी के इतना मोई इसुसु डीमैक्स भैया जो 20-25 हजार में मिले है यूरो के बातचीत डाला के बातचीत हो रहा है, तो इतना महंगा गाड़ी भैया लांटी के बिगड़ल ला तक कम करता और रहा मिनिस्ट्री फॉर आरबेट वेरखलीगन है एंड यू साखन के, तो ये गाड़ी भैया कुछ भैल रहा तो कम करता ले गए ये गाड़ी बनवावे गई ला बनवावे भैया, और जो गई है बनवावे तो गई ले यो तो वह बनवावे नहीं फिर तक यार के एक आदमी और गई लेगो मोन्तेर के देई से गा वो तो वह बनवावे के ब्लूमन फेल्ट वैक में कहीं एगो मोन्तेर है, तो वो तो वह गई लो ओके देई से बनावे के ब्लूमन फिर फिर यूर ब्लूमस्ट्राट ब्लूमन फेल्ट वैक में, तो जब गई है बनवावे तो बुधवार के ई गई है वो तो वह लेवे, तो वो तो वह ई बुधवार के गई है लेवे और इतना महंगा गाड़ी ले के पोतुआ ले के अपी अरमिया जा है उस डाक के को पिकअप, तो ई गई है फिर यूर ब्लूमस्ट्राट में जिस ओतुआ दे रहा बनावे के ब्लूमन फेल्ट वैक में, और ओतुआ ले के जा है फिर यूर ब्लूमस्ट्राट में, तो हुआ पे एक दरी है जहाँ पे ओतो के मतलब कि फेल्ड जरे हैं, जहाँ पे फेल्ड जरे हैं तो हुआ पे कर ओतुआ बुध गए। अब ओतुआ बुध गए तो ये रमिया ना के बैल वल करे कोई के भैया कि आओ हमें यहाँ काबुल है, ओतुआ स्लीप कर ये रमिया ओतुआ डमुए पे छोड़ दी से, ओतुआ डमुए पे छोड़ दी से गा फेल स्टोर प्लात लगे ओतुआ छोड़ दी से भाई, और ओतुआ छोड़ के ये रमिया पैदल चल गए है, और जब लौट के आयल है तो देखे हैगा बैदस दार बैस्टोंड तुई लिंकर बांधन और पे बोले परकेर कलरा दुई बांधती त्रोतवार पे दुई बांधती रई बान पे, और लौट के आल तो देखे ओ तो है ये ना है बहिरदर लीफ वेर फोल्कस नार हैस में दे बदूले और फोल्कन द ओक्तन दिस रात भर ओ तो हुआ हुआ छोड़त, और उतना महंगा ओ तो 20-25 हजार अमेरिकन डॉलर को हमदार लांटी के ना है ओकर एकर तसाई गोदी में लेके जा तू अपन ओतुआ साइड गोधी में लेके जात मार लांटी के ओतो ना है, तो चलो तो वह डमुए पे छोड़ दी बिहान भरे हम घूमत घामत एगो बतरे लेके जाबे, ते भैया यहाँ बतावे हैं जे इस बिहान भर दोंदर दाख के जे गए ले ते देखे पिकअप स्पोरलो से चोरी हुई गए भैया लांटी के ओतो, लांटी के ओतो चोरी हुई गए भैया। अब एक बारे में सिपाही खोजबीन करे है तो हुआ लांटी के चीज जितना है बोले विनती वाई लांटी पाई, तो लांटी के चीज हुआ पे सबन देखभाल ना करे तो इसुसु डीमैक्स भैया तो ये तक तक तो ये सिर्फ तक तक तक खेरार फिक्टोर पिकअप डाम पे रमिया छोड़ दे रहा ब्लूमन फेल्ट वैक में, वो तो बिगड़ गया रहा दे रहा बनवावे के गए लो कर बात में गो फेलनेस बाक लगे फेलनेस अने बेल्ट लगे वो तो हुआ बुद गए रात भर छोड़ दे इसे बिहान भर गए वो तो चोरी हो गए, तो ऐसे आदमी लंटी के चीज से चले जाकर तो पसीना से गार के पसीना गार के जब 25-30 हजार डाला वो तो कीनते ना तो डमुआ पे कभी ना छोड़ते
पलवार के बेल करते स्लीप वाहन के बेल करते बोले ओतुआम घींच के फिर ले जाई का बोले है धर दे का बोलेगा मोंतियर लगे नहीं कहीं फैलक जगह पे दिस सॉर्ट थिंग इज क्राइक अवे इन सुरीनाम में से तो ये बात है। तो आज हमारा फेसबुक में कितने लोग आ गया है जिसको नाम बताना मुझे जरूर चाहिए। और यहाँ पे दिखाए गए भैया राज राम लगन आ गया है ऊपर से देखिए भाई कौन कौन उर्शिला भग्गू पंडित तिलक धारी व्याख्य आपको स्वागत करते हैं दीदिया धर्मेंद्र इसरी रानी दलान उर्शिला भग्गू राज राम लगन भी आ गया है आपको भी स्वागत करते हैं। चित्रा अवतार सूरीनाम से आ गया है और पंडित अनुरोध गंगाराम पंडित भी आ गया हमारा प्रोग्राम में। और देखा जाए तो और आई फतिंगन आ गया अरे टोनिया आई गे टोनी टोनी आपको भी हम स्वागत करते हैं हमारा प्रोग्राम में। और लोग यहाँ पे हैं लेकिन शायद किसी को नाम हम अभी ना बता पाया तो माफी की तलकदार है। अबे आप लोग को और हम बताएंगे क्या हुआ है। और जबरदस्त नीर भैया श्री नाम के हालत है बहुत गड़बड़ है बहुत बोट चले है डमुआ पे सबन बोट चलावे ना कुरियारा बोट भैया ऊ का बोले मऊतर बोट चलावे है तो नहीं हाँ मऊतर बोट चलावे भैया चारों बगल बुड़ल है देश एकदम बुड़ गए इकोनॉमी बुड़ गए चोरी हिया से एकदम टोक्यो तक है लांटी कुछ करे ना है वात्रा पोंपू गयाना से लेनी आज हमारे देश सूरीनाम में देखो का भइल है। इरमा राम तहल सिंह देखो का हुए अभी आपको हम फोड़ फोड़ बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है। द इकोनॉमी फन है इस हेला माल एकदम चपड़ाई के भैया ऊपर ड्राइव ना करेला इकोनॉमी फन है लांतेस हेला माल हिंदुस्तानी में बोले चपड़ाई गे है तो एक बारे में और जो बोले फोर्स से फन फरीन किंग फन इकोनॉमी है श्री नाम के जिसका नाम बा फेस ते को भैया का नाम बा स्टीफन देवी प्रसाद वो बोले हैगा कि ये रखे रेंगवा जो न बा का बोले हैं सिमोंस के और ग्रेगरी रेसलान के और झुआ भर के आदमी खुरपुआ केकर नाम ले भैया फतिंगन केकर नाम ले तो बैप बा भैया आ बॉप है फिर यहाँ यानी कि एनपीएस है एनडीपे तो बास है और जितना सब के बिटोड़ के ले ले रहा सिमोन और फिर यहाँ पे एक कंती कर ले सब कोई के संगे काम करे और बुढ़े के देसुआ भैया और बुढ़े के देसुआ हाँ कुछ होवे ना है तो यहाँ स्टीफन देवी प्रसाद का बोले है इकोनोम के भैया फोर्सेटर है बोले है का बोले इस फन मीनिंग दैट द रखेरे ऑन डंस ऑफिसर जो इंटरनेशनल फंड्स बोली से आईएमएफ इस सब के जोन बोले कुर्स से चाहे चलावे के बोले ना चलावे हैं फोकस द इकोनॉम लाइक द सिचुएशन इन एट लास्ट मोमेंट स्टेबल मार वर्त खलाई के तक तुम आन एन आंतल बालगारे के सीकर हिडन तो एक बारे में स्टीफन भैया बहुत बहुत बात बोली से बोले है का सेल्फ लानबाउ सेक्टर जो नदमी हमार खेतियर है जे हम लोग के मरचवा खवावे है एरमा जे बाना खवावे है जो अनमिया धान लगावे है यहाँ बताई गई है और के है हम लोग के हिंदुस्तानी है जो आज खाई खुआ पे सुर्गु करे है कि आवे है और उस सब के यहाँ बतावे आज फोर बिल नूम दे है ऑन ब्रेकर फॉर द दैलक आखरो बलै ऑन द लैंडबाउ सेक्टर फर्दर तो ऑनट्विकलन फर्दर नूम दे देवी प्रसाद है यामर दा द आउटफोरिंग फॉर द कॉम्पटेबिलिटीज विद इस पर स्कोप फॉर नादर लाभ बे हम निकेरी के बाद बता भैया निकेरी में भाई अरे बूढ़ा ना डाम पे भैया तुरक के तुरक हुआ पे जाएंगे और फसल है तो मून नारायण भी आएंगे ब्लूमन फेल्ट वेक के और ब्लूमन फेल्ट वेक के भी बताई वहां पर एगो पिकअप चोरी भइल है लंटी के तो मून नारायण तो वहां पर एक मिला छोड़ दे रहा अब देखो बहुता कवरतिया का बोलेगा अब देखो कौन चकल्लस भइल है
एक तो बहुतर्स के औरत मफराव वालदरेंग जो नहीं कभी मुंह ना खोले भैया, कभी रखेरे के बाद कुछ बोलबे ना करे हैं। जोन समय पे पोडियम पे रहा तब बोले रहा, बोले मी वांते का कोंदरे याने बाका, बोले हमारे देश तुल लौटार, बोले फिर हम अंगला लेवे। अब देशवा जा पाएगे भैया तो कुछ ना दे ना में बैठ के खा है, बैठ के फिल्म पे देखावे से पीछे बैठ कादरिंग लगल है। और जैसे कि भैया हुआ कैंटीना ना है, पौसा ना है, तू हार्ड वर्कर बाटे कि तू के का बोले समय ना जाए खाए को, देश के बारे में तो एकदम भिड़ल बाटे। तो ये हैगा अब एनडीपी के पार्लियामेंटारी इंग्रिड बाउटर्स वाल्डरिंग का बोले दोंदडा के नेशनल असेंबली में बोले है एगो हिंदुस्तानी भैया ड्री फाइव तक यार के है, ये रमिया भरी बदमाशी करी से बेस फेर रहा तो नहीं बेस चफेर रहा भैया। अब बेमहरिया लड़कन के अंतस्त करत रहा, छुई मुई करत रहा भैया, बस कोनो लड़कन फिल्म बनाई के बस पटा दी से के पकड़ के बंद करी से। तो अब एकर बारे वेल अब इंग्रिड बाउटर्स बोले बोले कि अब चाहे बेस में लड़कन जहां बोले गो बफाई लखेंग जाए के तरी सोचो भाई, यहाँ बतावे है और फॉर द रेस्ट खाली वही के बारे में बोली से वारफान वो नतीलक फरवाह जब तू रखेरिंग में बाटे तो घर के अपन घर के ना। अब चाहे हम तेरी रोतर दमोआ में भैया स्टापल के स्टापल पैसा मिलल है, नया न्यूज से नानी एक फैल साग भर के पैसा एरो मिलल है भाई, एरो मिलल है सन तैसन थोरो है, एरो मिलल भैया। अब कहाँ मिलल है, एगो सुरीनाम से रेस्टोरेंट में मिलल भैया, एक साका पैसा मिलल है। और एक बारे में दुई परानी के सिपाही पकड़ी से, दुई मिला पकड़ान है और दुई आदमी पकड़ान एगो इन फेफ तक यार का आदमी ओकर औरत है, दुई फिर तक यार के नमुआ बे ना लिखल है। हाँ जनमुआ आई ना, चलो जानो जो नहीं कि भड़ाके से तो हम बोला अबे नमुआ ना है कि चिनुआ है कि हिंदुस्तानी है कि कपड़े भैया केकर है रेस्टोरेंट ऐसा सबको चलावे रेस्टोरेंट। तो यहाँ बताए गए है दुई प्राणी के पकड़ी से और ये पैसवन कैसे में कौन पैसा रहा, बोले पैसवन रहा धोवत रहा भैया जैसे हड़िया बर्तन धोआ है रेस्टोरेंट में जाने गिलास धोआ हड़िया बर्तन धोआ तू तो ये सब पैसा धोत रहा भाई, पैसा धोत रहा बाकी लेतल लगना वेतवा से हिंदुस्तानी ना नीदरलैंड्स में बोले इसे पैसों वेतवा से करत रहा। और बोले क्रिमिनल वेतवा और खानी सांसी इसे रहा नीखन तीन मई के इस सब के पकड़ी से नीदरलैंड की सिपाही पकड़ी से। और बोले हैगा स्कूल लगते हैं हमार खमाक फन वेतवासन यहाँ पे बताई गई है हमारी जनता। और बोले कौन तांत खेल रहा फिर मुडलक एगो तास रहा फान दूरी नाम से तो कोस एंड मे खेवन बोले ओम नित ऑफ द फादर सर नाम के को तास में ना जैसे कि कुछ कोनो सौदा पानीओ मा धरल है। बोले बेन दोर सुकिंग इन द क्यूकर फन ए रेस्टोरेंट बे खत ऊपर से एगो पैसा गिने वाल मशीन भी हुआ मिलत इतना पैसा रहा कि मशीन गिनता भैया 823 से ना गिन पइए तरह ज्यादा पैसा रहा। तो एंड लग भैया इन हेट फनलैंड को ऑफ स्पोरिंग दिस दुई बरानी के पकड़ी से तो ताल एगो लैपटॉप मिलल है
और पैसा कितना रहा? ऑनगेवर 13.000 euro contant geld in beslag genomen. Op 21 mei volgde nog een aanvullende doorzoeking bij een reisbureau in Amsterdam. Daar werd ruim 12.000 euro contant middel. Administratie en telefoon is in beslag, dus ik een reisbureau mee. Wie middel 12.000 Amerikaan dollar? Maar ja, een aanvloek hoe ik maar betaal. Als ik al je vakantie zie. Het reisbureau loon bij contant paisa na lewe usap ke chahi registreer kareke. Nahi, koka ke paisa se armi pura dunia be ghumi. Ta uhik mare asaid hiya Nederland ke reisbureaus joon hai. Contant paisa na lewe hai. Ma 12,000 wa ekar kahan se aila bhaiya kahan se aila. Ab iya Amsterdam ke go reisbureau me. Aur ee chich milal hai bhai. Ab so जो रेस्टोरेंट इधर वेतवास करत रहा का बाकी हुआ रेस्टोरेंट तो सीकर तो राजेश रामदर भी आ गया है। तो राजेश आपको हम अपने प्रोग्राम में बहुत प्यार से और दिल से स्वागत करता है। भैया एक आदमी अपन घरे तू जाने सुरीनाम देश में सब कोई अपन अपन घरे अपन ओतो धरे के खराशे बनाए रहे हैं कि हम अपन ओतो जाई फैल से अपन खराशे में धर देवे ना वो लांटी के कम करतवा जो लांटी के पिकअप जाई के ब्लूमन फेल्ट वे के डाम पे रात भर छोड़ दे रहा कि ओतो चोरी हुई अपन गाड़ी आदमी लोन सुरीनाम में बोले नामी ट्वेडा फ्राओ जाने नाराज ऐसे बोले ना बोले हमार फरफूर हमार ट्वेडा फ्राओ है ओके सबन भैया सब कुछ मांगा है धोई ओई के चमकाई चमकाई धरे है। तो ऐसे भैया के खराचे एगो रहा सुरीनाम में अचित्ते में भैया अपन खराचा अचित्ते में भैया लुटेड़ा गईल है और कटली से ले के भैया ऊपर से एगो ईटा कपड़ा में बांध के और गईल है अनमिया के मुड़ी पे मारी से अनमिया गिर गए भाई अपन ही खराचे में और पैदल गईला भैया बातचीत हुए एलेंडस्ट्रात में एलेंडस्ट्रात में भैया एलेंडर हुई कि ना ये एटफ्लिक की सिपाही कर बारे में गई ले अरमिया कौन चीज केती पहन ले रहा भैया सोना के केती पहन ले रहा आख्तन फेफ तक यार खमान मंगर के और ये बात हुए है सहती वे श्रीराम में और चोर पैदर ईंटा से गए लेके रूफ कर ले भैया ये हु चीज हमारा देश में सुरीनाम में भी हो रहा है। बहुत अफसोस की बात है। और हमारा जो यानी कि मिनिस्टर है हनीस यानी कि मनोरज जो है बोले है क्रिमिनल वन साका हुए अबे बताब के तरह साका हुए है अबे बताब के तरह साका हुए भैया कुछ साका फाका ना हुए है बहुत ज्यादा हुए है। तो यहाँ पे तुल जानो भैया जोंस के एनडीपी के तो हाँ एनडीपी के पार्लियामेंट पार्लियामेंटारी एबी जोस बोले हैं बोले संतोखी बोले एगो टूटा पुराना बोले ब्रांतवेर के ओतो किने ला सेफत तक दैचन अमेरिकन डॉलर बोले देख ले हम लोग कितना विशाल बाटी बोले हम लोग तो 35,000 डॉलर में किरी ला बोले देखे संतोखी का कर ले रहा उबरिसिया तब की बोले 70,000 सेफन तक दैचन डॉलर में बोले किने रहा अपर इखेर प्रयोग पे बोले एगो बेस फॉर द ब्रांतवेर एगो बेस किने रहा तेरवार द फंसीवा बोले हम वही आला इसने वाल क्ली बाटी फेफन देख ले हम कितना भी साल बाटी देख ले कितना मोइसे देसवा जादे मी एक के खूब गरिया से ए बी यूज के बोले काम कर बोले इस बकवास तू ना कर। तो यहां बताए गए हैगा बोले है एज दे वेदर ऑन डेलिकेट इन ओवर फॉर द रखेरिंग तो उस समय पे तू भी रखेरिंग मेरे ले भैया देना में कहे नु चियो आप पूछ ले रे ले फोकस जोंस वारन दिस ऑटो नीट रेक स्ट्रिंग्स बाय ऑटो इंपोर्टर को मार खून अप को कोक बाय पर्सन इन सुरीनाम दी दिस रेस इन गब्रुक हदन से से फरसामल गवर्डन एंड फरकोख ऑन द ओवरहेड आल्सो अफकमस्टिक वारन इन फ्रॉम द ऑटो
मरत एबे जोंस बोले इकरवाने में तो जोन बोली भैया हमें तो बता देखो गया दिनवा का बोले है गया दिन वार्स क्यों करी से रखे रेंके फॉर गफालक सिग्नल बाय द वे से फॉर द कंपैटिबिलिटी वेट भैया हां अब देखो एरोवा हां बे बतावे कितना है कुर्सवा तो एक बारे में बड़ी लंबाल चौड़ा बोली से गया दिन हिस्टोरी कैसे फन सुरिनाम फॉलक सेव खनु फन अस्टेल क्रिटिक ऑफ स्वोनिस कंपालिटेटन वेद IMF आर्स क्यूरियस टेकन रोलबाग ओली इन कॉम्सर फॉर ऐसे स्टर्क इंस्टीट्यूट और बोले इरखा रहेंगे बोके को प्लानिंग है ये ना कि कैसे देसवा सुधारी गा भैया कैसे सुधारी तो ये हो बतिया आप लोग को हम बता ही दी लबे मिसी काबा सुनियो का करे भैया मिसी काबा के बात लोग को हम जरूर बताएंगे कि मिसी काबा के कहानी क्या है और क्या नहीं है हम जाए वाटर ओवरलस के बारे में भैया सुरिनाम में मिनिस्टर है क्यूरी एगो मिनिस्टर क्यूरी है बोले वाटर ओवरलस ए लेरारन तो पर सेटन अंडरवेज सेक्टर अंडर ड्रग और बोले ये फ्राउ मिस्टर बोले बहुत कमती है बरखा बहुत बरसे है लड़का नामों से पढ़े है अंडरवे सेक्टर बोले अख्तरैजा है बहुत अख्तरैजा है फॉल्क जब भविष्यवान ही फिर मिनिस्टरी के अफ़कलोपन प्रयोग द क्लाख्त अनफ़ंगन फ़ंस स्कूल लीडर्स ऐसे वाल परमारी भी हो बेनलान के बरखा बहुत बरसे है लड़का स्कूल ना जाए पाए या फ्राउ मिस्टर स्कूल ना जाए पावे है ऊपर कम करता कमती है जिस ऑल दिस साक हैप्पी इन सुरिनाम और हम लोग के क्या बोलेगा वाइस प्रेसिडेंट जो रहेगा ग्रेगरी रुसलान एक बारे में बहुत सर्ख कर भैया वो लिखल है यहाँ पे कर बारे में हम जरूर आप लोग को बताएंगे तो लो ने जानो टूरिस्ट मांगे सुरिनाम ढेर जैसा तो मेरे ख्याल से और यहाँ पे बताई गई है टूरिस्ट सुरिनाम में बहुत मांगे बिगी पान तो सब कोई बहना गैल है गया ना निकेरी में तो हाँ बिगी पान बहुत आदमी गए है निकेरी से बोट लेके जइयो बहुत अच्छा लगे भैया हम भी गईली है घूमियली अगर आप ना गए हुई हो तो जइयो बिगी पान तो सुंदर हीरा लुंडा के नाच आपको हम स्वागत करते हैं उस्तादों के उस्ताद भैया सुंदर हीरा भी आकर हमारा प्रोग्राम में भाग ले लिया है आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं तो यहाँ बताए गए कौन से बताए गए हैगा प्रेसिडेंशियल वैरखरूप एगो हैगा जो टूरिस्ट ऑन्टवेकल करे हैगा बुधवार के निकेरी में बोली से स्टेक होल्डर्स कौंसिल सीखे कि हम लोग के जो टूरिस्ट सेक्टर हैगा का बोले हैगा बिगी पान के निकेरी में कोरोनी में चाहे उस सबके फरबेहतर करे के दोस्तों बहुत लंबा चौड़ा लिखल है लेकिन आप लोग को हम छोटे में बताइला कारण कि न्यूज काफी है दोस्तों और जो न्यूज ये काफी है तो आपको हम जरूर बलंग रहेगा न्यूज तो और बताएंगे न्यूज तो सब बलंग रही होता है लेकिन और तो जानो भैया निकेरिये में हम अब्बे बाटी भैया सुंदर हाँ अब्बे निकेरियम बाटी तुलो ने जानो है एगो आदमी सिपाही हुई के और एगो आदमी के दाग दे रहा घर द्वार के बारे में कुछ दिन हुए भैया आप लोग को हम बताए नहीं लिए एकर बारे में तो ई अनमिया सिपाही रहा और हिर कर ले रहा एगो घर हुआ वहां पर दोस्तों और यहाँ पे मेरा घर हिर कर ले रहा ई सिपाहिया न मांगत रहा निकले घरवा में से तो उस अरमियन चिराग पानी एक नरवा घरवा के बंद कर दे रहा अपार्टमेंटवा के तो इस सबके निकरे पर गए तो ई अरमिया का करिस एक रोज गैल है हिर दरवा और देखेगा एक नरवा हुआ घरवा में बेशक है और जो देखे बेशक है बस निकारिस अपन पिस्तौल और दाग के रमिया खुआ मार ढाड़िस और इसको तू रहा भाई नौकर भाई ये रमिया स्कोतू रहा स्कोतुआ अपन दिन स्वापन से दागी से एक बार रमिया के यार के और वो मर गए भैया अब एकर बारे में के स
सजा मिले ले भैया ना एक ना दुई ना तीन 20 बरिस के सजा पाई से। एक बोले तू सिपाही होई के और तू इतना बड़का चीज गए ले ऊपर से तू गए ले बाटे लांटी के पिस्तौल से मोर्त करे। बोले तू मोर्द नार बाटे, बोले तू मोर्त कर ले बाटे और ऊपर से रमिया के या खवेर खवेर जितना रहा सब बसलाख कर ली से दोस्तों, सब बसलाख हो गए है। एक बारे में आप लोग को हम बताई है और यहाँ पे नाम भी है भैया, नाम भी है पुलिसी अमत नरवा के नाम रहा अफजल और जो अंदर नी मरवा रहा उद्रियन दर तक यार के भैया आकाश जगरूप रहा इन इदे सिंगावैक निकेरी में, इत सिंगावैक निकेरी के बात है और 14 तारीख अक्टूबर में 2025 में झगड़ा भैला और एक दागी से भैया यहाँ पे बताए गए हैं। शायद आप लोग को याद हुई एक बारे में आप लोग को बताए ही रहे और यहाँ पर अब जाए के उस सजा पाई से 20 बरिश के हिंदुस्तानी है दूसर भैया अफसल दागी से आकाश जगरूप के दागी से हमारे प्यारे प्यारे जनता हम जाए है मीसी काबा के ओर। हाँ तो मीसी काबा कहाँ करी से भैया, मीसी काबा बोले है बेस्ट मैन तो लातों से मिलियो कौन हो दन मिलियो तो सब बुड़ल है डाम ओम सब बुड़ल है और अंदरे मीसी काबा बोले चलो पानी उलचो। हाँ तब तो तुस कौन हो द कर पाइये पनियाम कौन चीज कौन हो द करिए। तब बोले यू लेक बिरखर सतान तप आजारी, बोले फॉलोस कसों थे सामलीफन और बतावे है बोले सो आज द बाइगोन एंड बॉब स्पाइट बिसन द डेल आइट मार कर फन हंस एल्कर हैस होल्डिंग फॉर द दोदर फन मस्कीटन काकर लाकर। बोले उस सब चीज अपन घर में बोले धल्ले रहिए कि तुर घर में मस्कीटा स्कीटा आई। तब बोले स्पोइटी कर पाइये मैं भैया लोग के पैसा हो जाओ एगो बाइगोन किनो तो पता चली कि कितना मांगा है कितना मांगा रे लांटी दे आदमी इनकी तो कि अपने से तुम बस राइड करो बांटो जनता के कि खाली जइयो पके तो देखियो कि देख हम तो कहली पके दिखावे हमें स्टैम करियो। अब आदमी के नौ थे घर में भैया मस्कीटा काटे चिकनगुनिया काटे हैं डेंगे काटे हैं और कितना कितना चीज काटे आदमी इतना बीमार पड़े है चल टट्टा है सगरो बुड़ल है मूस सब घर में घुस घुस जा है। तो के चाहेंगा लांटी के चाहे जनता लोग के बाइगोन देवे के तुम अपने मारो ओग बहन आन मा कफन मिस्कितन कार्सन को मेरे खिस्ट ऑफ फ्रे द आल फोर बेलर वर्ड ऑफ आन खमेर फन खिस्ट ऑफ बाकी बिका है चीजवा मस्कीटा के गो कार्स बिका है मतलब कि वीरो बोले ओमा बोले हेगा खिस्ट ऑफ है मज तू जाने चीजवा खिस्ट ऑफ द वार ओम खाई ली ये बेट इन द रखेरी फॉर खुनी के फॉर्म दी दिंग तक कोम तो इंपोर्टेरा। तो ये बात है भैया तो तुझे ये का बोले दिखावे दुनिया के हम कितना सोरख माकर करे ला तुल के कि वीरो को ना बरियो वन ओमा बीमारी है। तो ये बात बताएगी अब देखो यहाँ पे बोले हैगा मोडसू पानी भैया स्त्रोम पूने ये को 80 बरिश के औरत है ताकतक यारख औरत के घर में पानी घुस गया और ना ऐसन तैसन पानी रियो लेरिंग के पानी टॉयलेट के पानी मलिच पानी गंधान पानी ई बुढ़िया माई के घर में घुस गया भैया सही फूरते बोले है दात ओक अन्ना ना दे रखे फैक्टन इरफान फान ओवर तलखवात बखंत तो स्पितरंत मेदन इन द अंदर ओपन स्ट्रांड डाम सब बुड़ल है रियो लेरिंग सब बुड़ल है और ये औरत के घर में पानी घुस गए हैं ये मैया कैसे खाई पी कहां जाई। बोले हैगा यहां पे स्कूल केंद्र लोपन दो रही ने सवात रोई पानी में डप डप जा भैया वही में मूस दौरे वही में सांप दौरे वही में एक से एक मलिश चीज और सूरीनाम देश में है हमारे जनता। तो हम सोचिए आप लोग को हम एक गीत सुनाई दे तो गीत के बाद में तो अभी हम आ जाएंगे देखो भैया संदीप बदलू आप लोग को क्या सुनाते हैं।

ٹکرایا دنہاخ والی رہا کہ لندن والی رہا، میرے خیال سے لندن والی سے، لیکن دنہاخ میں بھی دل بھی لوگ کے ٹکرا جاتا ہے، آپ کو تو ضرور معلوم ہوگا۔ اور دل کیسے ٹکراتا بھیا، جب باکس ہوئیے تب میں نہ ٹکرائے گا۔ تو ہیمن بدلو بھی ہمارا پروگرام میں آ کر جڑ گئے ہیں۔ ہیمن جی آپ کو ہم بدھو، ہیمن بدھو، ہاں سوری بھیا بدلو بول دیا، ہیمن بدھو ہے۔ تو بھائی یہاں پر بات چیت ہو رہا ہے بھیا ہیران نا، اپارٹمنٹ کمپلیکس ہے بھائی سری نام میں، جہاں جئیو فکانسی سے تو تو جانو بہت ڈھیر اپارٹمنٹ ادھر ادھر تری چھان بن کر لی ہو، کون میں لوہا لگل ہے کی نہ لگل ہے، جنگل انگل والا اپارٹمنٹ نہ لیے لیے جہاں تری ادمی ادمی رہے، ادھر ادھر کونا ہونا ورنہ نہ لیے جہاں تری فیلک ہے، اور کون بھیڑت میں بھی باٹے بھیا، لطور فطور کے بھیڑت میں نہ جائیے، لے ویم صفا بات بولی لا، لیو تری جہاں پرے تری فیلک فلو کریو، روفوا کمپلیکسون میں بہت جبڑ ہوئے ہے نانا۔ تو یہاں بتائی گئی ہے بتنے دیہات میں لے لیو ہے نا بھیا ہیمن بدھو، دیہات میں لے لو، کوٹا میں لے لو، وہ سب جگہ لے لو جہاں پہ تری اچھا اچھا آدمی رہے بھائی، تو لو جانو ہم کا بدول کریل تو۔ تو یہاں پہ دیکھو ایک اپارٹمنٹ رہا، اپیتر کمپلیکس رہا، وہاں پر بتائی گئی ہے یہ بات ہوئے گا پلانیٹ سترات میں سری نام، وہاں پہ دوئی بونس کے بھیا دوئی ملا جن ہوا رہت رام، بڑا پیسہ سبن مار دی اس نے فلنک فینا چیل اسکادو برسورخت اوک اربائیمن سے، اور وہ دادس جو ڈاکو جو رہا اس پیسہ وارد فول خدرن سب لے کے بھگ ہے۔ یہاں بتائے گئے ہیں ایسٹ بنا دی لگے 25,000 ایس آر دی 50 ڈالا ریب ویس، اور ایک والے کے 70,000 ایس آر دی کپڑا تہ چڑا لے سے بھیا کلیڈن سٹکن جون پہرے اور امیا ننگے نہ رہی ہے پیار، اوپر سے تاس 15,000 ایس آر دی کے موبائل ٹیلیفون بھیا برا بچائی کے رہیے، کا بولی ہم کا بولی ہم، ہمت نہ پرے بولے کے میں بتانا ہمارا کام ہے، بولیے جونی کا ہوئے چیوا، اور ہمار ہنیس منورت کا بولے ہے، بولے باپ رے باپ، بولے کرمینالی تی تو، بولے ہم ساکا کر دے لی کا سوچ لے بٹے، بولے ہم ساکا کر دے لی سی فرس میں، ہاں۔ اور دیکھو یہاں بھیا میسی کبا کا بولے بیٹا سا نہیں آپ کو سواگت کرتے ہیں، راجا راجا جو دیا گیا بھی خرونگن سے، راجا جی کہاں آپ کے رانی ہے اس کو بھی ہم سواگت کرتے ہیں۔ میسی کبا کا بولے ہے منسٹر فان فالوس کسونت کے، فالوس کسونت ہے کے سورینام کے، بولے ہیں بولے ہیں فرپلیکن دکھن اوم سیلن دیسن امریکن ڈالا کوستن ان خان تو خون ویا، بولے ہیں تبو شستر استر جو سر نام کے ہیں، بولے سب بھاگے ہیں بھیا، بولے دیسوا چھوڑ کے بھاگے ہیں، بولے ہم لوگ کے شستر نہ رہ گئے ہیں، بولے ہم لوگ کہانی کون دیس سے منگائے ہو کے 1400-1500 ڈالا بھرب، اب دیکھیے بتاوے ہے گا نا ماتری کلن ابے تو جئیو سیکن ہاؤس میں، اور کا بولے اکادمی سیکن ہاؤس میں دپن چادر بچھونا لے کے جائے کے پرے بیٹا سا نہیں، اب جب بیمار پڑیے تے کو اپن گھر سے سسٹر بھی لے جائے ایک پریشان بھیا، وہ سب سسٹر چل گئے ہیں، اور نہ جانی اس پوئتی مارے بھائی تب چیزوا کیسے ہوئی، کون چکل سے ہوئی، تب یہاں بتائے گئے ہے کہ بولے گا ایک کانی سے خدت میں دی بتا لے خون ام سیل من کوم سیل بھیل مال نیتن منسٹری ونر سے ان فلیفت ہوئی سے دن خروت سے آنس فن ہوئی تن فلیفت ہے من ہیب دا ام سیل ان ایک بخریفن دن ارخانیساسین ایروپا این منید ہے برکفون دن سو دا سے دات نیت میر کن میر نو دا خیبن دو جیک مجھ سے خدت میں سے خون وخان سی میسی کابا وورس دا۔ تو دوستو ہم انٹرنیٹ پہ پڑھ لی ہے
कि कितना आदमी जो दुनिया भर के कराइबी स्खबित के जो मांगे बैठा लंच जाए तो एस्टा प्लास पहेगा हाइटियान भैया हाइटियान जो न पर देश छोड़ के जाए मांगे हैं दूसरा प्लास पे हैगा जमैकान दर्द प्लास पे जाने के हैं हम लोग के देश रिनाम जो उतरा ढेर आदमी देशवा छोड़ के और मांगे भगे भैया हमें ही आ रहा तो हम आज मेरे ख्याल से हम उसको फेंक दिया है लेकिन अब हमें याद है कि कितना लोग है जो देश छोड़ के और भागे मांगे भैया और जब भागे मांगे हैं तो ओमा जरूर हाँ देखो हमें मिल गया है यहाँ बताए गए हैं हाइटी हाइटियान फीरन सेफन तक प्रोसेन मांगे हाइटियान अपन देश छोड़ के भगे जमैका के आदमी मांगे प्रोसेंट देश छोड़ के भगे और यहाँ बतावे सरनाम के आदमी मांगे हैं फेफुम फिर तक कोमा सीफ जो कांस पाई देशवा छोड़ के भाग जाए भैया यहाँ पे बताई गए हैं देखो भैया यहाँ पे बताई गए हैं कि कितना आदमी और यानी कि मांगे देश छोड़ के भगे फिर द प्लास पे पेरू फिर द प्लास में डोमिनिकन से रिपब्लिक ऐसे जे इक्वाडोर बोलोविया होंडुरास कनाडा एल साल्वाडोर कोलंबिया त्रिनिदाद लेकिन हम लोग दर्द प्लास पे बाटी भैया जो सन्नाम छोड़ के भागे मांगे हैं मिलोन जो अगर तुम्हार देश हम लोग के देश आज जब बढ़िया रहता कौन भागत भैया सिस्टर दतरा सब छोड़ के भागे हैं ऐट एन लक्सिकन है इसमें बिना सिस्टर के आदमी कैसे काम करी एकर बारे में यहाँ पे मिसी काबा बोले है मिसी काबा स्टेल दते फनासेन आंत्रेडन देश मात्र एक नीत ही आन खरा एंड दस नॉक सेज वन क्राफ्ट इज और बताई गई हैगा En de regering zendt ook in Brussel besloot 2024 uiteindelijk dit vertrag enigszins te bemoeilijken door de kosten van waar men met diploma's en aanvragen van een bevoegdheidsverklaring voor vertrekkende zorgpersoneel te verhogen naar 250 naar 1000 Amerikaanse dollar. Maar ik heb wel een mee omzeil kerke en op haak ja, bhaiya. De sister verpleging joh hai to wo desh chhod chhod bhage hai aur na khali u bhaiya je mauka pai to je hik dekhir bole betre me go se to ali bhi na khali nahi jalan bhaiya kiraso bhi admi ja hai america ja hai belgia ja hai aur desh sab ja hai hamare pyare pyare janta to aise je dekhi ab dekho bhai jano hum jai tari trempua kanti ha america ka tere bari barmasi kare जानो है तो हाँ नो मैं खराब आगा माना थी तेरे खिलवाड़ ना करे भाई मारी से हुआ काबले इसराइल में सब झाड़ फाड़ के धर दी था प्रो पलान हुआ कस के और मुझके तेल के जितना आया सब को इस पर पूरा दुनिया आज पलान है और मतलब भैया तेल के प्राइस हम लोग के इतना चढ़ गएगा खास के प्राइस चढ़ गएगा इकोनॉमी दुनिया भर के हिल गए है तेल से त्रेम देखो का करे उधर गाय के शीना में गए लेगा चिनुआ से बतिया है अब देख का कर से अब बड़का बोटिया पठा दे इसे कराई बीस में भैया और लोग बोटिया अपन पठा दे इसे हाँ रे नानी पठा दे इसे और का बोले मिली तेरा फ्लिक डेक्स कैपन तेर वीरल वो का नाम बा यूएसएस निमेट्स बता दे इसे भैया और वो जहाज आएंगे कराइबी स्खबित में बोले हैगा कॉकटेल पार्टी ऑफ द इन इमेंस स्किप बोए वो ने ऑफ ए नोड के फन कमांडर और वो आएंगे बोटिया और बतावे द खस्तन वेदर फॉर मॉर्गन अपहाल में सी टू फ्लिक्टर तो हुआ के फ्लिक अन सुरजाती भी बोला इसे कि चलो ऊपर और उच्च क्यूबा के बारे में है दोस्तों और तो जाने हैगा क्यूबा इज ऑफ एट कोरल चेमेंस और त्रिम बोले बोले उन्ना बोले कि अनफाल करी क्यूबा के मा क्यूबा मुन फॉर सेक्ट सेगमेंट्स तो जाने जहां जहां तेलवा बा हुआ हुआ जैसे जैसे चूटी शुक्रु देख के घस के धीरे धीरे ऐसे ऐसे त्रिम चारों बगल अपन आंखी फटाए बा भैया हमें डर है हमारा देश रे नाम में तो इडेशन अख्तन ट्विन तक में जब तेलवा निकलेगा तो का हुई भैया
तुलों जानो वेनेजुएला के संगे काकरी से तुरुम बतुम तुरुम काकरी से गा और काबल मदुरा के पकड़ के अब तक बन्न करी से भैया और हम और आगे जाए अपना प्रोग्राम लेके एक सिपाही भैया दर्द क्लास के तीन स्ट्रेपी के हम न जाने सब ट्रेन करी से कि ना करी से गा नाना अपन पिस्तौल से भैया अपने ही के दाग ले से पर ओंखलुक अरे कैसे सफा करे ये नीम तो कोर्सेस तू स्कूल या है तू पढ़े है तो के ट्रेनिंग है और तू डरता क्लास के सिपाही बाटे ना पहला नहीं पिस्तौल अपन हाथों में पकड़ ले अपन गड़वे में दाग ले भाई दागे के चाहिए चोर के हाँ डाकू के चाहे डागे के चोर के चाहे डाक अपने अपन गोड़वे में डाक के हो जाएगा अकादमी सिकन है इसमें सूतल है पहलाई के belachelijk mensen, een ongelukje kan overal gebeuren. Maar dan moet je toch extra voorzichtig zijn. Volg de voorlopige informatie ging het vuurwapen onverwacht af tijdens handeling met het dienstwapen. Hoe het incident precies heeft plaatsgevonden, doet horen wat hij gaat. Kill het, kalle trouwe, bhaiya. Or dagge, op een woorden, chotwale is het. To je baat hai. हमारे जनता सरनाम के सिपाही के बाद बतियाएला हम ना कोई दूसर देश के सिपाही के हम बाद बतियाएला नाना अब हम जाई तरी स्टार न्यूज की ओर अब देखो तुलन जानो पॉल समाज हार जो के बैठा हुआ तो बोरोंटो पाए बोरोंटो भैया अरे कर ऊपर कितना रोज से साक चले हैं ओएम के बड़ा गाड़ी देवतरा भाई संतोखी के गरियावे फे या पे के गरियाव गरियावर गरियावर ब्रंस वही के गरियावे लगल है कि हमें तुलुम बचाओ बोले हमें चाहे जाए के ओ एम फॉर द रेक्टर चाहे जाए के कोई ना बचाई पाए भैया सुमो हार जो के जाए के परल भैया यह बतावे द फॉर्माल के प्रेसिडेंट हिप ऑपड्राफ्ट गिवन फॉर अन ग्लैट ऑंडरसोक विया फाइनेंशियन इट इज डोर ग्लैट गेसेगड दैट एट अ टेलीफोनचे व्हाट वनउट इट कैबिनेट फॉर प्रेसिडेंट फॉर अन पर्सन्स कमोंडन ऑंडरसोक इज अब देगा बोलेगा ख्लात करे दे पुलिसी एर ओएम अभी भैया का बोलेगा अब जाएगा ऑन द सुप पे अन हेयर सेटिंग होई के बरोंटो के ओवर द फॉरदरिंग फॉर द पीजी फोर सेट ये के हेयर सेटिंग होई गए है और हेयर सेटिंग फॉर द फॉर्मल मिनिस्टर जो रहा रियात नूर मोहम्मद के तुलन जानू है ओके भी जाए के हेयर सेटिंग होई गए है ऑन द फर्स्ट का इवनिंग नाडो ओएम ओपनबार बहांदरिंग और मिनिस्टर बरोंटो तो के भी उस समय पे मिनिस्टर फॉर बेनलांस साका रहा सोमो हार्जो के और बताए गए हैगा यहाँ पे द ओएम ही फॉलोड द ऑनलाइन खसीर फॉर फॉलोइंग मार हिट इज ऑन द नेशनल असेंबली ओम टू स्टेम द फलीने फॉर फर्दर स्टेप असेंबली जो बोली हाँ ठीक हैगा तो तुलो जाने फॉर्मल के मिनिस्टर जो ना फाइनेंशियल ग्लिमर हुफदरा तो अब तक मिलियन ने लेके फरार है जो हम लोग के देश नाश करी से एनडीपी के रहा भैया तुलो जानो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के बहुत तो का बैठा रहा अब तक पैसा लेके भगल है और बताएगा का पोस्ट पर मांग में तुलो जाने मलावा के तो हां मेरे फॉर थिंकिंग फॉर फ्रॉड एंड मिस ब्रेक फॉर बफुक थेन हुफ रात के 11 बरिस बोले एक्टर आल यारन फॉर फ्लुक्टक है फॉर वार्डोर से होर सिटिंग ऑन सीकर ब्लेव और नूर मोहम्मद वार्ड फरदाख om onregelmatigheden rond van Pan American Real Estate woningbouwproject voor lage inkomsten, waaronder valse en geschriften, een oplichting van la via. To abbe deko jo minister van LVV ra oker bare me kaise van hai moet het namelijk ook voor de verhoor gaan. Oker naam se ban le raha tulun jano ekar bare me to hamare janta कैसे चीजुआ है और कैसे ना है दिस होर सिटिंग जो रहा हो गई यहाँ पर बताई गई है रियात नूर मोहम्मद के 9 बजे रहा वो रहा और मिनिस्टर रहा ब्रोंतो समोहार जो के 11 बजे रहा क्लीम और रूप द्रा तो ना रहा बक्यों कर सकवा 1 बजे चलल है और दो होर सिटिंग फरा नूर मोहम्मद रूप द्रा सेन बसलोतन तरवेल दी फान समोहार जो ओपन बार इज ऑप्शन ए कन फॉर सूप
चौहार जो बोले बोले हमार तो खून ओपनबार करिए और ब्रंतो के यानी कि नूर मोहम्मद के और हुफदरात के बोले बस लोग तक करिए कि कोई ना सुने पावे कि हम लोग यहाँ कौनची बतियाईला कितना चोरी कर ली है और कितना चोरी ना कर ली। ऑस्ट्रेलिया की ओर हम जाए भैया एगो टूरिस्ट जो रहा वहाँ पे भैया टूरिस्ट हुआ का करी से एगो जगह का नाम ओफर बरूम एगो जगह का नाम इंकापत इन पेरू पेरू के बाद थे ऑस्ट्रेलिया के आदमी गए ले भैया लोकल ऑथर बोलेगा 300 मीटर ऊपर हेलिंग पे लंग्स स्टाइलिंग हेलन वो नीचे गिर गए 25 तक यार रखा ऑस्ट्रेलिया वास में सेन फ्राउ पेरू में गए ला बुधवार के वो सब लाश हो गए रहा ना दाते हैं सामन एक वो खूब टूरिस्ट लेके गए ला वांडल करे माचू पिचू में और बोलेगा एक वो पुराना रास्ता शहर के नाम बा रूनी स्टार फंड इकास यहाँ बताया गया वो आदमी गिर गया उतरा ऊपर से लोकल ऑथोरिटी शुक्र प्रसिद्ध दूत और सा अब तो 300 मीटर से गिरी है तो कहाँ तू बची है भैया 300 मीटर यहाँ ना है तो ये बातचीत है हमारी जनता। अब देखो लड़का भैया अपन औदस के क्लाक करी से डॉक्टर एगो बिटिया है अपने नीदरलैंड से अखबार वर्ड इरफान फरदाख डॉक्टर अल्स मिंदर यारग यारन लंग ते हैवन uitgebuit het meisje maakte al vanaf jonge leeftijd lange werkdagen op markten in Nederland en België एगो छोटा लड़की छोटे पसे ओके चाहे बाजार में नीदरलैंड तो बेल्जियम में बेचे को कर बाप माय जो रहा ओके मिस ब्रेक करत रहा एकर बारे में भैया मिंदर यार यारन लंग ते हैवन uitgebuit ने मिस ब्रेक uitgebuit करत रहा भैया इन मेडल्स में दरियारक डॉक्टर दी सेल्फ अनकीप्ट थी घनार औदर दी वेदर मंगलवार के ओके पकड़ के बंद करे से देन बॉस की सिपाही दिस ओके बोले हैगा फरप्लिक्त वर्क अरबेट अपन बिटिया से करवावत रहा ई भला कोनो कोनो कोनो बाप माई है हमारे जनता दिस ई सब चीज भी होवे है। अब देखो भैया यहाँ बताई गई है कोंगो हम लोग चली कपड़ी के देश वहाँ पे 750 आदमी के एम्बोला खफाला हुई है कोंगो में वहाँ पे बहुत जबर है बीमारी कोंगो उम्बो ना जाइए भैया कोंगो में बड़ी बीमारी डेमोक्रेसी से रिपब्लिक कोंगो में और बोले सेफ होने फेक तक मैं से बस मैट भैलेगा और ओमा होने सेफ न सेफ तक आदमी मर गए हैं बताई गई हैगा और ये एम्बोला बफेस तक करी से बस मैटिंग हैगा तो ये बात हम में जरूरी रहा आप लोग को बताने को यानी फकांसी आने वाला है कितने लोग ने यात्रा पे हो चुका है फकांसी प्रयोग है वहाँ जाओ खुमो से इन्फॉर्मेर कर लियो मिनिस्ट्री फन बैतलान से साकर में वेबसाइट पे कर लियो कि हमें कहाँ माखे जाए के और कहाँ ऋषि को है और कहाँ ऋषि को ना है तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर जनता। तो आप लोग के हम एक गीत सुनाए माला पति मोरे लागे रॉबी गोगार के एक गीत है

और यही गीत से हम अपना प्रोग्राम को अब ख़त्म करेंगे। एक दो समाचार आपको हम और सुनाते हैं और उसके बाद हम अपना प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे।

मोती तुरम गईला चिनुआ से भेंट के ओकर बाद में डायरेक्ट रेसलान के पुतेन भी गईले भैया चिनुआ में और पुतेन फर्स्टर कर मानन के सशीना एंड रेसलान तेज से सेरेमनी इन द बीइंग जगह एक नाम श्री से के जो प्रेसिडेंट है भैया यिंग पिंग जो नहीं का रेसलान से प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतेन से 20 गो को चीत टेकन करी से उधर क्यूबा भैया बहुत जबर अमेरिका के ऊपर गुस्सान है फेल टेकन अमेरिका से अनक्लाक टेकन रुबेल कास्ट्रो के बारे में हमारे जनता स्टर्क स्टेकिंग फन द गुनुरू सी फिलिस इन यूरोपा भैया सेक्सुअल ओवरलैपबार आंदोलन फन सोवास सोवास गुनुरू एन सी फेगो बीमारी है इन यूरोपी से आपको लोग पति या स्टर्क तू खनुमन आप लोग जानो सुरिनाम में हाँ इवे चिकन गुनिया उस सबसे बचाई के रहियो और यहाँ यूरोपा में सोवा एन सो भी यहाँ पे बहुत ढेर है उससे भी आप लोग चौकस रहना जूता पहने में खिलवाड़ ना करियो भैया जूता ना हो तो जबर जबर लाट पहन लियो आप लोग से आप लोग तो यानी कि समझदार है तो आशा समझ भी आकर प्रोग्राम में जुट गए हैं आखिरी में फेस क्लाक रुवेल कास्ट्रो फॉर ना नेर हाल फनिक तो इकने नहीं कि सेशन नहीं खन तक में तो दोस्तों यहाँ तक था आज की समाचार सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा तुम्हारा मुलाकात होगे जितने लोग हमारे फेसबुक पे बेटा सन ही और यानी आशा जी और राजेश राम दत्त सुंदर हीरा मुन्न राय अनुरोध गंगाराम पांडे चित्रा धर्मेंद्र स्त्री अर्शिला भग्गू टोनी स्त्री और रांच राम लगन और छापा मियाँ देखिल भैया मालूम नहीं जे किसी को हम एरमा राम तहल हेमन बुद्धू जितने लोग हैं आप सबको यहाँ से हम क्षमा चाहते हैं तो फॉलोर बाय बाय स्वाइस बाय हर काम के लिए हर अफर्तेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl हर एक अफर्तेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07537322047 मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.

0: Thank you, brother. Thank you very much. Come on.
1: मुझे आज स्कूल में नहीं जाना है।
0: अरे क्यों?
1: नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता।
0: बेटी देखिए, आप कुछ दिन यहाँ रहिए, आपको अच्छा लगने लगेगा। और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ।
1: मैं दिल्ली में नहीं रह सकता।
0: नहीं, आपको यहीं रहना है हॉस्टल में कुछ दिन, समझे?

0: वेरी गुड। और ये कौन है?
1: ये मैं हूँ और मेरे पापा।
0: आपके पापा चश्मा पहनते हैं?
1: हाँ।

0: और दिल देना ही पयाए और दिल लेना ही पयाए। तो हमारे दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए ये कौन सा गीत है हमारे सुनने वालों। अनहित सुपर सॉन्ग फॉर नई खती नई खंत रोमांटिक सॉन्ग
1: सर की जो सर से वो धी
0: द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू मेरे महबूबा सॉन्ग दिनेश।

और तेरी चुनरिया दिल ले गई 90 का ये यानी कि हिट बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग जो आप लोग को हम सुनाते हैं। तो अगला गीत की ओर हम जाते हैं, रोमांटिक फुल सॉन्ग है और तेरी चुनरिया के बांध में हम जाते हैं, देखा तुझे तो क्या होता है, क्या होता है दिल में कुछ मजलता है।

वालों तुझे तो मिट ना जाए। और दोस्तों और अगला नई खंत का रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग यहां से जॉनी नंबर 1 का प्रोग्राम हम चलाते हैं।

आग से बड़ा और क्या है हमारे यारो लवर्स के लिए। बॉलीवुड सॉन्ग्स वन नेकन तक रोमांटिक सॉन्ग है जो आप लोग को लिए हम चलाते हैं राजा हिंदुस्तानी।

जी कर देखता रहूं, इतना प्यारा तुझे कौन बनाया है? रब ने बनाया है हमारे यारो। ये जो रोमांटिक सॉन्ग है बॉलीवुड नेक्स्ट का, आप सुनिए।

और जाती हूँ मैं और ढड़के जिया, तो ये सब बात तो होता ही रहते हैं। तो मूवी का नाम है कोबरा गर्ल, मैथ मुकेश का ये सॉन्ग है।

0: और नजर को संभालो, ये क्या हो रहा है? है और ये गीत जो है, मैं हरदम किसी को और वो ढूंढता है, फिल्म के नाम ही रास्ता, रास्ते का पत्थर, जिसमें अमिताभ बच्चन ने काम किए हैं। सिंगर इसमें मुकेश एंड आशा भोसले।
1: मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ, मुझे

और मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ और किसी को खोजता हूँ दोस्तों, एक रोमांटिक सॉन्ग के ओर।

0: और जादू है और जादू फिल्म यानी कि यार नई खंतक का रोमांटिक सॉन्ग यहाँ से हम आप लोग को सुनाए हैं।
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia.

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाउन की सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी आदाब, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है, हमारा काम यही है, हमारे मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

आप लोग को हम न सुरीनाम लेकर और देश की बातें समाचार हिंदुस्तानी भाषा में, नीदरलैंड्स भाषा में, निंगरे के भाषा में और रकम रकम भाषा में आपको हम जरूर सुनाएंगे। तो दोस्तों आओ चला जाए हम लोग सुरीनाम की ओर। सुरीनाम में दोस्तों बातचीत ये हो रहा है कि लांटी के जो गाड़ी है, मशीन है, लांटी के अपराध जो है, लांटी के बोले कि जो सामान है, तो कितनी जनता है भैया उसे बहुत बहुत मिसब्रोक कितना करे हैं और कितना है जो उसे सैनक ना बोले ना लांटी बोले ला विनती वाई लांटी पाई तो बोले लांटी चीज है चाहे टूटी और चाहे रही बोले हमें का। ऐसे बातचीत हो रहा है एगो इजुसु ओतो के बारे में हमारे दोस्तों। इजुसु तू जाने हैं नाल लावला भैया त्रैन वाहन के बातचीत हुए हैं जो एक दोस्त के नाम मिले भैया हजारन से मिले हैं। एगो करिया इजुसु डीमैक्स भैया तो ये गाड़ी जो है सुरीनाम के है लांटी के ओतो है तो लांटी के इतना मोई इसुसु डीमैक्स भैया जो 20-25 हजार में मिले है यूरो के बातचीत डाला के बातचीत हो रहा है तो इतना महंगा गाड़ी भैया लांटी के बिगड़ल रहा तो कम करता रहा मिनिस्ट्री फॉर आर्बेट वेरखलीखन है एंड यू साखन के तो ये गाड़ी भैया कुछ भैल रहा तो कम करता ले गए ये गाड़ी बनवावे गैल है बनवावे भैया और जो गैल है बनवावे तो गैल है यो तो वह बनवावे नहीं फिर तक यार के एक आदमी और गैल एगो मोन्तेर के देई से गा वो तो वह बनवावे के ब्लूमन फेल्ट वेक में कहीं एगो मोन्तेर है तो वो तो वह गैल ओके देई से बनावे के ब्लूमन फिर फिर यूर ब्लूमस्ट्रात ब्लूमन फेल्ट वेक में तो जब गैल है बनवावे तो बुधवार के ई गैल है ओतुआ लेवे तो ओतुआ ई बुधवार के गैल है लेवे और इतना महंगा गाड़ी ले के पोतुआ ले के अपी अदमिया जा है उस डाक के को पिकअप तो ई गैल है फिर यूर ब्लूमस्ट्रात में जिस ओतुआ दे रहा बनावे के ब्लूमन फेल्ट वेक में और ओतुआ ले के जा है फिर यूर ब्लूमस्ट्रात में तो हुआ पे एक दरी है जहाँ पे ओतो के मतलब कि फेल जरे हैं जहाँ पे फेल जरे हैं तो हुआ पे कर ओतुआ बुध गए अब ओतुआ बुध गए तो ये रमिया ना के बैल वल करे कोई के भैया कि आओ हमें यहाँ काबुल है ओतुआ स्लीप कर ये रमिया ओतुआ डमुए पे छोड़ दी से ओतुआ डमुए पे छोड़ दी से।

रात भर उतुआ हुआ छोड़त और उतना महंगा ओ तो 20-25 हजार अमेरिकन डॉलर को हमदार लांटी के ना है ओकर ऐकर तसाय गोदी में लेके जातू अपन ओतुआ साय तू गोदी में लेके जात मा लांटी के ओ तो ना है तो चलो तो वह डमुए पे छोड़ दी बिहान भरे हम घूमत घामत एगो बतरे लेके जाबे ते भैया हिया बतावे है जे इस बिहान भर दोंदर दाख के जे गए ले ते देखे पिकअप स्पोरलो से चोरी हुई गए भैया लांटी के ओ तो लांटी के ओ तो चोरी हो गए भैया। अब एक बारे में सिपाही खोजबीन करे है तो हुआ लांटी के चीज जितना है बोले विनती वाही लांटी पाई तो लांटी के चीज हुआ पे सबन देखभाल ना करे तो ईसूसु दे मैक भैया तो ये तख तक तो ये सिप तक तख तक खेरार फिक्टोर पिकअप डाम पे रमिया छोड़ दे रहा ब्लूमेनफेल्ट वेक में वो तो बिगड़ गया रहा देरा बनवावे के गए लो कर बात में गो फर्नेस बाक लगे फर्नेस अने बेल्ट लगे वो तो हुआ बुद्ध गए रात भर छोड़ दे इसे बिहान भर गए वो तो चोरी हो गए तो ऐसे अनमें लंटी के चीज से चले जाकर तो पसीना से गार के पसीना गार के जब 25-30 हजार डाला वो तो किनते ना तो डमुआ पे कभी ना छोड़ते पलवार के बेल करते स्लीप वाखन के बेल करते बोले ओतुआ हम घींच के फिर ले जाई का बोले है धर दे का बोलेगा मोंतियर लगे नहीं कहीं फैल जगह पे दिस सॉर्ट थिंग इज क्राइक अवे इन सूरीनाम में से तो ये बात है। तो आज हमारा फेसबुक में कितने लोग आ गया है जिसको नाम बताना मुझे जरूर चाहिए और यहाँ पे दिखाए गए भैया राज राम लगन आ गया है ऊपर से देखिए भाई कौन कौन उर्शिला भग्गू पंडित तिलक धारी व्यक्ति आपको स्वागत करते हैं दीदिया धर्मेंद्र इसरी रानी दलांत उर्शिला भग्गू राज राम लगन भी आ गया है आपको भी स्वागत करते हैं। चित्रा अवतार सूरीनाम से आ गया है और पंडित अनुरोध गंगाराम पंडित भी आ गया हमारा प्रोग्राम में और देखा जाए तो और आई फतिंगन आ गया अरे टोनिया आई गए टोनी टोनी आपको भी हम स्वागत करते हैं हमारा प्रोग्राम में और लोग यहाँ पे हैं लेकिन शायद किसी को नाम हम अभी ना बता पाया तो माफी की तलकदार है अभी अब आप लोग को और हम बताएंगे क्या हुआ है और जबरदस्त नीर भैया श्री नाम के हालत है बहुत गड़बड़ है बहुत बोट चले हैं डमुआ पे सब बोट चलावे ना कुरियारा बोट भैया वो का बोले मऊतर बोट चलावे है तो नहीं हाँ मऊतर बोट चलावे भैया चारों बगल बुड़ल है देश एकदम बुड़ गए इकोनॉमी बुड़ गए चोरी हिया से एकदम टोक्यो तक है लांटी कुछ करे ना है वात्रा पोंपू गयाना से लेनी आज हमारे देश सूरीनाम में देखो का भइल है इरमा राम तहल सिंह देखो का हुए अभी आपको हम फोड़ फोड़ बताएंगे बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है द इकोनॉमी फन है इस हेला माल एकदम चपड़ाई के भैया ऊपर ड्राइव न करेला इकोनॉमी फन है लांतेस हेला माल हिंदुस्तान में बोले चपड़ाई के है चपड़ाई के है तो एक बारे में और जो बोले फोर्स से फन फरी न किंग फन इकोनॉमी है श्री नाम के जिसका नाम बा फेस ते को भैया का नाम बा स्टीफन देवी प्रसाद वो बोले हैगा कि ये रखे रेंगवा जो नबा का बोले है सिमोंस के और ग्रेगरी रेसलान के और झुआ भर के आदमी खुरपुआ मा केकर नाम ले भैया फतिंगन केकर नाम ले तब बैप बा भैया आ बॉप है फे यहाँ यानी कि एनपीएस है एनडीपे तो बास है और जितना सब के बिटोड़ के ले ले रहा सिमोन और फे यहाँ पे एक कंटिक कर ले सब कोई के संगे काम करे और बुढ़े के देसुआ भैया और बुढ़े के देसुआ हाँ कुछ होवे ना है तो हिया स्टीफन देवी प्रसाद का बोले है इकोनॉम के भैया फोर्सेटर है बोले है का बोले इस फन मीनिंग दर्द रखेरे ऑन डांस अफिसर जो इंटरनेशनल फंड्स बोली से आईएमएफ इस सब के जोन बोले कूट से चाहे चलावे के बोले ना चलावे हैं फोकस द इकोनॉम लेग द सिचुएशन इन एट लास्ट मोमेंट मोमेंट स्टेबल मार वर्ड तक

tegen gedom aan een aantal belangrijke zekerheden. Toen ik er waren met Steven bhaiya bahut bahut baat boli se. Bole hai ga zelf landbouw sector jo nadmi hamar khetiyar hai. Je hum log ke marchwa khawawe hai erma. Je bana khawawe hai. Jo nadmiya dhan lagawe hai. Yahan batai gai hai. Aur ke hai hum log ke hindustani hai. Jo aaj khai khua pe surgu kare है कि आवे हैं और उस सब के यहां बतावे आज फोर बिल नूम दे हेड ऑन ब्रेकर फॉर द डेलक आग्रो बलेट ऑन द लैंडबाउ सेक्टर फर्दर टू ontwikkelen. Verder noemde Debbie Persaat het jammer dat de uitvoering van de comptabiliteitswet is verschoven naar de laat. Bij hem Nikeri kebaat bata bhaiya. Nikeri me bhaai hare. Boera na. Dam pe bhaiya. Truk ke truk hua pe jaike. Op fasal hai. Ta Moon Narayan bhi aayge. Blumenfeld weg ke. Aur Blumenfeld weg ke bhi bataye hua par. Ego pickup chori bhail hai lanti ke. To Moon Narayan. To hua par ek. मिला छोड़ दे रहा अब देखो बहुता कवरत या का बोलेगा अब देखो कौन चकल्ला जवाहिल है एक तो बहुतर्स के औरत मफराओ वाल्डरिंग जो नहीं कभी मुंह ना खोले भैया कभी रखेरे के बाद कुछ बोलबे ना करे हैं जोन समय पे पोडियम पे रहा तब बोले रहा बोले मी वांटे का कोंद्रे न बाका बोले हमारे देश तुल लौटाड़ बोले फिर हम अंगला लेवे अब देशवा जा पाएगे भैया तो कुछ ना दे ना में बैठ के खा है बैठ के फिल्म पे देखावे से पीछे बैठ खादरिंग लगल है और जैसे कि भैया हुआ कैंटीना ना है पौसन है तू हार्ड वर्कर बाटे कि चुके का बोले समय ना जाए खाए को देश के बारे में तो एकदम भिड़ल बाटे तो ये हैगा अब एनडीपी के पार्लियामेंटरी इंग्रिड बाउटर्स वाल्डरिंग का बोले दोंदडा के नेशनल असेंबली में बोले है एगो हिंदुस्तानी भैया ड्रीम फाइव तक यार के है ये रमिया भरी बदमाशी करी से बेच फिर रहा तो नहीं बस चफेर रहा भैया अब बेमहरिया लड़कन के अंतस्त करत रहा छुई मुई करत रहा भैया बस कोनो लड़कन फिल्म बनाई के बस पटा दी से के पकड़ के बंद करी से तो अब एकर बारे वेल अब इंग्लिश बहुत से बोले बोले कि अब चाहे बस में लड़कन जहां बोले को बफाई लखेंग जाए के तरी सोचो भाई यहां बतावे है ओगो ड्री एफ तक यार के बिशपेर के पकड़े से नतुरलग दी फरवाह वर्ड फान है बस तस्त फान स्कूल किंदरन दी है फान नार स्कूल फर फूर द शफेर वाग बोले है और बोले है का अब चाहेंगा उस सबके बफाई लग करे के बोले किस ने से फिल्म फिर याल खान वार में बिशपेर उन से किंदरन में बपैर किंग एक तो बेमरिया लड़कन है बपैर किंग है देश के किंदर के ने फाक नीट फॉर से सेल्फ अपकोमन शफेर में तो बखलाइडर तो स्टूडेंट बोले को बखलाइडर चाहें जाए के और फॉर द रेस्ट खाली वही के बारे में बोली से वारफान वो नतुलक फरवाह जब तू रखेरिंग में बाटे तो घर के अपन घर के ना अब चाहे हम तेरी रोतर दमोआ में भैया स्टापल के स्टापल पैसा मिलल है नया न्यूज से नानी एक फैलन साग भर के पैसा एरो मिलल है भाई एरो मिलल है ऐसन तैसन थोरो है एरो मिलल भैया अब कहाँ मिलल है एगो सुरीनाम से रेस्टोरेंट में मिलल भैया एक साका पैसा मिलल है और एक बारे में दुई परानी के सिपाही पकड़ी से दुई मिला पकड़ान है और दुई आदमी पकड़ान एगो इन फाइव तक यार का आदमी ओकर औरत है दुई फिर तक यार के नमुआ बे ना लिखल है हाँ जनमुआ आई ना चलो जानो जोनी की तो भड़ाके से तो हम बोला अबे नमुआ ना है कि चिनुआ है कि हिंदुस्तानी है कि कपड़े भैया केकर है रेस्टोरेंट ऐसा ही सबको चलावे रेस्टोरेंट तो यहाँ बताए गए है दुई प्राणी के पकड़ी से और ये पैसवन कैसे में कौन पैसा रहा बोले ये पैसवन रहा धोवत रहा भैया जैसे हड़िया बर्तन धोवा है
रेस्टोरेंट में जाने गिलास धोवा, हड़िया बर्तन धोवा तू, तो इसे पैसा धोत रहा भाई, पैसा धोत रहा। बाकी लेतल लगना वेतवा से हिंदुस्तानी ना नीदरलैंड्स में बोले इसे पैसों वेतवा से करत रहा, और बोले क्रिमिनल वेतवा ऑर्गेनाइजेशन इसे रहा नी खंतिन में के इस के पकड़ी से नीदरलैंड के सिपाही पकड़ी से, और बोले हैगा शुल्क ते हमर खमाक फन वेतवासन यहां पे बताई गई है हमारी जनता, और बोले कॉन्टांत खेल रहा फर मुडलक एगो तास रहा फन द श्री नाम से तोको सेन में गेवन, बोले ओम नित ऑफ द फादर सर नाम के को तास मेरा जैसे कि कुछ कोनो सौदा पानीओ मा धरल है। बोले बेन दूर सुकिंग इन द कुकर फन रेस्टोरेंट बे खत ऊपर से एगो पैसा गिने वाल मशीन भी हुआ मिलते, इतना पैसा रहा कि मशीन गिनता भैया 1 2 3 से ना गिन पिए, इतना ज्यादा पैसा रहा। तो एंडलक भैया इन हेट फलन लक ऑफ स्पोरिंग दिस दुई बरानी के पकड़ी से टोटल एगो लैपटॉप मिलल है, और पैसा कितना रहा अनख फिर 13,000 euro कॉन्टांत खेल इन बसलाग गनोमन, और बोले 21 मई के फलक दो नोगन आनफुलन दो दोर सुके बै अन रेस बीरो इन अमस्टरडाम, दार वेर्ट रहें 12,000 euro कॉन्टांत मिलल है। एडमिनिस्ट्रेशन टेलीफोन इस इन बसलाग दिस एगो रेस बीरो में भी मिलल है 12,000 अमेरिकन डॉलर। भैया लोन आप लोग को एक बार बताइए, आजकल जो जइयो वैकेंसी से रेस बीरो लोन भी कौन पैसा ना ले सबके चाहिए रजिस्ट्रेट करे के नहीं, कोका के पैसा से आदमी पूरा दुनिया में घूमी, तो वही मारे असद हिया नीदरलैंड के रेस बीरो जो है कौन पैसा ना लेवे है। मैं 12,000 वा एकर कहाँ से आयला भैया, कहाँ से आयला। अब ये आमस्टरडम के गो रेस बीरो में और ये चीज मिलल है भाई। अब सोचो रेस बीरो इधर वेतवा से करत रहा का, बाकी हुआ रेस्टोरेंट हुआ तो सीकर तो राजेश रामदत्त भी आ गया है। तो राजेश आपको हम अपनी प्रोग्राम में बहुत प्यार से और दिल से स्वागत करता है। भैया एक आदमी अपन घरे तू जाने सुरीनाम देश में सब कोई अपन अपन घरे अपन ओतो धरे के खराशे बनाए रहे हैं कि हम अपन ओतो जाई फैल से अपन खराशे में धर देवे ना, वो लांटी के कम करतवा जो लांटी के पिकअप जाई के ब्लूमन फेल्ट वे के डाम पे रात भर छोड़ दे रहा कि ओतो चोरी हुई अपन गाड़ी आदमी लोन सुरीनाम में। बोले नामी ट्वेडर फ्रॉ जाने नाराज ऐसे बोले ना, बोले हमार फरफूर हमार ट्वेडर फ्रॉ है, ओके सबन भैया सब कुछ मांगा है धोई ओई के चमकाई चमकाई धरे है। तो ऐसे भैया के खराचे एगो रहा सुरीनाम में अचित्ते में, भैया अपन खराचा अचित्ते में भैया लुटेड़ा गईल है, और कटली से ले के भैया ऊपर से एगो ईटा कपड़ा में बांध के और गईल है अनमिया के मुड़ी पे मारी से अनमिया गिर गए भाई अपन ही खराचे में, और पैदल गईला भैया बातचीत हुए एलेंडरस्ट्रैट में। एलेंडरस्ट्रैट में भैया एलेंडर हुई कि ना ये एटफ्लिक की सिपाही कर बारे में गई ले रमिया कौन चीज केती पहन ले रहा भैया सोना के केती पहन ले रहा आख्तन फेफ तक यार खमान मंगर के, और ये बात हुए है सहती वे श्रीराम में। चोर पैदर ईटा से गए लेके रूफ कर ले भैया ये हु चीज हमारा देश में सुरीनाम में भी हो रहा है, बहुत अफसोस की बात है। और हमारा जो यानी कि मिनिस्टर है हनीस यानी कि मनोरथ जो है बोले है क्रिमिनल वन साका हुए, अबे बताब के तरह साका हुए है, अबे बताब के तरह साका हुए भैया, कुछ साका फाका ना हुए है बहुत ज्यादा हुए है। तो यहाँ पे तुलो जानो भैया जोंस के एनडीपी के तो हाँ
NDP-parlementariër Ebe Joos bole he. Bole santo ki bole ego tutaha purana. Bole brandweer ke auto kine la 70.000 Amerikaan dollar. Bole dekhele hem lo ketra bhi saal baati. Bole hem lo ta 35,000 dollar me kiri la. Bole dekhe santo ki ka kalle raha ubarisya. Tabki. बोले 70,000 डॉलर में बोले किने रहा अपर इखेर प्रयोग पे बोले एगो बेस फॉर द ब्रांडवेयर एगो बेस किने रहा तेरवार द फांसी बोले हम ओही आला उसने वाल क्ली बाटी फैफन देख ले हम कतरा भी साल बाटी देख ले कतरा मोइसे देश वाज आदमी एक के खूब गरिया से ए भी यूज के बोले काम कर बोले इसे बकवास तू ना कर तो यहां बताई गई हैगा बोले है एज दे वेदरम duidelijkheid hier over van de regering de usa me pe tu bi regering mere le bhaiya de na me kahe nu chiyu a puch le rele Volkers Jones waren deze auto niet rechtstreeks bij een auto importeur gekocht maar gewoon opgekocht bij personen in Suriname die deze race in gebruik hadden ze zijn verzameld geworden en verkocht aan de overheid alsof ze afkomstig waren in, van de auto Markt Ebe Joos bole ik er waren mee te John bole bhaiya humme to bata ab dekho gaya dinwa ka bole hai gaya dinwaars kyu kari se rakhe rinke voor gevaarlijk signaal bij de wijziging van de comptabiliteit wet bhaiya ha ab dekho erwa ha be bata ab kitna hai kursawa तो एक बारे में बड़ी लंबाल चौड़ा बोली से गया दिन हिस्टोरी कैसे फन सिरिनाम फॉलक सेव खनु फन अस्टेल क्रिटिक ऑफ स्पोनिश कंपालिटेटन वेद IMF आर्स क्यूरियस टेकन रोलबाग ओली इन कॉम्सर फॉर ऐसे स्टर्क इंस्टीट्यूट और बोले इरखा रंगवा बोल के एक को प्लानिंग है ये ना कि कैसे देश वा सुधारी का भैया कैसे सुधारी तो ये हो बतिया आप लोग को हम बता ही दी लबे मीसी काबा सुनियो का करे भैया मीसी काबा के बात लोग को हम जरूर बताएंगे कि मीसी काबा के कहानी क्या है और क्या नहीं है हम जाए वाटर ओवरलस के बारे में भैया सुरीनाम में मिनिस्टर है क्यूरी एगो मिनिस्टर क्यूरी है बोले वाटर ओवरलस ए लेरारन तो पर सेटन अंडरवेज सेक्टर अंडर ड्रग और बोले ये फ्राउ मिस्टर बोले बहुत कमती है बरखा बहुत बरसे है लड़का नामों इसे पढ़े है अंडरवे सेक्टर बोले अख्तरैजा है बहुत अख्तरैजा है Volgens de bewindsman heeft het ministerie de afgelopen periode klachten ontvangen van schoolleiders uit zowel Paramaribo binnenlandke, Barka Boudbartse, Larkan School Najaipa, Juffrouw Meester School Najaipa, Oppers Kamkarta Kamti, dus al deze zaken heb je in Suriname. En Hamlukke, Gabriel Hega, vice-president, John Hega, Gregory Rusland, ik er waren mee, Bouw zorgen, Kareva Jabo Likal, Jape, ik er waren mee, Hamidjerur आप लोग को बताएंगे तो लो ने जानो टूरिस्ट मांगे सुरीनाम ढेर जैसा तो मेरे ख्याल से और यहाँ पे बताई गई है टूरिस्ट सुरीनाम में बहुत मांगे बिगी पान तो सब कोई बहना गयल है गया ना निकेरी में तो हाँ बिगी पान बहुत आदमी गयल है निकेरी से बोट लेके जइयो बहुत अच्छा लगे भैया हम भी गयली है घूमिए ली अगर आप ना गयल हुई हो तो जइयो बिगी पान तो सुंदर हीरा लुंडा के नाच आपको हम स्वागत करते हैं उस्तादों के उस्ताद भैया सुंदर हीरा भी आकर हमारा प्रोग्राम में भाग ले लिया है आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं तो यहाँ बताए गए कौन से बताए गए हैगा प्रेसिडेंशियल वर्कग्रुप एगो हैगा जो टूरिस्ट ऑन्टवेकल करे हैगा बुधवार के निकेरी में बोली से स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंसी के कि हम लोग के जो टूरिस्ट सेक्टर हैगा का बोले हैगा बिगी पान के निकेरी में कोरोनी में चाहे उस सबके फरबेहतर करे के दोस्तों बहुत लंबा चौड़ा लिखल है लेकिन आप लोग को हम छोटे में बताइला कारण कि न्यूज काफी है दोस्तों और जो न्यूज ये काफी है तो आपको हम जरूर बलंगरई का न्यूज तो और बताएंगे न्यूज तो सब बलंगरई होता है लेकिन और तुलन जानो भैया निकेरिए में हम अब्बे बाटी भैया सुंदर हाँ
अब्बे निकेरियां बाटी तुलोने जानो है एगो आदमी सिपाही हुई के और एगो आदमी के दाग दे रहा घर द्वार के बारे में। कुछ दिन हुए भैया आप लोग को हम बताए रह लिए एकर बारे में। तो ई अदमिया सिपाही रहा और हिर कर ले रहा एगो घर हुआ वहां पर दोस्तों, और यहाँ पे मेरा घर हिर कर ले रहा ई सिपाहिया न मांगत रहा निकले घरवा में से। तो उस अदमियन चिराग पानी एक नरवा घरवा के बंद कर दे रहा अपार्टमेंटवा के। तो इस सबके निकले पर गए तो ई अदमिया का करिस एक रोज गैल है हिर दरवा और देखेगा एक नरवा हुआ घरवा में बेशक है और जो देखे बेशक है बस निकारिस अपन पिस्तौल और दाग के अदमिया खुआ मार ढारिस। और इसको तू रहा भाई नौकर भाई ये रमिया स्कोतू रहा स्कोतुआ अपन दिन स्वापन से दागी से एक बार रमिया के यारे के और वो मर गए भैया। अब एकर बारे में के सजा मिले ले भैया ना एक ना दुई ना तीन 20 बरिस के सजा पाई से। एक बोले तू सिपाही होई के और तू इतना बड़का चीज गए ऊपर से तू गए बाटे लांटी के पिस्तौल से मोर्त करे बोले तू मोर्द नार बाटे बोले तू मोर्त कर ले बाटे और ऊपर से रमिया के या खबेर खबेर जितना रहा सब बसलाख कर ली से दोस्तों सब बसलाख हो ये है। एकर बारे में आप लोग को हम बताई है और यहाँ पे नाम भी है भैया नाम भी है पुलिसी अमतनरवा के नाम रहा अफजल और जो अंदर नीमरवा रहा उद्रियन दर तक यार के भैया आकाश जगरूप रहा इन इदे सिंगा वेख निकेरी में इत सिंगा वेख निकेरी के बात है। और 14 तारीख अक्टूबर में 2025 में झगड़ा भैला और एक दागी से भैया यहाँ पे बताए गए हैं। शायद आप लोग को याद हुई एकर बारे में आप लोग को बताए ही रहे और यहाँ पर अब जाए के उस सजा पाई से 20 बरिस के हिंदुस्तानी है दूसर भैया अफसल दागी से आकाश जगरूप के दागी से हमारे प्यारे प्यारे जनता हम जाए है मीसी काबा के ओर। तो मीसी काबा का करी से भैया मीसी काबा बोले है बेस्ट में तो लातों से मिलियो कौन हो दिन मिलियो तो सब बुड़ल है डाम ओम सब बुड़ल है। और अंदर मीसी काबा बोले चलो पानी उलचो हाँ तब तो तू कौन हो द कर पाइये पनियाम कौन चीज कौन हो द करिए। तब बोले यू लेक बिरखर सतान तप आज जारी बोले फॉलोस कसों थे सामलीफन और बतावे है बोले सो आज द बाइगोन एंड बॉब स्पाइट बिसन द डेल आइट मार कर फन हंस एल्कर है सोडिंग फॉर द दोदर फन मस्कीटन काकर लाकर बोले उस सब चीज अपन घर में बोले धल्ले रहिए कि तुर घर में मस्कीटा स्कीटा आई। तब बोले स्पोइटी कर पाइये मैं भैया लोग के पैसा हो जाओ एगो बाइगोन किनो तो पता चली कि कितना मांगा है कितना मांगा रे लंटी दे आदमी इनकी तो कि अपने से तुम बस राइड करो बांटो जनता के कि खाली जइयो पके तो देखियो कि देख हम तो कह ली पके दिखावे हमें स्टैम करियो। अब आदमी के नौ थे घर में भैया मस्कीटा काटे चिकनगुनिया काटे हैं डेंगे काटे हैं और कितना कितना चीज काटे आदमी इतना बीमार पड़े है चल टट्टा है सगरो बुड़ल है मूस सब घर में घुस घुस जा है। तो के चाहेंगा लांटी के चाहे जनता लोग के बाइगोन देवे के तुम अपने मारो ओग बहन आन मा कफन मिस्कितन कार्सन को मेरे खिस्ट ऑफर फ्रे द आल फोर बिल्डर वर्ड फन आन खमेर फन खिस्ट ऑफर बके बिका है चीजवा मस्कीटा के गो कार्स बिका है मतलब कि वीरो बोले ओमा बोले हेगा खिस्ट ऑफर है मज तू जाने चीजवा खिस्ट ऑफर द वार ओम खाई ली ये बेट इन द रखेरी फॉर गुनी के फॉर्म दी दिंग तक कोम द इंपोर्टेरा। तो ये बात है भैया तो तुझे ये का बोले दिखावे दुनिया के हम कितना सोरख माकर करेला तो लोग के कि वीरो कुआ ना बरियो वन ओमा बीमारी है। तो ये बात बताएगी अब देखो यहाँ पे
बोले हेगा मोरसू पानी भैया स्त्रोम वोने ये को 80 बरिश के औरत है ताकतक यारख औरत के घर में पानी घुस गया और ना ऐसन तैसन पानी रियो लेरिंग के पानी टॉयलेट के पानी मलिच पानी गंधान पानी ई बुढ़िया माई के घर में घुस गया भैया सही फूरते बोले है दात ओक अन्ना ना देर के फैक्टन एरफान फान ओवर तलग वाटर बगन ते स्पिटरन ते मिडन इन दे ondergelopen straat dames se bulal hai rio leading se bulal hai aur ye aurat ke ghar mein pani ghus gaye hain ye maiya kaise khaye pi kahan jaye bolega yahan pe school kendra lopan do nahi ye ne swater hui pani mein dap dap ja bhaiya hui mein moos daure hui mein saap daure hui mein ek se ek malish cheez aur sri naam desh mein hai hamare janta to hum suchi aap log ko hum ek गीत सुनाई दे तो गीत के बाद में तो अभी हम आ जाएंगे देखो भैया संदीप बदलू आप लोग को क्या सुनाते हैं।

0: टकराया, देनहाख वाली रहा कि लंदन वाली रहा, मेरे ख्याल से लंदन वाली से, लेकिन देनहाख में भी दिल भी लोग के टकरा जाता है, आपको तो ज़रूर मालूम होगा। और दिल कैसे टकराता भैया, जब बॉक्स हुई है तब में ना टकराएगा। तो हेमंत बदलू भी हमारा प्रोग्राम में आकर जुड़ गए हैं। हेमंत जी आपको हम बुद्धू, हेमंत बुद्धू, सॉरी भैया बदलू बोल दिया, हेमंत बुद्धू है। तो भाई यहाँ पर बातचीत हो रहा है भैया हीरा ना, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है भाई श्री नाम है, जहाँ जइयो फकांसी से तो तू जानो बहुत ढेर अपार्टमेंट इधर उधर तरी छान बिन कर ली हो, कोन में लोहा लगल है कि ना लगल है, जंगल अंगल वाला अपार्टमेंट ना लिए लिए, जहां तरी अदमी अदमी रहे है, इधर उधर कोना ओना वाना ना लिए, जहां तरी फैलक है, और कौन बिर्थ में भी बाटे भैया, लतूर फतूर के बिर्थ में ना जाइए, ले वे सफा बात बोलीला, लिहो तरी जहां परे तरी फैलक फुलक करियो, रोफुआ कॉम्प्लेक्सोन में बहुत जबड़ होवे है नाना। तो यहां बताई गई है बितरे दिहात में ले लियो है ना भैया हेमंत बुद्धू, दिहात में ले लो, क्वाटा में ले लो, उस सब जगह ले वो जहां पे तरी अच्छा अच्छा आदमी रहे भाई, तो लो जानो हम का बदूल करील तो। तो यहाँ पे देखो एक अपार्टमेंट रहा, अपैत्र कॉम्प्लेक्स रहा, वहां पर बताई गई है ये बात हुई प्लानी स्त्रात में श्री नाम, हुआ पे दुई बोनस के भैया दुई मिला जुन हुआ रहत राम, बड़ा पैसा सबन मार दी इसने, फ्लिंक फिना चेल स्कादो बरसोरख ओक अरबाइमेंट से, और बोले द दादस जो डाकू जो रहा उस पैसा वार्द फल खुदरन सब ले के भग्य है। यहां बताए गए इस बना दी दल के 25,000 एसर दे 50 डाला रेबवेस, और एक वाले के 70,000 एसर दे कपड़ा तह चढ़ा ले से भैया क्लेडन स्टिकन जो पहरे और अमिया नंगे ना रही है प्यार, ऊपर से ताश 15,000 एसर दे के मोबाइल टेलीफोन भैया बड़ा बचाई के रहिए, का बोली हम का बोली हम, हिम्मत ना परे बोले के मैं बताना हमारा काम है, बोलिए जोनी का हुए चीजवा, और हमार हनीस मनोरथ का बोले है, बोले बाप रे बाप, बोले क्रिमिनाली तैतुआ, बोले हम साका कर देली, का सोच ले बाटे, बोले हम साका कर देली सही फर्स में हाँ। और देखो यहाँ भैया मीसी कब्बा का बोले बेटा सा नहीं आपको स्वागत करते हैं, राजा अयोध्या गया अभी खरोनेगन से, राजा जी कहाँ के रानी है उसको भी हम स्वागत करते हैं। मीसी काबा का बोले है मिनिस्टर फॉन फॉलोस कसौंत के, फॉलोस कसौंत है के सूरीनाम के, बोले है बोले है फर प्ले क्यों दखन ओम साइलन दैसन अमेरिकन डाला कोस्टन एन खान तो खवोन वे, बोले है तब्बो शिस्टर एस्टर जो सरनाम के है, बोले सब भागे है भैया, बोले देशवा छोड़ के भागे है, बोले हम लोग के शिस्टर ना रह गए है, बोले हम लोग कहानी कौन देश से मंगावे के 1400-1500 डाला भरब। अब देखिए बतावे हैगा न मातृ इकलन अबे तुझे यो सिकन है इसमें, और का बोले अकादमी सिकन है इसमें, अपन चादर बिछौना लेके जाए के परे बेटा सन है, अब जब बीमार पड़िए ते को अपन घर से सिस्टर भी ले जाए, एक परिसाइड भैया वह सब सिस्टर चल गए है, और ना जानिए पोईती मारे भाई तब चिजुआ कैसे हुई कौन चक्कल से हुई। तब यहाँ बताए गए है कि बोलेगा एक कानी शेख दत्त में दी बता ले खून ओम सेल मैन कोम सेल भेलमान नितेन मिनिस्टेरी वन एर से इन फ्लिफ्ट आई से दन खुरुत से ओंस फन आई तेर फ्लिफ्ट है मैन हीव द ओम सेल एने के बखरीपन दन ऑर्गनिसासिन इरूपा एन मनीद हैबर कफोन दन सोला से दत नीत मेर कन मेर नूदक हैबन जो जेक मुझ शेख दत्त में से खून वेखान से मिशिकावा वूर्स दा। तो दोस्तों हम इंटरनेट पे पढ़ ली है कि कितना आदमी जो दुनिया भर के कराइबिस खबित के जो मांगे बैठा लांच जाए तो एस्टा प्लास बहेगा हाइटियान भैया हाइटियान जो न पर देश छोड़ के जाए मांगे हैं दूसरा प्लास पे हैगा जमैकान देर द प्लास पे जाने के हैं हम लोग के देश श्रीनाम जो उतरा ढेर आदमी देशवा छोड़ के और मांगे भगे भैया हमें ही आ रहा तो हम आज मेरे ख्याल से हम उसको फेंक दिया है लेकिन अब हमें याद है कि कितना लोग है जो देश छोड़ के और भागे मांगे भैया और जब भागे मांगे हैं तो ओमा जरूर हाँ देखो हमें मिल गया है यहाँ बताए गए हैं हाइटी हाइटियान फीरन सेफन तक 6% मांगे हाइटियान अपन देश छोड़ के भागे जमैका के आदमी मांगे है का फिर 5.3% देश छोड़ के भागे और यहाँ बतावे सरनाम के आदमी मांगे हैं 5.0% जो कांस पाई देशवा छोड़ के भाग जाए भैया यहाँ पे बताई गई है देखो भैया यहाँ पे बताई गई है कि कितना आदमी और यानी कि मांगे देश छोड़ के भागे फिर द प्लास पे पेरू फिर द प्लास में डोमिनिकन से रिपब्लिक ऐसे जे इक्वाडोर बोलोविया होंडुरास कनाडा एल साल्वाडोर कोलंबिया त्रिनिदाद लेकिन हम लोग दर्द प्लास पे बाटी भैया जो सन्नाम छोड़ के भागे मांगे हैं मिलोन जो अगर तुम्हार देश हम लोग के देश आज जब बढ़िया रहते कौन भागत भैया सिस्टर दतरा सब छोड़ के भागे हैं ऐट एन लक्सिकन है इसमें बिना सिस्टर के आदमी कैसे काम करी एकर बारे में ही यहाँ पे मिसी काबा बोले है मिसी काबा स्टिल दत है फनाफ सेन आंत्रेडन देश मात्र एक नीत हीप आन खरा एंड दस नॉक सेज फन क्राफ्टीज और बताई गई हैगा De regering zendt ook in Brussel besloot 2024 uiteindelijk dit vertrag enigszins te bemoeilijken door de kosten van waar men met diploma's en aanvragen van een bevoegdheidsverklaring voor vertrekkende zorgpersoneel te verhogen naar 250 naar 1000 Amerikaanse dollar. Maar ik heb wel een mee omzeil kerke en op haak ja, bhaiya. De sister verpleging joh hai to wo desh chhod chhod bhage hai aur na khali u bhaiya je mauka pai to je hik dekhir bole betre mein gose to wali bhi na khali nahi jalan bhaiya kirasau bhi admi ja hai america ja hai belgium ja hai aur desh sab ja hai hamare pyare pyare janta तो ऐसे जेने कि अब देखो भाई ये जानो हम जाए तेरी त्रम्फुआ कलती हाँ अमेरिका के तेरे बड़ी बनमासी करे त्रम्फुआ चलो जानो है तो हाँ नो मैं खराब आगा माना थी तेरे खिलवाड़ ना करे भाई मारी से हुआ काबले इसराइल में सब झाड़ फाड़ के धर दी था प्रो पलान हुआ कस के और मुझके तेल के जितना आया सबको इस पर पूरा दुनिया आज पलान है और मतलब भैया तेल के प्राइस हम लोग के इतना चढ़ गएगा खास के प्राइस चढ़ गएगा इकोनॉमी दुनिया भर के हिल गए है तेल से त्रेम देखो का करे उधर गाय के शीना में गए लेगा चिनुआ से बतिया है अब देख काकर से अब बड़का बोटिया पठा दे इसे कराइबिस में भैया और लोग बोटिया अपन पठा दे इसे हाँ रे नानी पठा दे इसे और का बोले मिली तेरे फ्लिक डेक्स के पन तेर वीरल वो का नाम बा यूएसएस निमेट्स बता दे इसे भैया और वो जहाज आएंगे कराइबिस खबीत में बोले हैगा कॉकटेल पार्टी ऑफ द इमेंस स्किप वो है वो उन्हें अब एक नोड के फन कमेंडर और वो आएंगे बोटिया और बतावे द खास्तन वे द फरमोर्कन अब खाल में सी टू फ्लिक्टर तो हुआ के फ्लिक अन सूर्याती भी बोला इसे कि चलो ऊपर और वो चीज क्यूबा के बारे में है दोस्तों और तू जाने हैगा क्यूबा इज ऑफ एट कोरल चेयरमैन से और त्रिम बोले बोले उन्ना बोले कि अनफाल करी क्यूबा के मैं क्यूबा मुन फोर सेक्टर सेगमेंट से तो जाने जहां जहां तेलवा बा हुआ हुआ जैसे जैसे चूटी सुकरू देख के घस के धीरे धीरे ऐसे ऐसे त्रिम चारों बगल अपन आंखी फटाए बा भैया हमें डर है हमारा देश नाम में तो इडेशन अख्तन ट्विन तक में जब तेलवा निकलेगा तो का हुई भैया तुलों जानो फेडी स्वेला के संगे का करी से तुरंत तुम त्रुम का करी सेगा और काबल मधुरा के पकड़ के अब तक बन्न करी से भैया। और हम और आगे जाए अपने प्रोग्राम ने एक सिपाही भैया दर्द क्लास के तीन स्त्रेपी के हम न जाने इसे ट्रेन करी से कि ना करी से गा नाना अपन पिस्तौल से भैया अपने ही के दाग ले से पर ओं खोले। अरे कैसे सफा करे ये नीम तो कोर्सेस तू स्कूल जाए तू पढ़े है तो के ट्रेनिंग है और तू दर्द क्लास की सिपाही बाटे ना पहला नहीं पिस्तौल अपन हाथों में पकड़ ले अपन गड़वे में दाग ले भाई दागे के चाहिए चोर के हाँ डाकू के चाहे डागे के चोर के चाहे डाक अपरे अपन गोड़वे में डाक के हो जाएगा अकादमी सिकन है इसमें सूतल है पहलाई के बल्लखलक मेंसे अन ओंखोले के कान ओवरऑल गेबेरे मैं दा मुझे तो एक्स्ट्रा फोर्सिफ्टक सेन फॉलोअर द फॉरवर्डोपा के इनफॉरमेशन किंग एट फेस फ्यूरवापन अनफॉरवर्ड अपडेटेड हैंडलिंग में दे दिस वापन हु एट इंसिडेंट प्रेसिस ही प्लस के फंड दू थोड़ा बताएगा खेलत खालत रहा हुए भैया और दगे अपन गोड़ चटवाले से तो ये बात है हमारे जनता सरनाम के सिपाही के बात बतियाएला हम ना कोई दूसरे देश के सिपाही के हम बात बतियाएला नाना। अब हम जाई तरी स्टार न्यूज की ओर अब देखो तुलन जानो पॉल समाज हार जो के बैठा हुआ तो बरोंटो पाए बरोंटो भैया अरे कर ऊपर कितना रोज से साक चले हैं ओएम के बड़ा गाड़ी देवतरा भाई संतोखी के गरियावे फेया पे के गरियाव गरियावर गरियावर ब्रुंस वही के गरियावे लगल है कि हमें तुलुम बचाओ बोले हमें चाहे जाए के ओएम फॉर द रेक्टर चाहे जाए के कोई ना बचा इस पाए भैया सुमो हार जो के जाए के परल भैया यहाँ बतावे रे फॉर्मल का प्रेसिडेंट ही ऑफ गिवन फॉर अन ग्लट अंडरसोक फॉर फाइनेंशियल एर इज डोर ग्लट गेसेगड दैट एर अ टेलीफोनचे व्हाट वनुइट द कैबिनेट फॉर प्रेसिडेंट पर अन पर्सन्स कमांडर अंडरसोक इज मिनिस्टर जो रहा रियात नूर मोहम्मद के तुलन जानू है ओके भी जाए के होर सेटिंग हुई गए है ऑन द फर्स्ट काइव निनाडो ओएम उपमारा बहांद्रिंग और मिनिस्टर बरोंतो के भी उस समय पे मिनिस्टर फान बेनलान से साका रहा सोमो हार्जो के और बताए गए हैगा यहाँ पे द ओएम ही फॉल दून द आलेन खसीर फॉर फॉलोइंग मार हेट इस आन द नेशनल असेंबली ओम टू स्टेम इन द फलीन फॉर फर्दर स्टेप असेंबली जे बोली हां ठीक हैगा तो तुलो जाने फॉर्मल के मिनिस्टर जो ना फाइनेंशियल ग्लिमर हुफ्त्रा तो अब तक मिलियनन लेके फरार है जो हम लोग के देश नाश करी से एनडीपी के रहा भैया तुलो जानो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंशियल के बहुत तरसों का बैठा रहा अब तक पैसा लेके भगल है और बताएंगे एक पोस्ट पर मांग पे तुलो जाने मलावा के तो हां मेरे फॉर थिंकिंग फॉर फ्रॉड एंड मिस ब्रेक फॉर बफुक्तेन हुफ्त्रात के 11 बरिस बोले एक्टर आल यारन फॉर फ्लुक्तक है फॉर वार्डोर से होर सिटिंग ऑन सीकर ब्लेव और नूर मोहम्मद वार्ड फरदाख om onregelmatigheden rond van Pan American Real Estate woningbouwproject voor lage inkomsten, waaronder valse en geschrifte een oplichting van la via. To abbe deko jo minister van Elfifira ook er bare mee kaise van hij moet het namelijk ook voor de verhoor gaan ook een naam ze hebben leer gaan tulun janu ik er bare mee to hamare janta कैसे चिजुआ है और कैसे ना है दिस होर सिटिंग जो रहा हुई गई यहाँ पर बताई गई है रियात नूर मोहम्मद के 9 बजे रहा वो रहा और मिनिस्टर रहा ब्रंतो सुमोहार जो के 11 बजे रहा क्लीम और रूप तो ना रहा बक्यो का सकवात 1 बजे चलल है और दो होर सिटिंग फॉर नूर मोहम्मद रूप तरह सेन बसलोतन तरवेल दी फान सुमोहार जो ओपनबार इज ऑप्शन ए कैन फॉरसू सोमहार जो बोले बोले हमार तो खून ओपनबार करिए और ब्रंतो के यानी कि नूर मोहम्मद के और हुफ्त्रात के बोले बस लोग तक करिए कि कोई ना सुने पावे कि हम लोग यहाँ कौन ची बतियाला कितना चोरी कर ली है और कितना चोरी ना कर ली। ऑस्ट्रेलिया की ओर हम जाए भैया एगो टूरिस्ट जो रहा वहाँ पे भैया टूरिस्ट हुआ का करी से एगो जगह का नाम ओफर बरूम एगो जगह का नाम इंकापात इन पेरू पेरू के बाहर थे, ऑस्ट्रेलिया के आदमी गए ले भैया लोकाला ओतरे बोलेगा 300 मीटर ऊपर हेलिंग पे लंग्स स्टाइलिंग हेलन उन नीचे गिर गए 52 यार का ऑस्ट्रेलिया वास में सेन फ्राउ पेरू में गए ला बुधवार के उस अब लाशो ये रहा नादा थे सामन एको खूब टूरिस्ट ली के गए ला वांडल करे माचू पिचू में और बोलेगा एको पुराना रास्ता शहर के नाम बा रूनी स्टार फन इकास यहाँ बताएगा वो आदमी गिर गया उतरा ऊपर से लोकल ऑथोरिटी प्रसिद्ध दूत और सा अब तो 300 मीटर से गिरी है तो कहाँ तू बचिए भैया 300 मीटर यहाँ ना है तो ये बातचीत है हमारी जनता। अब देखो लड़का भैया अपन औदस के क्लाक करी से डॉक्टर एगो बिटिया है अपने नीदरलैंड से एक बार वर्ड इरफान फरदाख डॉक्टर आज मिंदर यारग यारग लंग ते हैवन uitgebuit het meisje maakte al vanaf jonge leeftijd lange werkdagen op markten in Nederland en België ego chota ladki chote pase oke chahe bazaar mein Nederland aur België mein beche ko kar baap mai jo raha oke misbruik karat rahe kar bare mein bhaiya mindar yaar yarang lang the hebben uitgebuit ne misbruik uitgebuit kar raha bhaiya middels meerderjarige dochter die zelf aangifte tegen haar ouder die werden mangerwaar ke oke pakad ke band kare se Den Bosch ke sipahi dus oke bole hega verplicht werk arbeid apan bitiya se karwawat raha i bhala kono kono kono baap mai hai hamare janta dus i sab cheez bhi hove hai। अब देखो भैया यहाँ बताई गई है कोंगो हम लोग चली कपड़ी के देश वहाँ पे 750 आदमी के एम्बोला खफाल हुई है कोंगो में वहाँ पे बहुत जबर है बीमारी कोंगो ओम्बो ना जाइए भैया कोंगो में बड़ी बीमारी डेमोक्रेसी से रिपब्लिक कोंगो में और बोले सीफ होने फेक तक मैं से बस मैट भैलेगा और ओमा होने सीफ न सीफ तक आदमी मर गए हैं बताई गई हैगा और ये एम्बोला बफेस्तक करी से बस मैटिंग हैगा तो ये बात हमें जरूरी रहा आप लोग को बताने को यानी फकांसी आने वाला है कितने लोग ने यात्रा पे हो चुका है फकांसी प्रयोग है वहाँ जाओ खुमो से इन्फॉर्मेर कर लियो मिनिस्ट्री फन बैतलान से साकर में वेबसाइट पे कर लियो कि हमें कहाँ माखे जाए के और कहाँ ऋषि को है और कहाँ ऋषि को ना है तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर जनता। तो आप लोग के हम एक गीत सुनाए माला पति मोरे लागे रवि गोगार के एक गीत है
1: पत्ता टूटे डाल से किले गए पवन उड़ाए

और यही गीत से हम अपना प्रोग्राम को अब ख़त्म करेंगे। एक दो समाचार आपको हम और सुनाते हैं और उसके बाद हम अपना प्रोग्राम को

0: ना नरेंद्र मोदी तुरंत गैला चिनुआ से भेंट के ओकर बाद में डायरेक्ट रेसलान के पुतेन भी गए भैया चिनुआ में और पुतेन फर्स्टर कर मान देते से शीना ए रेसलान तेज से सेरेमनी इन द बीइंग जगह एक नाम श्री से के जो प्रेसिडेंट है भैया यिंग पिंग जो नहीं का रेसलान से प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतेन से 20 गो को चीतेकन करी से उधर क्यूबा भैया बहुत जबर अमेरिका को ऊपर गुस्सान है फेल तेकन अमेरिका से अनक्लाक तेकन रुवेल का स्ट्रो के बारे में हमारे जनता सर्कस स्टेकिंग फॉर द गुनुरू सी फिलिस इन यूरोपा भैया सेक्सुअल ओवरलैपबार आंदोलन फॉर सोवास सोवास गुनुरू एन सी फे को बीमारी है इन यूरोपिस अफकलोपन थिंग या स्टर्क टू खनोमन आप लोग जानो सुरीनाम में हाईवे चिकन गुनिया उस सबसे बचाई के रहियो और यहां यूरोपा में सोवा एन सो भी यहां पे बहुत ढेर है उससे भी आप लोग चौकस रहना जूता पहने में खिलवाड़ ना करियो भैया जूता ना हो तो जबर जब लाट पहलियो आप लोग तो यानी कि समझदार हैं तो आशा समझ भी आकर प्रोग्राम में जुट गए हैं आखिरी में फीस क्लाक रुवेल कस्रो पर ना नेर हाल फनिक तो एक ने नहीं कि ससन नहीं खन तक में तो दोस्तों यहां तक था आज की समाचार सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा तुम्हारा मुलाकात होगे जितने लोग हमारे फेसबुक पे बेटा सन ही और यानी आशा जी और राजेश राम दत्त सुंदर हीरा मुन्न राय अनुरोध गंगाराम पांडे चित्रा धर्मेन स्त्री अर्शिला भग्गू टोनी स्त्री और रांच राम लगन और छापा मियाँ देखिल भैया मालूम नहीं जे किसी को हम एरमा राम तहल हेमन बुद्धू जितने लोग हैं आप सबको यहाँ से हम क्षमा चाहते हैं तो फॉलोर बाय बाय स्वाइस बाय हर काम के लिए हर अफर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl हर एक अफर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 7 4 मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam zoekt wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: Thank you, brother. Thank you very much. Come on.
1: मुझे स्कूल में नहीं जाना
0: है। अरे क्यों?
1: नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता।
0: बेटी देखिए, आप कुछ नहीं यहाँ रहिए, आपको अच्छा लगने लगेगा। और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ।
1: मैं दिल्ली में नहीं रह सकता।
0: नहीं, आपको यहीं रहना है हॉस्टल में कुछ दिन, समझे?

0: वेरी गुड। और ये कौन है?
1: ये मैं हूँ और मेरे पापा।
0: आपके पापा चश्मा पहनते हैं?
1: हाँ।

0: और दिल देना ही पयाए और दिल लेना ही पयगाए। तो हमारे दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए ये कौन सा गीत है हमारे सुनने वालों। सुपर सॉन्ग फन नहीं खनते रोमांटिक सॉन्ग
1: सर की जो सर से वो धी
0: द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू मेरे महबूबा सॉन्ग दिनेश।

और तेरी चुनरियां दिल ले गई 90 का ये यानी कि हिट बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग जो आप लोग को हम सुनाते हैं। तो अगला गीत की ओर हम जाते हैं, रोमांटिक फुल सॉन्ग है और तेरी चुनरिया के बांध में हम जाते हैं, देखा तुझे तो क्या होता है, क्या होता है, दिल में कुछ मजलता है।

मालू तुझे तो मिट ना जाए। और दोस्तों और अगला नई खंतकार रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग यहां से जॉनी नंबर वन का प्रोग्राम हम चलाते हैं।

मोहब्बत की ताकत से बड़ा और क्या है हमारे यारो लवर्स के लिए। बॉलीवुड सॉन्ग्स वन नेकंत रोमांटिक सॉन्ग है जो आप लोग को लिए हम चलाते हैं राजा हिंदुस्तानी।

जी करे देखता रहूं, इतना प्यारा तुझे कौन बनाया है? रब ने बनाया है हमारे यारो। ये जो रोमांटिक सॉन्ग है बॉलीवुड नेक्स्ट का, आप सुनिए।

और जाती हूँ मैं और ढड़के जिया, तो ये सब बात तो होता ही रहते है। तो मूवी का नाम है कोबरा गिल, मैथ मुकेश का ये सॉन्ग है।

और नजर को संभालो, ये क्या हो रहा है? है और ये गीत जो है, मैं हरदम किसी को और वो ढूंढता है, फिल्म के नाम ही रास्ता, रास्ते का पत्थर, जिसमें अमिताभ बच्चन ने काम किए हैं, सिंगर इसमें मुकेश एंड आशा भोसले।

और मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ और किसी को खोजता हूँ। दोस्तों एक रोमांटिक सॉन्ग के ओर है।

जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज़ के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों के सेवा में सादर सा प्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है www.faunfm.nl पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर।

जो बीमारे लाचार है, तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनके घर में कोई शादी हुआ, कोई भी उत्सव हो, फौन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयां पेश है। मुझसे पहले भैया जॉनी नंबर वन अपना कार्यक्रम पेश किए, भैया जॉनी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है, आहिस्ता घर जाइए, और यहाँ से मैं हूँ आपका सेवक गंगा, रहूँगा करीबन 10 बजे तक। हमने पहले ही शुरू कर दी, भैया जॉनी चला गया घर पर, और उसके बाद तो मैं ले लिया बागदौड़ हाथ में। भैया जॉनी एक बार फिर आपको एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है, भैया जॉनी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोंदरदाख फिर तुंदख में ठीक बोली यूस हाँ दोंदर सोंदाख सोंदाख फिर तुंदख में ही जी हाँ सोंदाख फिर तुंदख में ही। और आप तत्पर हैं जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, जिस काम से आप व्यस्त होंगे, आपका हृदय से स्वागत है। पौन हिंदुस्तानी राज्यों के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और अपने तरफ से और दिराक्सी की तरफ से, और भैया यूसुफ जो मेरे सामने बैठा हुआ है, गीत गज़ल के कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हैं। जैसे मैंने कहा, हमने पहले ही शुरू कर दी क्योंकि भैया जॉनी घर चल गया। हमने कहा भैया तू जाओ, हम शुरू कर देते हैं।

0: भैया यो सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक बार फिर आ गए हैं। बाकी आज तो बोट में ना आए मरियान
1: ना,
0: आज तो हम फ्लिक मशीन पर आए देखे ले। हम देखे ले तो इतना जबर गाड़ी यहाँ खड़ा है, हम पर केयर ना कर पाई ली।
1: अरे
0: भैया यो से धन्य वैल
1: सब फाहम के सुनने वालों को मेरा नमस्कार और अदा हो। आज गीत गजल है, कोशिश कर ही था, आप लोग कोशिश करो तार करे के लिए। भाई गंगा और मैं तार के इंतजार में हैं।
0: अच्छा भाई, भैया यू सब धन्य वैल जैसे मैंने कह दिया, आप हम पहले ही शुरू कर दिए। अच्छा कोई बात नहीं, अगर जा आप तार के नंबर ढूंढ रहे होंगे तो हम आपको तार के नंबर देते हैं 9 से 5 तक 3 5 से 6 तक 2 तक 0 तक, अथवा आप तार कर सकें 9 से 5 तक 3 6 तक 2 तक 0 तक पर। चलिए पहला सेलेक्शन हम आपको सुना रहे हैं, शानदार बहुत प्यारा गीत है। आज सुबह हमने सोचा कि चलो इसी गीत से हम आपको आपकी सेवा करेंगे।
2: माँ जी कौन है?
3: बैठी माँ जी,
2: मेरा नाम रेखा है। जिन प्रोफेसर साहब के पास आपका बेटा पढ़ने जाता है, मैं उनकी गोदली हुई बेटी हूँ।
3: अच्छा, बैठो बेटी बैठो। तो तुम प्रकाश के गुरु की बेटी हो, प्रकाश भी उनकी बहुत तारीफ करता है। आजकल इस दुनिया में ऐसे बेगर्ज आदमी कहाँ मिलते हैं। बेटी क्या उन्होंने प्रकाश के लिए कोई संदेशा भेजा है?
2: जी जी नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ।
3: मुझसे?
2: जी हाँ माँ जी, प्रकाश जी आपकी इतनी तारीफ करते हैं कि आपसे मिलने की अभिलाषा मुझे कई दिनों से बेचैन कर रही चलता है। मेरा ख्याल है भक्त की इच्छा है, तो फिर मैं तुम्हें क्यों नजर आंखों पर बिठाऊं? मुझे सब कुछ मिल गया।
3: जीती रहो बेटी, घर आई हो, मैं तुम्हारा मुंह मीठा करवाने के लिए कुछ लाती हूँ। मेरा ख्याल है भगवान ने कुछ सोचकर ही तुम्हें इस घर में भेजा है। जब भगवान की इच्छा

0: महेंद्र कपूर जी और लता जी ये दोनों मिलके आपको सुनाए हैं। फिल्म ने ये रोशनी में से निकाले, ये गीत ने एक दिन सैफ ने शस्त्र को 1967 का ये गीत है, रवि के साज पर लता जी और महेंद्र कपूर जी। चलो देखते हैं लाइन पर कौन है। फोन हिंदुस्तानी रेडियो
1: खुदनाफंद
0: शिला कैसे रहले?
1: या खत खुद और भाई
0: सब कुछ मोई।
1: हाँ भाई
0: तो यो सब गाड़ा खुशी है आज घाम देखी से
1: उजा पावे तुलो लगे तो खुशियाली में रहे तो
0: हाँ दलस मोई तो
1: या
0: दस में देखे ये खुद तो हमों के देख लीले तो हमों जोश में आ जाएगा जब हम के तार मारे तब सोची का बोली हम बोली ना ही अब हम आएला।
1: अच्छा
0: एंड फॉर देयर सालस प्रीमा
1: आलस हुतोर भाई
0: तब मोई अबे तो फिर बोली है कि तू ना पूछ ले रही ले
1: ना ना आज ना है भाई।
0: अच्छा इन्ने खेवनित प्रीमा कोई बात नहीं दूसर नहीं
1: या इसको
0: अच्छा सिला बताओ कौन गाना मांगत रहे सुने
1: इस फिल्म अदालत
0: और कौन गाना है
1: जमीन से हमें आसमान पे।
0: वाह क्या बात है शाबाश ठीक है गनवा तो रखे तीन उन्होंने ड्राई कर दिया और इपन बेरो को कुछ कहानी ना है
1: ना ब मोई वेर करी से मारी से गरम हुई बैठल बाकी
0: मोई मोई हो चाहिए हो गए
1: या
0: एस खुद दसीला थैंक यू वेल
1: बाय फाइन आउटस्टैंडिंग एंड टॉट फॉर द केयर
0: या थैंक यू वेल हेल फील लॉस ऑफ प्लेजर एंड टॉट द फॉर द केयर दैट्स
1: या और दैट बाय।
0: ये थी सीला जी इपन बेरो के रहने वाली माशुका सीला जी। तो सीला जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपने तार की आप पहली है नंबर पर है तो अभी हम

आपके गीत चला देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये गीत सुनाना चाहते हैं, क्या ख्याल है? लता जी के गीत फिल्म वंदना में से निकाल कर, बहुत प्यारा गीत है। हो सकता है ये गीत आप काफ़ी दिन हुए होंगे नहीं सुने हैं, अगर सुने होंगे तो मेरे बदनसीबी है, मेरे ही बदनसीबी है, लेकिन फिर भी हम आपको सुनाने वाले हैं लता जी फिल्म वंदना में से निकाल कर।

आपकी इनायते आपकी करम लता जी फिल्म वंदना में से निकाल कर ये गीत हमने पेश किए गीत गज़ल के कार्यक्रम में आज सोंदक फिरन त्विंत मैं ही जब है। चलिए अगला गीत पेश करने वाले हैं जिस समय आप कोशिश कर रहे हो कोशिश कर रहे होंगे तार करने को और तार भी ढूंढ रहे होंगे तो ढूंढिए मत, लिख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ 9 7 3 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
हेमंत कुमार जी की आवाज़ में। जी हाँ,

हेमंत कुमार जी और लता जी, ये दोनों मिलके तो आपको द्विवेद सुनाए, इतना तो कह दे हमसे। फोन हिंदुस्तानी रेडियो के रात के कार्यक्रम में, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, और मेरे सामने मेरा कुलीका भैया यूसुफ बैठा हुआ है, यहाँ भैया यूसुफ बैठा हुआ है, और जब जिस समय आप कोशिश कर रहे होंगे तार करने को, तार 9 से 7 तक 3 5 6 तक 2 6 7 4 तक, या तो 9 से 7 तक 3 6 तक 2 6 7 तक। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, मैथ्यू मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, इस तरह से आ रहा है।

अब आन मिलो सजना। लता जी आपको सुनाए फिल्म झुक गया आसमान में से निकाल कर, शंकर जय किशन के साथ पर हमने ये गीत पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए पहुंचते हैं दरहाक से इपन ब्यूरो, इपन ब्यूरो के रहने वाली शीला जी, इपन ब्यूरो के रहने वाली माशुका शीला जी, जो अपने हॉबल स्टूल पर बैठकर और झूम झूम कर हिल हिल कर गाना के इंतज़ार में है। तो लीजिए शीला जी, आपके मांगे हुए गीत हम लोगों ने प्लेयर में रख चुके हैं, सिर्फ बटन दबाना ज़रूरी है और गीत चल पड़ेगा। इपन ब्यूरो के रहने वाला शीला जी, माशुका शीला जी, अपने माशुक यूसुफ के लिए जो मेरे सामने बैठा हुआ है, शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए, चाहे दिन है कोई बात ना है, आँख मूंद लिए शीला, अंधियार हो जाए सुचे रात है, शुभकामना के साथ चलिए आपकी मांगी हुई गीत हम चला रहे हैं इस तरह से।

झूम के गायों आज मेरे दिल, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये शानदार गीत चला। ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो हमने पेश की निगति एने सैफ़ तक का ये गीत है, फिल्म पतंगा में से निकाल कर हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा रफ़ी साहब के बाद, लीजिए एक बार फिर रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत।

कभी रात दिन हम दूर थे। रफ़ी साहब और लता जी मिल के आपको सुनाए हैं और ये शानदार गीत चला हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो इस गीत के बाद चलो हम पहुँचते हैं रोतरदाम, देन हाग से चलते हैं रोतरदाम और रोतरदाम में बैठी उर्शीला जी। उर्शीला जी आपका स्वागत है एक बार फिर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। और उर्शीला जी मैंने मांगे एक शानदार गीत, चलिए वो गीत हम लोगों ने प्लेयर में रख चुके हैं। उर्शीला जी के लिए शुभकामना के साथ उर्शीला जी एक शुभ रात्रि पेश करते हुए चलिए ये प्यारा गीत हम लोग आप के लिए चला रहे हैं इस तरह से। उर्शीला जी

आंखों ही आंखों में इशारा हो गया है रफी साहब, गीता रॉय या गीता दत्त कहिए, फिल्म CID में से निकाल कर ओपन एयर के साज पर हमने पेश की ये गीत। और ये गीत चला रोतरदाम के रहने वाली इर्शिला जी के लिए। इर्शिला जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा, क्योंकि जिस गीत के जिक्र आपने की वही गीत हम लोगों ने चलाया है। इर्शिला जी, आपको भी एक शुभ रात्रि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा पेश किया जा रहा है। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, और क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से, देखते हैं। हाँ, माइट मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

माइती मुकेश द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस आपको सुनाए निकिति एन एस एवं तक का ये गीत फिल्म लड़की पसंद है में से निकाल कर हमने पेश की ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत को ओ नहीं चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और वो है जनाब मोहम्मद के लिए। जनाब मोहम्मद ने नहा के रहने वाला शुभकामना के साथ चलिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा ये गीत चलाया जा रहा है। और भैया मोहम्मद ये गीत मांग रहा है सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और साथ ही साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के लिए और दिलक्ष के लिए। तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से भैया मोहम्मद को बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया जा रहा है, धन्यवाद दिया जा रहा है। तो लीजिए भैया मोहम्मद आपके गीत हमने प्ले में रखे हैं। चलिए इस तरह से हम आपको यह गीत सुनाते हैं दनहा के रहने वाला जनाब मोहम्मद के लिए।

मेरे महबूब तेरे दम से, रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने पेश की फिल्म भाई भाई में से निकाल कर हमने चलाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो गीत गज़ल के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, अब वो है माशुक, माशुक यूसुफ की तरफ से, अपने माशुका जो इपन बेरोक में बैठी हुई है और कार्यक्रम को सुन रही है। तो लीजिए माशुक यूसुफ की तरफ से माशुका सीला के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए चलिए, इस तरह से यूसुफ की तरफ से।

निगाहें यार ने कुछ ऐसा जादू कर दिया। जी हाँ, सुरेश वादिकर आपको सुनाए हैं। फिल्म है दिल आखिर दिल है, निगदिन त्वीन तख्त का ये गीत हमने पेश की ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और पेश करवाने वाला था माशूक, जो मेरे सामने बैठा हुआ है भैया यूसुफ। यूसुफ की तरफ से माशूक, यूसुफ की तरफ से उनके माशूक जो इपन बेड़क में बैठी हुई है, शीला जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए धन्यवाद के पात्र है यूसुफ जी, और साथ ही साथ शीला जी आप दोनों के भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है दनहा। दनहा के रहने वाली बेया गजराज जी, लीजिए बेया गजराज जी। दनहा के रहने वाली बेया जी, आपके गीत हमने रख चुके हैं। और चलिए इस तरह से आ रहा है लता जी और मैथी मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला दनहा के रहने वाले बेया जी।

वाइद्य मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत। और मुकेश जी के साथ लता जी थी, फिल्म छाया में से निकाले हैं, लिखा तो नहीं लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है सलील चौधरी के साज पर ये गीत पेश हुआ। फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में जबकि दनहा के रहने वाली बेया गजराज जी ये गीत मांगे हैं शुभकामना के साथ। ये गीत चला फौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा बेया जी के लिए एक शुभ रात्रि पेश करते हुए। बेया जी आपको भी धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, बेया के बाद फिर एक बेया है लेकिन ये उत्तरा के रहने वाली है। उत्तरा के रहने वाली बेया जी के लिए, बेया जी आपकी मांगी हुई गीत हम लोगों ने प्लेयर में रख चुके हैं, बस चलिए चलाते हैं। उत्तरा के रहने वाली बेया जी के लिए एक शुभ रात्रि पेश करते हुए, धन्यवाद देते हुए बेया जी को ये शानदार गीत आ रहा है। उत्तरा के रहने वाली

एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं ओ राही और ये गीत फिल्म इम्तिहान में से निकाला गया है। निकिती फिर से इवत का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर और पेश हुआ उफ़रफ़ाउन हिंदुस्तानी रेडियो और पेश करवाने वाली थी उतरख के रहने वाली बेया जी उतरख के रहने वाली है। बेया जी के लिए शुभकामना के साथ ये शानदार गीत पेश हुआ उफ़रफ़ाउन हिंदुस्तानी रेडियो। सेलान से सुन रही है श्रीमती अनु सरजू मिसिर और ज्योति सरजू मिसिर, दोनों को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। वे लोग गाड़ी में बैठे हैं और कहीं जा रहे हैं या आ रहे हैं, बहरहाल अनु सरजू मिसिर और ज्योति सरजू मिसिर कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद फान हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है मीला जी, सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी के लिए शुभकामना के साथ और भाई मंसूर के लिए चलिए एक शुभ रात्रि पेश करते हुए आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद मीला जी और मंसूर जी सूत्रमेर के रहने वाली के लिए।

जी चांदनी मन्ना दे जी आओ लता जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत चलाओ परफॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो। और ये गीत चलाने वाली थी मीला जी, सुतरमेर के रहने वाली मीला जी। मीला जी और भाई मंसूर जी आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सेलांग से जो आनी सरजू मिसिर और ज्योति सरजू मिसिर इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं, मोटर गाड़ी में हैं, तो अब मोटर गाड़ी में एक मोबाइल से सुनेगा तो दूसरे मोबाइल से कैसे तार करेगा। बहरहाल चलिए उन दोनों के लिए, श्रीमती आनी सरजू मिसिर और ज्योति सरजू मिसिर के लिए शुभकामना के साथ चलिए ये गीत हम पेश कर रहे हैं उन लोगों के लिए।

लता जी, जी हाँ लता जी, और द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत साहब की आवाज़ में ये गीत पेश हुआ फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि सेलोन सेलोन के रहने वाले श्रीमान और श्रीमती आनी सरजू मिसिर और ज्योति सरजू मिसिर कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों को शुभरात्रि पेश किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से। सेलोन के रहने वाले श्रीमती आनी सरजू मिसिर और श्रीमान ज्योति सरजू मिसिर को। चलिए आखिरी गीत में चला रहा हूँ और इसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और वो ये है

0: uit Den Haag, de heer Jozef zelf uit Ypenburg, mevrouw Bea Gedraat uit Den Haag, mevrouw Bea uit Utrecht, mevrouw Mila uit Zoetermeer, mevrouw Annie en de heer Jotis Sadjumisir uit Zeeland. Dat waren de bellers voor vanavond. Hartelijk dank en tot volgende week.
1: Bij Jozef, dankjewel. Jij ook, dat je iedere week aanwezig bent hier. सुनने वाले श्रोताओं आप सुन चुके भैया योसेफ ने सभी को धन्यवाद दिए हैं और मैं अपने तरफ से भी सभी को धन्यवाद दे रहा हूं। नाम लेने की तो अब ज़रूरत नहीं है और जो लोगों कोशिश किए होंगे उतार न कर सके उन लोगों को भी मैं धन्यवाद दे रहा हूं और आपकी सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह आप अवश्य तार कर सकते हैं और मेरे बाद आप सुनोगे विज्ञापन न्यूज़ न्यूज़ विज्ञापन न्यूज़ के बाद हमारे सब सहयोगी मिलकर आपके सेवा में रहेंगे।

और मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला द्वंद्रदाह, आने वाला द्वंद्रदाह दिन 12 से 3 बजे शाम तक, हमेशा द्वंद्रदाह के दिन मैं यहाँ मौजूद रहता हूँ कार्यक्रम पेश करने को। तो आप उस समय भी तार कर सकते हैं, कुछ बातचीत हो गया कुछ चला देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हैं 12 से 3 बजे तक इधर द्वंद्रदाह को। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं था आपका सेवक गंगा और मेरे सामने भैया यूसुफ बैठा हुआ है। भैया यूसुफ को भी एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनोगे विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और न्यूज़ के बाद बाकी के कार्यक्रम। नमस्कार।

फाहुंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहुंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 20 7 फाहुंट हिंदुस्तानी रेडियो।

और यहां से हम अपना कुछ प्यारे प्यारा प्यारे प्यारे लवली सॉन्ग भी आप लोग को हम सुनाएंगे। और कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, कहते हैं तू हजार बार भी रोते तो मना लूंगा तुझे, तू हजार बार भी रोते तो मना लूंगा तुझे, मगर देख मोहब्बत में शामिल कोई दूसरा ना हो। जब अगर मोहब्बत में कोई और आ जाएंगे तो कैसे मनाऊंगा। और कहते हैं कि किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, तड़प कर तू मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा का वो इम्तिहान, वो इंतजाम रह रही है। एक बार फिर दोस्तों, किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, तड़प कर या मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा का वो इल्जाम दे रही है। दोस्तों हम चलते गीत की ओर कि बोल मेरे तकदीर में क्या है और मेरे हम सफर अब तो बता। और इस गीत को आओ मिलकर सुना जाए, प्यार भरी गीतों के बहार प्रोग्राम हम लेकर चलते हैं। मैथिली मुकेश नाइटिंगेल के लता जी इस गीत को गाया है, आओ सुना जाए।

तकदीर में क्या है और मेरी हम सफर अब तो बता। और फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता। दोस्तों जॉनी नंबर वन है, आप लोग को हम बता देते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है हर शुक्रवार को शाम को 6 से और रात्रि के 9 बजे तक चलते हैं, मंगलवार को दिन में 5 से 6 बजे लेक सुरिनामी न्यूज, और रविवार की सोमवार को दिन में 1 बजे हमारा सुरिनामी न्यूज है दोस्तों। और आपको हम बता देते हैं कि लोग जो इसको मालूम नहीं है, हमारा फ्रिक्वेंसी जो है हम सब AM पे अब नहीं है दोस्तों। दिस मीन्स दी डेंक ए हमारा रिवॉर्म कुछ पहले नहीं मीन से आशी अंदेया बी प्लस रेडियो है दम पास क्वेंसी ऑन लॉइस्टर ऑफ अलेन ऑफ द इंटरनेट। और हमारा फ्रिक्वेंसी है 195.93 मेगा हर्ट्ज पर, और नहीं कनाल 8A DAB प्लस रेडियो पर हमारा प्रोग्राम रेडियो फाहून के प्रोग्राम आप सुन सकते हैं, अपने गाड़ी में भी सुन सकते हैं दोस्तों। और हम कहते हैं यहाँ पर कि कहते हैं मरे तो लाखों होगे तुझ पर, मरे तो लाखों होगे तुझ पर, मैं तो तेरे साथ जीना चाहता हूँ दोस्तों। मुझ पे पाने को मुझे पाने के तुम जिद ना करो, मुझे पाने का तुम जिद ना करो, किसी को चोरी हुई मोहब्बत हूँ मैं किसी की चोरी हुई मोहब्बत हूँ मैं दोस्तों। और यहाँ से हमारा प्यार भरी गीतों का और बाहर नामक प्रोग्राम हम चलाते हैं लाइव रेडियो फाहुन के माध्यम से हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और हम चलते हैं फिल्म ब्लैकमेल के ओर, हम चलते हैं पल पल दिल कोई पांच किशोर साहेब ने इस गीत को गाया है, आओ मिलकर सुना जाए।

पल पल दिल के पास सिर्फ तुम ही रहती हो। किशोर साहब ने इस गीत को सुनाया है, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल। और दोस्तों कहते हैं जिंदगी के कुछ लम्हे, जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होते हैं, जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होती है, यादों में कुछ लोग खास होती है, यादों में कुछ लोग खास होती है। यो तो वो दूर होता है नजरों से, पर उनकी एहसास दिल के पास होती है। प्यार करने वालों के लिए कुछ प्यार भरी शायरी आप लोग को हम सुनाते हैं कि तेरे हर नाकामी को कामयाबी में बदल दूंगी, तेरे हर सपनों को हकीकत में बदल दूंगा। ऐ दोस्त हम खुदा से दुआ ऐसी करेंगे कि तेरे हर गम को खुशी में बदल देंगे। कुछ प्यार भरी शेरें हम आप लोग को और सुनाते हैं दोस्तों। आओ चला जाए एक और गीत की ओर, और वो है वो भी फिल्म हरियाली और रास्ता कहे, जो 1966 का ये फिल्म है। मनोज कुमार और मालहा सिन्हा इसमें काम किया है। आओ चलकर और इस गीत को मजा लूटे।

चला हूँ और खुद उसके और क्या क्या प्यार भरी मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को और सेवा करेंगे। दोस्तों अपनों के बीच बेगाना हो गए हम, अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, प्यार का लम्हे अनजानी हो गए है। जहाँ पर फूल खिलते थे, जहाँ पर फूल खिलते थे कभी, आज वहीं पर वीरान हो गए है। ये बात है दोस्तों, जो शख्स तेरे तस्वीर से ही महक जाए, जो शख्स तेरे तस्वीर से ही महक जाए, सोचो तुम्हारे दिलार में उसका क्या होगा। हमारे प्यारे सुनने वालों, तो हम चलते हैं एक गीत की ओर, वो है कभी कभी का, फिल्म कभी कभी का ये गीत है, मैं पल दो पल का।

और इस गीत के बाद में हम चलते हैं एक मोहब्बत भरी गीत की ओर। लोग बचपन पर बहुत प्यार किया है और जो बचपन पे किसी को प्यार किया है उस सब के लिए यहाँ पर एक शेर है, जिंदगी का पहला प्यार कौन भुलाता है, जिंदगी का पहला प्यार कौन भुलाता है, ये पहली बार होता है जब कोई किसी को खुद से बढ़कर चाहता है, उसकी पसंद उसकी ख्वाहिश मिल खुद से को भूल जाता है, अकेले में उसका नाम लिख लिख कर मिटाता है, दोस्तों बात करने से पहले सोचता है क्या कहना है, बात होने के बाद फिर भी कुछ रह जाता है, होता है खूबसूरत कितना पहला प्यार, होता है खूबसूरत कितना पहला प्यार, ना जाने क्यों अक्सर अधूरा रह जाता है पहला प्यार। तो सबके लिए यहाँ पर हम एक गीत को चलाते हैं कि बचपन का प्यार कभी भुलाना नहीं, आओ मिलकर सुना जाए।

और बचपन की मोहब्बत को दिल से दुआ करना। और दोस्तों, प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हमारा चलते हैं। और कहते हैं, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना है हमारे प्यारे दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने क्या था और मुझे हुआ था। उसने किया था और मुझे हुआ था। दिट इज geweldig mooi दोस्तों, kort maar heel mooi। मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसे किया था, उसने मोहब्बत किया था और मुझे मोहब्बत हुआ था। हमारे प्यारे दोस्तों, ये सब प्यार भरी शायरे और आपको हम यहां से सुनाते हैं कि जाओ जाओ जाओ ढूंढ लो हम सबसे ज्यादा चाहने वाला, मिल जाए तो खुश रहना। जाओ ढूंढ लो हमसे ज्यादा चाहने वाला, मिल गया तो खुश रहना, ना मिले तो हम पर ना मिली तो हम फिर भी तुम्हारी है। ये सब बातें हैं दोस्तों जो दिल को छू कर और निकल जाता है। हम चलते हैं एक गीत की ओर जिसमें शमी कपूर काम किया है, राइसी संगे पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये गाना है और ये है, ये गीत है, और मेरी मोहब्बत जवान रहेगी। मेरी मोहब्बत जवान रहेंगी यानी कि मोहब्बत कभी बुढ़ाते नहीं है, उम्र चले जाते हैं दोस्तों लेकिन मोहब्बत जवान रहती है। ये हमारा पैगाम है रेडियो फोन के माध्यम से, आओ सुना जाए।

और दोस्तों मेरी मोहब्बत जवां ही रहेगी। और ये है परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत है और मोहब्बत भरी प्यार भरी लवली सॉन्ग यहाँ से हम और प्यार भरी खबरोगन सॉन्ग्स और कुछ यादें हम आप लोग को यहाँ से चलाते हैं कि कहते हैं समझाता ही नहीं वो मेरे अल्फाज की गहराई का, समझता ही नहीं वो मेरी अल्फाज की गहराई, मैंने हर लफ्ज का दिया जिसे मोहब्बत कहता है, मैंने हर लफ्ज कहा दिया कह दिया जिसे मोहब्बत कहता है। दोस्तों एंड ब्रोकिंग्स हार्ट शायरी यहां से हम आप लोग को एक दो सुनाते हैं। तुमसे मोहब्बत तेरी औकात से ज्यादा की थी, तुमसे मोहब्बत तुमसे प्यार तुमसे मोहब्बत तेरी औकात से भी ज्यादा की थी, अब बात नफरत की है सोच सोच तेरा क्या होगा। माना कि मुझे प्यार करना नहीं आता, माना कि मुझे प्यार करना नहीं आता, पर तू बता कि तुझे डील तोड़ना किसने सिखाई है। ये तो भी होता ना हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों रेडियो का। हम चलते हैं आशीष जी के एक रोमांटिक सॉन्ग है परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत है और चला जाए फिल्म के नाम है प्यार का सौदा नहीं दोस्तों प्यार का सागर फोन नहीं खती होंद आओ चला जाए सुनने को कि मोहम्मद रफी और आशा भोसले क्या गाया है।

प्यार की जिंदगी देने वाली। दोस्तों कितने लोग कहते हैं, बोले जॉनी तू सिर्फ प्यार भरी गीतों को चलाते हैं, लेकिन हम अपने जिंदगी में बेवफा बहुत हमको मिला है और बेवफाई भी बहुत हुआ है दोस्तों। और जितने लोग बेवफाई के रास्ते से गुजरा है वो सब के लिए यहाँ पर हम कुछ बेवफा का शेर लेकर आया है और एक गीत भी लाया है। कहते हैं फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, अंदाज वही है, अंदाज वही है, बस अल्फाज नया लाया हूँ, भूल तो जाऊं तुझे दोस्तों। और कहते हैं भूल तो जाऊं तुझे पर मेरे पास रहेंगे क्या कुछ, यानी कि बेवफाई का हम आपको शेर सुनाते हैं कि कितनी लोग बेवफा के रास्ता से भी गुजरा है, ठोकर लगा है, दिल टूट गया है, वो सब के लिए भी यहाँ पर हमने कुछ रखा है। अब जुदाई का सफर को मेरे आसान करो, अब जुदाई का सफर को मेरे आसान करो, तुम मुझे ख्वाब में आकर ना परेशान करो, तुम मेरे ख्वाब में आकर और ना परेशान करो। और तो क्या था बेचैनी के लिए अपने आंखों के ख्वाब बेच आई है हमने। तो दोस्तों ये सब एक दो बेवफाई का गीत आपको हम सुनाते हैं, आओ सुना जाए।

और तेरा मासूम चेहरा भूल जाने को काबिल नहीं है। और दोस्तों मोहम्मद अजीज ने इस गीत को गाया है और कहते हैं, कुछ ऐसा हंसने भी जिंदगी में होता है, कुछ ऐसा हादसा भी जिंदगी में होता है कि इंसान बच तो जाता है मगर जिंदा नहीं रहता है। दोस्तों ये तो भी कभी कभी बात होता है ना कि प्यार में अब ये शामिल करना है, वो सच कहना है, वो सच कहे ना कहे हम अतबार करना है। तो ये सब बात है दोस्तों। इस गीत जो है, इस गीत को इस फिल्म में सुनील दत्त और माला सिन्हा ने काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए।

फाउंटेन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 97.3 FM। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

तो प्यार भरी मोहब्बत भरी पैगाम, प्यार भरी मोहब्बत भरी लवली सॉन्ग से माँच आप लोग को और सेवा करेंगे दोस्तों। पहले हम चलते हैं कि पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे झूठा घूंटा है, पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे झूठा है वो अपना हो ना हो दिल पर राज हमेशा उसकी ही रहता है। तो ये बात है दोस्तों, और हम तुरंत चलते हैं। और आपकी आ जाने से क्या होता है दोस्तों, और मोहम्मद अजीज आपको क्या सुनाएगा, साधना संगम सरगम है इसमें, और फिल्म के नाम है गुथ गर्स, खुद गर्स दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

और आपकिया जाने से हमारा भी यहाँ पर मन बहुत चाहते हैं दोस्तों, और हम इस प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और कहते हैं सिखवा करने से, सिखवा करने से गए थे और इबादत से हो गई, सिखवा करने गए थे और इबादत से हो गई, तुझे भूलने की जिद थी मगर तेरी आदत से हो गई। और दोस्तों आज हम आप लोग को और तख्त सैफ तक नीख तक का कुछ गाना सुनाएंगे दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए उदित नारायण एंड अलका याग्निक।

0: आई मेरे, और क्या क्या आप लोग सुनते हैं, अलका और उदित नारायण का ये सॉन्ग है दोस्तों। और कहते हैं कि देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम में, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थी कि तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। नोकमाल्स नोकेर बेस्टेल इस्त्रात, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थी कि तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। दोस्तों तो आज आप लोग को हम कुछ शायर और शायरी की और मोहब्बत भरी लवली सॉन्ग्स आप लोग को लिए हम चलाएंगे। और एक और हो जाए, मरे तो लाखों होंगे तुझ पर, मरते तो लाखों होगे तुझ पर, मैं तो तेरे साथ जीना चाहता हूँ। दोस्तों और चला जाए और ये गाना कोर की पूछो जरा पूछो।
1: मुझे

और तुमसे ये दिल लगाने की सजा है। दोस्तों राजा हिंदुस्तानी 1966 भैया नहीं खंती ये गाना है। और पूछो जरा पूछो अलका और कुमार शानू का, आज हम आप लोग को कुछ गीत और सुनाएंगे हमारे प्यारे दोस्तों, और मोहब्बत भरी सॉन्ग समाज आप लोग को और सुनाते ही रहेंगे। हाल ऐसा है मेरा कि तेरा ही गले लगकर, हाल ऐसा है मेरा कि तेरा ही गले लगकर तेरे ही शिकायत करनी है तुझसे। और दोस्तों प्यार भरी और हम आज आप लोग को सॉन्ग सुनाते ही रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। और शायरी के और कुछ शायर के बातचीत भी, कुछ शायरी भी आप लोग को हम सुनाते ही रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। और कहते हैं कि यहाँ पर अलका फीना गई है दोस्तों और उदित नारायण।

दोस्तों, आप जहां भी हो, चाहे जौन देश में हो, हमारा प्यार आपके पास पहुंचे। और वो कहते हैं, वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाओगी। समझ गया दोस्तों, एक कहते हैं कि वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाऊंगी। जवाब मैं क्या दूं दोस्तों, जब सवाल ही पैदा नहीं होता है। समझ गए ना हमारे प्यारे दोस्तों, कि ये कहते हैं कि वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाओगी, जवाब मैं क्या दूं जब सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारे प्यारे दोस्तों, ये बात ही कि कहते हैं कि अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, प्यार की लंबी अनजाने हो गए हैं। जहां पर फूल खिलते हैं कभी, आज वहीं पर वीरान हो गए हैं दोस्तों। और ये सब बात कब होता है, जब प्यार में टकरार होता है। तो वो कहते हैं, अपनों के बीच बेगाने हो गए, प्यार के लम्बे अनजाने हो गए। जहां पर फूल खिलते थे कभी, आज वहीं पर वीरान हो गए है दोस्तों। और हम चलते हैं एक गीत की ओर। आ जाना, और फिल्म के नाम है कूली नंबर 1। भैया मिलकर सुना जाए।

दोस्तों अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और कुछ शायरी और शायरी हमारा आप लोग को लिए और हम कुछ बना कर लाए हैं कि कहते हैं मोहब्बत का एहसास हमारे दोस्तों हमारे चाहने वाले हमारे प्यारे प्यारे हमारे लवली लवली लोग और कहते हैं कि मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था। मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने किया था और मुझे हुआ था। समझ गए ना दोस्तों कि मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने मोहब्बत किया था और मुझे हुआ था। दोस्तों ये तो बात भी होता है ना प्यार में कभी कभी, और प्यार में ये भी होता है दोस्तों कि रूह की जगह तुम होते मेरे जिस्म में, रूह की जगह तुम होते मेरे जिस्म में, जब तुम छोड़ कर जाते तो हम मर जाते। और हम चलते हैं और एक प्यार भरी गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए।

लवर्स, ओनली लवर्स दोस्तों। और हम यह कहते हैं कि होशे हालात पे कबूल तो कर लिया मैंने, होशे हालात पे कबूल तो कर लिया मैंने, उन्हें देखकर फिर से होश खो गए तो मैं क्या करूं दोस्तों। कि होशे हालात में कबूल तो कर लिया मैंने, उनके देखकर फिर होश खो गए तो क्या करूं हमारे दोस्तों। मुझे नहीं मालूम है प्यारे लोगों, मुझे नहीं मालूम है वो पहली बार कब अच्छा लगा। मुझे मालूम नहीं है कि पहली बार वो मुझे कब अच्छा लगा, मगर उसके बाद कभी बुरा भी नहीं लगा हमारे दोस्तों। और हम चलते हैं और एक गीत की ओर, कहते हैं मुझे जीने नहीं देते हैं याद तेरी।

और मुझे जीने नहीं देती। और ये याद तेरी दोस्तों, और आज हम आप लोग को श्री फॉर द लवर्स के लिए कुछ शायरी है यहाँ पर हम और आपको सुनाते हैं कि कहते हैं कि प्यार वो नहीं, प्यार वो नहीं हमारे प्यारे दोस्तों, प्यार वो नहीं जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार वो नहीं जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार वो है जो उसकी खुशी के लिए अपना अरमान छोड़ दे। यामिन से प्यार वो नहीं है, प्यार वो नहीं है जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार सिर्फ वो है जो उसकी खुशी के लिए अपना अरमान छोड़ दे। फॉर द लवर्स। और दूसरा है मुस्कुराते हैं लब, मुस्कुराते हैं लब आंखों में नमी है, मुस्कुराते हैं लब आंखों में नमी है, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास, बस एक आपके कमी है दोस्तों, आपकी कमी है। और सुना जाए अब क्या है,

0: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3352 2047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Wingtech heeft in China

फाहुंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहुंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहुंड हिंदुस्तानी रेडियो।

दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रही हूँ जिसका नाम है स्वप्न। सपने, सपने हमें क्यों आते हैं, सपने हम क्यों देखते हैं और उन सपनों का मतलब क्या है, इस सब विषय के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी।

स्वप्न विश्लेषण, स्वप्न की परिभाषाएं, यानी सपने कितने प्रकार के होते हैं और उसकी क्या परिभाषा है। भारतीय मत, जागृत अवस्था में हुए संस्कारों से उत्पन्न ज्ञान अवस्था का नाम ही स्वप्न है। जब हम जाग रहे होते हैं तो जो चीज़ें हम देखते हैं और जब सो जाते हैं और जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उसी को हम सपना या स्वप्न कहते हैं। आरसत्तु, स्वप्न नींद के समय का मस्तिष्क का जीवन है। जो आरसत्तु एक बड़े वैज्ञानिक हुए हैं उनका मत है कि स्वप्न नींद के समय हमारे मस्तिष्क का जीवन है। ब्रिज, अवस्था शारीरिक परिणाम ही स्वप्न है। जब हमारा शरीर काम नहीं करता और हम नींद में होते हैं उसी को स्वप्न कहा जाता है। फ्राइट, नींद में मन पर क्रिया करने वाले उद्दीपकों को उनके ऊपर होने वाली प्रतिक्रिया ही स्वप्न है। कि जब नींद में होते हैं और हमारे अंदर सारी चीज़ें मस्तिष्क में चल रही होती हैं और उसी को स्वप्न का नाम दे दिया जाता है। डायलॉग आलिस, जागृत अवस्था में जिन लक्षणों के कारण सर्वाधिक प्रबल रूप में कर्ता प्रभावित होता है उस अवस्था की पूर्ण प्रवृत्ति ही स्वप्न है। स्वप्न हमारे नरक और स्वर्ग की ओर प्रवृत्त होने का बैरोमीटर है। स्वप्न दर्पण है चित्त की दशा का। ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वासना का प्रतिबिंब ही स्वप्न है। सर्वप्रथम स्वप्न ब्रह्मा जी ने देखा था। 33 देवों ने स्वप्न को शक्ति प्रदान की। स्वप्न तत्व, जिन व्यक्तियों की देह में पृथ्वी तत्व की मात्रा अधिक होती है उनका बाह्य आवरण थोड़ा कठोर, हड्डियां मजबूत और देह पर बालों की भरमार होती है। पृथ्वी तत्व तपोगुण प्रधान होता है, इसलिए ये जातक अधिक आलसी, अधिक सोने वाले, शीघ्र डर जाने वाले, देह से निर्णय लेने वाले, दीन स्वभाव वाले, अधिक मीठा खाने वाले तथा अधिक स्वप्न देखने वाले होते हैं।

सुनने वालों, अभी तक आपने सुना कि स्वप्न की परिभाषा क्या है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। मन तथा स्वप्न, यह मन कभी निष्क्रिय नहीं बैठता, कुछ ना कुछ चिंतन करता ही रहता है। स्वप्नों के विश्लेषण का कोई वैज्ञानिक नियम भी नहीं होता। लिंग, स्वभाव, वातावरण की प्रतिकूलता के अनुसार एक ही प्रकार के स्वप्न विभिन्न व्यक्तियों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालते हैं। सुनने वालों देखो ना, जैसे हम सपने लेते हैं तो जैसे जिसका स्वभाव होता है उनके सपने भी अलग अलग होते हैं, व्यक्तियों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालते हैं। विभिन्न जातियों और देशों के लोग एक ही प्रकार के स्वप्नों की व्याख्या अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार अलग अलग प्रकार से करते हैं। स्वप्न का कोई ठीक और निश्चित कारण नहीं बताया जा सकता। अतःकरण में संस्कारों का जो समूह एकत्र रहता है उसी में से किसी एक या अनेक का चित्र शुद्ध अथवा विकृत रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। संस्कार अथवा चिंतन निकट वर्तमान कालीन अथवा दूर भूतकालीन भी हो सकता है। कुछ स्वप्न ऐसे भी होते हैं जो भविष्य में घटित होते देखे गए हैं। काम स्वप्नों का अंतिम फल वही होता है जो जागृत अवस्था में किए जाने वाले विषय भोग का होता है, और इसको स्वप्न दोष कहते हैं, जो एक रोग होता है।

सुनने वालों, अभी आप लोगों ने सुना स्वप्न की परिभाषा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फल समय, स्वप्नों के फल पर विचार करते समय सर्वप्रथम यह बात देखी जाती है कि स्वप्न रात्रि के या दिन के सोते समय किस भाग में देखा गया है। दिन में देखे गए स्वप्न सर्वथा अविश्वसनीय माने जाते हैं। रात्रि के समय उत्तरार्ध में देखे जाने वाले स्वप्न अधिक विश्वसनीय होते हैं और चौथे पहर में ब्रह्म मुहूर्त के निकट काल में देखे गए स्वप्न सच्चे होते हैं। रात्रि के चार पहर में देखे गए स्वप्न इस प्रकार फल देते हैं। ये तो आप सब लोग जानते हो सुनने वालों कि जब दिन में सपने देखते हैं वो ज़्यादातर सच नहीं माने जाते, और जब रात को सपने देखते हैं उनको ही हम लोग सच मानते हैं या सोचते हैं कि वो सपने ही ठीक हैं। और उसके चार पहर बताए गए हैं जो हैं, पहला पहर के सपने एक वर्ष में, दूसरे पहर के सपने छः मास में यानी छः महीने में, तीसरे पहर के सपने तीन मास में तीन महीने में, चौथे पहर के एक मास में यानी एक महीने में, और प्रभात के सपने तत्काल यानी प्रभात सुबह के जो सपने हम देखते हैं वो हमें तत्काल उसी समय दिखाई देते हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी कार्य की सिद्धि असिद्धि स्वप्न में देखना, कि जैसे हम में सपने जो आते हैं उनमें सिद्धि क्या है और असिद्धि क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। शैया पर बैठकर ओम हील हील शून पणे स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करके भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे देवे दवेश, हे शूलधारी, हे वृषध्वज, मैं सोता हूँ या सोती हूँ, मेरे कार्य में सिद्धि असिद्धि में कुछ भी फल हो उसे कृपा करके स्वप्न में कहिए। मैं आपकी शरण में हूँ, आप अजम्मा त्रिनेत्र ऐसे वाम विश्व रूप आप स्वप्न के अधिपति को मेरा नमस्कार है। इस मंत्र को एक बार जाप कर और पूर्व की ओर सिर करके दाहिनी करवट के बल शयन करें और स्वप्न की प्रतीक्षा करें।

राजा। सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सोने पर फल नाश। जो व्यक्ति स्वप्न देखकर फिर सो जाता है, वह मनुष्य स्वप्न से मिलने वाले शुभ अथवा अशुभ फल का भोगता नहीं होता। इसलिए शुभ स्वप्न दिखने पर बुद्धिमान पुरुष को पूर्ण नहीं सोना चाहिए और शेष रात्रि जागकर ईश्वर आराधना करते रहना चाहिए। यदि कोई पहले अशुभ स्वप्न देखे तो बाद के शुभ स्वप्न के फल को ही पाता है। बुरे स्वप्न को देखकर यदि व्यक्ति सो जाए अथवा रात्रि में ही किसी से कह दे तो बुरे स्वप्न का फल नष्ट हो जाता है। अथवा प्रातःकाल उठकर भगवान शंकर को नमस्कार कर स्वप्न फल निवृत्त के लिए प्रार्थना कर तुलसी के पौधे को जल देकर उसके सम्मुख स्वप्न को कहें अथवा अपने गुरु को स्मरण करें, तब भी बुरा स्वप्न का नाश होता है। आप तो जानते हैं कि जब हमें बुरे सपने आते हैं तो हम एक दूसरे से सुबह उठ के बातचीत करते हैं कि रात को हमने ये सपना देखा। सुनने वालों, जब हम अपना बुरा सपना किसी को बता देंगे, किसी से बातचीत कर लेंगे तो मन को एक तसल्ली मिलती है।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं कि स्वप्न तथा माया। स्वप्नों के गीत सदा अधूरे नहीं रहते, पूरे भी हुआ करते हैं। यानी कि जो हम सपने देखते हैं वो कभी अधूरे नहीं रहते, कभी कभी सच भी होते हैं सपने। ऐसी बात नहीं है सुनने वालों।

जो अपना होता है वह कभी सपना हो जाता है और जो सपना होता है वह कभी अपना हो जाता है। एक प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक फरियाड के अनुसार स्वप्न हमारी दबी हुई इच्छाओं का प्रकाशन मात्र है, विशेषता हमारी वह इच्छाएं जो समाज के भय से जागृत अवस्था में पूर्ण नहीं हो पाती स्वप्न में साकार हो जाती हैं। ये तो आप सब जानते हैं सुनने वालों। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा ये काम हो जाए वो काम हो जाए लेकिन नहीं हो पाता, और वही चीज़ें कई बार हमारे दिमाग में घूमती हैं और वो सपना बन के हमें दिखाई देने लग जाती हैं।

हृदय में दबी हुई प्रत्येक वासना स्वप्न में पूर्तिमान होकर अनेक कर्तव्य दिखाती है, किंतु उनके यह विचार एकांगी तथा अश्मातक ही ठीक है। स्वप्न की अपनी एक सांकेतिक भाषा होती है, जिसे समझने के लिए विशेष प्रकार की शब्दावली होती है। कोई दिव्य शक्ति मनुष्यों को स्वप्न के माध्यम से उनके शुभ या अशुभ भविष्य के विषय में सूचना दिया करती है। कुछ उन्हें अपनी चैतन्य आत्मा की शक्ति से प्राप्त सूचना बतलाते हैं। व्यक्ति को जब निद्रा आती है, यानी जब हम सो जाते हैं, तो उनका मन सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है। हमारे जन्म जन्मांतरों का इतिहास लिखा रहता है। हमारे शरीर में एक ऐसी नाड़ी होती है जिसमें हमारे जन्म जन्म का इतिहास लिखा रहता है। ऐसा केवल आत्मा की शक्ति के कारण ही संभव है, जो अजर अमर है। सभी जानते हैं सुनने वालों की हमारी जो आत्मा है वो तो अजर और अमर है। ये शरीर ही हम लोगों का अरे मर जाता है तो, और इसीलिए किसी प्रकार नष्ट नहीं होती। मानव देह में उपस्थित जीव आत्मा विश्वव्यापी परमात्मा की शक्ति का ही एक अंश है। उसका कभी नाश नहीं होता और वह पुराने जन्मों के संस्कारों को लेकर नए नए शरीरों में प्रकट होती रहती है। पूर्व जन्म के जो संस्कार बहुत बलवान हो और जिनकी जड़ें बहुत गहरी हो, वह इस पर जन्म में अनुकूल परिस्थितियां पाने पर पुनः याद आ जाते हैं और क्रियाशाली हो जाते हैं। जैसे हम जन्म जन्म से जन्म लेते रहते हैं और हमारी आत्मा तो अजर अमर है और उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि जब हम दोबारा जन्म लेते हैं, कई बार वो हमारे साथ ही रहती हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। डॉक्टर कलिटन का कहना है कि नींद में जितनी गहरी होगी सोपन उतने ही जीवन से जुड़े होंगे। एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए हैं कलिटन मन, उनका कहना है कि स्वप्न हम जितनी गहरी नींद लेंगे सपने उतने ही जीवन से जुड़े होंगे। स्वप्न देखना भी सांस लेने जैसी स्वाभाविक क्रिया है। नींद की गहराई पूरी रात सार्थक स्वप्न ना देखकर दो घंटे के लिए ही आती है, और सारी रात सार्थक स्वप्न ना देखकर यह अनुभूतियां बहुत थोड़े समय के लिए होती हैं। अस्त व्यस्त स्वप्न अधिकतर खाने की गड़बड़ी या मादक पदार्थों के सेवन के कारण आते हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। अब हम जिक्र करेंगे तुरीय व्यवस्था। इसका मतलब है कि जो साधक, जो आदमी जागृत स्वप्न और सुषमित इन तीनों अज्ञान अंधकार की अवस्थाओं को पृथक रूप से जान लेता है, वह ज्ञान और प्रकाश की तुरीयावस्था में प्रवेश पाता है। भगवान कृष्ण का गीता में योगी का रात्रि में भी जागते रहते रहने का संकेत इस अवस्था की ओर ही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो योगी रात को जागते हैं, ये संकेत उन्हीं की ओर है। उसमें चेतना का पूर्ण जागरण होता है, सारा अंत जगत प्रकाशित हो उठता है, अंत ज्योति से जगमगा उठता है। ऐसी महाज्योति जलने लगती है जो बिना बाती और बिना तेल के युगों युगों तक जलने की समर्था रखती है। यदि पूर्ण ज्ञान की अवस्था है तो और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। यही चमत्कारों का चमत्कार है। आप परमात्मा ही हो जाते हो, क्योंकि परमात्मा चेतना का सागर है, पूर्ण जागृति का प्रतीक है। इस पूर्ण जागृति की अवस्था को ही बुद्ध तत्व और शिव तत्व कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के सभी दुख विसर्जित हो जाते हैं। जीवन की प्रत्येक क्रिया उसकी साधना का अंग बन जाती है। वह चलते फिरते, उठते बैठते, पढ़ते लिखते, नहाते धोते साधनातर रहता है और सारी क्रियाएं उसके लिए जप, तप और ध्यान सिद्धि होती है, क्योंकि इन तपस्याओं की अनुभूतियां उसे सहज में अपने आप होती रहती हैं।

सुनने वालों, यह है फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो और इसमें आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्वप्न विज्ञान। ये इसका विषय है स्वप्न विज्ञान कि हमें सपने क्यों आते हैं और सपने हम क्यों देखते हैं और उनका मतलब क्या है। और आज मैं आपको स्वप्न की परिभाषा बता रही हूँ। हम आगे चलते हैं सुनने वालों। निष्फल स्वप्न, निष्फल स्वप्न की जिन सपनों का कोई मतलब नहीं होता, शारीरिक एवं मानसिक कारणों के बिना जो स्वप्न दिखेगा उसका ही फल प्राप्त होगा। निरोगी एवं प्रसन्न मन स्थिति में देखा गया स्वप्न भावी घटना का संदेश देता है। विकार रहित मन में दिखाई देने वाला स्वप्न ही उसके लिए उपयोगी होता है। विकार ग्रस्त मन में आया स्वप्न निष्क्रिय होता है। स्वयं स्वप्न देखने की इच्छा मन में ना हो उसके लिए कोई विशेष प्रयास ना किया गया हो एवं ना सार्गिक रूप में स्वप्न दिखे, तत्प्राय यह है कि स्वप्न पर किसी का वश नहीं चलता, वह निद्रा अवस्था में अवश्य ही दिखाई देता है।

वालों, अब हम आगे चलते हैं। फल संपन्न स्वपन कि जिन सपनों का फल हमें मिलता है या मिलने वाला है तो उसकी ओर हम बढ़ते हैं। इस उक्ति के अनुसार बिना प्रयास के मनुष्य को स्वप्न दिखाई देता है, ऐसे स्वप्नों का कारण अवश्य ढूंढना चाहिए। स्वप्न देवी सत्ता के अधीन होने से उसमें गलतियों का परिणाम भी कम होगा। ऐसे कारणों के लिए भी सपनों का सहारा निसंचोक रूप में ली, जिसकी जैसी भावना हो वैसा ही फल उसे प्राप्त होगा, यह सिद्धांत समेक्षी होता है। सुनने वालों, आप सबको पता है कि हम हमेशा सपने में जो चीज़ें देखते हैं वो कभी सच होती हैं, कभी सच नहीं होती, ये तो बात है। आज मैंने आपके लिए थोड़ी सी सपने की परिभाषा बताई है कि जो 10 परिभाषा है

सुनने वालों, आज मैंने आपके सामने स्वप्न की परिभाषा रखी और आपको कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें तो जरूर प्राप्त हुई होंगी। अगली बार हम फिर मिलेंगे, आगे अपना प्रोग्राम बढ़ाऊंगी अगली बार और सपनों के बारे में कुछ और जानकारी आपको प्राप्त होगी। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्व कार्यशु सर्वदा। रूबरू मिलने का मौका नहीं पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हार्दिक से नमस्कार करता हूँ। फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूँ और ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप इस समय फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे चून हैं और आज का विषय, उसके बारे में थोड़ा से मैं रख देता हूँ कि साल 2023 में 150 साल हुए हमारे पुरखों जो भारत छोड़ करके हमें और जाकर के सूरीनाम देश में अपना कंतरा काटे और वहाँ से आज हम सब उसकी बीच है हम सब और यहाँ हॉलैंड में भी आकर के रह रहे हैं। क्या हम उसके बारे में कभी चिंतन किए कि हमारा पर आजा, हमारा वृत्त आजा, हमारा वृत्त आजी कौन थे? तो इस अंतर्गत में कुछ मटेरियल भारत से भी और हम सब इस कार्यक्रम में जोड़ेंगे अभी। और ख़ास करके मैं आपसे गर्व के साथ ये कहना चाहूँगा कि अपना गांव जहाँ से हमारे पर पर पर दादा जो भारत को छोड़ कर के गए थे, वहाँ से और पंडित सूरज राज जी जो हम सब के साथ और अभी आगे कार्यक्रम में उसे टेलीफोन द्वारा और सम्मिलित करेंगे। आज के कार्यक्रम में हमारे पंडित नरेंद्र सरजू मिसिर जी जो भारत से लेकर के और मूर्ति जो सूरीनाम देश में गए हैं वहाँ पर स्थापित किए हैं, इन बातों के हम सब अभी आगे में सुनेंगे। ये ख्याल रखना कि कुछ मटेरियल जो भारत में बनाया गया है उसे भी कोशिश करेंगे और अभी आपके लिए रखने के लिए। तो दोस्तों, पहले हम उस गीत की ओर बढ़ेंगे, तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे।

तो ये है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और ये कार्यक्रम जो हमारे पुरखों जो 150 साल पहले सूरीनाम देश को और प्रवेश किए हैं, जो भारत देश को छोड़ करके सूरीनाम देश को गए हैं और वहाँ जा करके हमारे जो परिवार वहाँ शुरू हुआ सूरीनाम में, जिसका और बीच हम सब है आज इस कार्यक्रम में, उसके बारे में कुछ संदेश रखा जाएगा। ऐसा हुआ कि हम सब तैयार होकर और भारत देश पहुँचे और अपना परिवार के खोज में, तो परिवार के खोज खोजते खोजते और बहुत जो मेहनत से वो स्थान को प्राप्त किए जहाँ से हमारे पुरखों हमारे पर दादा अख्तिन ससन नई खंतक में, उस समय जब बोट अब्बे जहाज जो होते थे लकड़ी का और बनाया जाता था, जिसे हम सैल बोट जो हवा के माध्यम से और कुछ 3 महीना तक समुद्र के लहरों द्वारा भारत को छोड़ करके सूरीनाम को पहुँचे, इन फीरन तख्त दाख जो रईस दूर हुए थे, तो वहाँ जा कर के पहुँचे और वहाँ अपना कंत्राक जो होते थे उसको काट करके और अपना फिर परिवार घर गृहस्थी बढ़ाए। तो हम भारत देश में पहुँचे और पहुँचे कहाँ पर, एक स्थान है जिसे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है गोंडा, और गोंडा में गोंडा भी ठीक से और देखा जाए कि गोंडा एक डिस्ट्रिक्ट है और एक दौरप का नाम है भी, और दौरप में भी जो बड़े दौरप होते हैं उसमें भी छोटे छोटे और अपना इलाकाएँ होते हैं। तो एक होता है करगोपुर, और करगोपुर में हम लोग प्रवेश किए और वहाँ जबकि जा करके खोजा गया।

0: तो और मिला एक पंडित जी और उसके साथ हम कार्यक्रम में पंडित सूरज जी के साथ कार्यक्रम में आगे हम प्रवेश करेंगे।
1: देखिए जब आप पढ़े लिखे तो आपको ये तो क्लियर होगा कि ब्रह्म से
2: हम लोग
1: और शक्ति से
2: जी
1: हम लोग का प्रादुर्भाव हुआ।
2: सही बात।
1: सप्त ऋषि आए,
2: सप्त ऋषि
1: सनक सनंदन सनत को जो आए चार, और उसके बाद पांचवे नारद आए।
2: हाँ जी,
1: पांचवे नारद आए।
2: हाँ जी,
1: जो है तो सात और पांच 12 लोग हो गए।
2: हो गया 12।
1: 12 से हम लोगों का शुरू हुआ प्रसृष्टि का निर्माण।
2: शुरू
1: मनु सतरूपा आई, इनके द्वारा
2: हाँ जी
1: बना सब। ठीक है
2: जी।
1: अब जब हमारा गोत्र ब्रह्म है
2: जी,
1: हमारा गोत्र ब्रह्म है, फिर हम इधर उधर भटकने की जरूरत क्या?
2: जरूरत
1: हमारा गोत्र अच्युत है। अच्युत गोत्र यानी भगवान विष्णु का गोत्र होता है।
2: हाँ जी।
1: तो भगवान विष्णु का गोत्र अच्युत है, तो आप ये गोत्र लेकर के अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि निज गोत्र मेरा ब्रह्म है। जो हमारा गोत्र है वो ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कोई गोत्र नहीं है।
2: सही बात।
1: सप्त ऋषि भी तो ब्रह्म गोत्र से उत्पन्न हुए।
2: एकदम बिल्कुल।
1: तो जब ब्रह्म गोत्र से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, तो फिर जो है अब हमें ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं।
2: बिल्कुल ना, पर माथा पच्ची नहीं करेंगे तो कैसे आपके साथ यहाँ बैठे?
1: हाँ ये सही।
2: तो बोले प्यासा को आप समझ गए। तो मैं इसलिए आपका अप नंबर हो गया ना।
1: चलिए,
2: और जो इस समय हम लोग यहाँ पर ये ट्रैवल कर रहे हैं ये नहीं होता भी।
1: जी जी सही है।
2: समझ गया।
1: ईश्वर की कृपा थी, मुलाकात हो गई।
2: ये जो होना है वो होना है, और ये बड़ा ये तो मुझे, अरे यही तो मुझे देखना था।
1: दर्शन करवाते हैं। देखिए सबसे पुराना मंदिर है।
2: हाँ जी,
1: ये उदासीन आचार्य है, उदासीन आचार्य श्री चंद्र भगवान नानक जी के लड़के।
2: हाँ जी।
1: तो नानक जी का ये मंदिर है
2: जी,
1: शिव जी का मंदिर है।
2: ये तो जो सोचा भी नहीं था।
1: हाँ,
2: ये है मंदिर पुराना।
0: सुनने वालों, जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, तो ये आवास जो एक वहाँ करगोपुर में हम सब पहुँचे पुलिस खाना के पास, और जो प्रश्न किए तो वहाँ ये पंडित जी को हम सबको मिला दिया गया, और पंडित सूरज जी जो अपना मोटरसाइकिल पे आए थे, और हमने वहाँ का वातावरण, हमने वहाँ का, और पहुँचते हुए वो जो अपनापन, जो अपनापन होता है वो महसूस किया, और मोटरसाइकिल पे पंडित जी के साथ बैठ गए, और जैसे कि मोटरसाइकिल खींच रहे हैं आगे के ओर, तो सड़क पे देखने को मिलता है, पत्थर का सड़क था, पर पत्थर का सड़क पर आप ऐसा महसूस कीजिए कि पत्थर का सड़क पर फूलों का और गुलदस्ता बनाया गया था। सुनने वालों, और मोटरसाइकिल पे बैठे चल रहे हैं, आगे में देखते हैं कि एक महिला जो सड़क के किनारे खड़ा होकर के, और लोटा जो कहते हैं पात्र में जल सूर्यदेव को अर्पित करते हैं, और आगे में गाय का तबेला दिखाई देते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं, वहाँ एक व्यक्ति जो जैसे सूरीनाम में हम सब गर्मी में और धान काटते थे, वहाँ एक धान काट रहे हैं, और आगे बढ़ते हैं तो अपना ही गांव में जो महसूस होता है कि केन का झाड़ा, यानी कि यहाँ पर केन ढेर सारे हैं, और आगे मोटरसाइकिल पे बढ़ते हैं, और फिर जहाँ कुछ झुंड के साथ लड़के बैठे हुए अपने बातचीत कर रहे हैं, और थोड़ी दूरी पे वहाँ जो जैसे कि गांव के सबसे पुराना मंदिर, और उसका दर्शन हुआ। तो अभी इस बात के बारे में और भी चर्चा होगा, पहले हम मंदिर का दर्शन करते हैं।
2: जय हनुमान बाबा। क्योंकि पुलिस वाला ने भी कहा कि भगवान तो आप ही है, ऐसे ही कहा ना। जय हो। देखो यहाँ ये मंदिर का नाम शुभ नाम का
3: जय हो। जय हो प्रभु। पहले माथा तो टेक ले।
2: हो माथा टेक ले। जय हो प्रभु।
1: सर झुका के
2: ओ लगत चोट पता चला।
1: आइए दर्शन कर लीजिए हनुमान जी महाराज का।
2: हाँ हनुमान बाबा, फोटो वो बना लेते हैं।
1: आइए फोटो खिंचवाते हैं।
2: हनुमान बाबा, हम लोग आ गए बहुत दूर से। जय हो।

0: ये हनुमान जी महाराज है, सबसे पुरानी मूर्ति है।
1: बहुत पुराना मंदिर भी जैसे आपने कहा,
0: बहुत पुराना मंदिर है। हाँ। ये जो है भगवान श्री चंद्र नानक पंथ का ये मंदिर है। हनुमान जी महाराज सीताराम परिवार से इत्यादि विराजमान है। आगे चलिए आपको शिव जी के मंदिर दिखाता हूँ, जहाँ पंथ, हाँ एक मिनट साथ में हो जाए, फोटो हो जाए।
1: सुने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने और ये कार्यक्रम में जो रखा जा रहा है कुछ बेल्ड जो टेलीफोन द्वारा वहाँ पर बनाया गया, उसे हम सब भी इस कार्यक्रम में रख देते हैं ताकि आपको वो महसूस हो सके कि ये वहाँ पर का वातावरण कैसे हो गया था। और अपना परिवार के खोज में जो हमारे साथ और भी लोग थे और जा कर के कितना खुशियाँ महसूस कर रहे थे, हम सब कुछ बेल्ड मटेरियल है शायद, बेल्ट मटेरियल देख करके आप और भी समझ पाते, पर वो तो रेडियो द्वारा नहीं रखा जा सकता। पर कुछ कोशिश है कि हम अपना और संदेश आपके साथ बांट सके। जो हम सब अभी हनुमान जी का मंदिर में दर्शन दिए, एक ऐसा मंदिर, एक पुराना मंदिर जो भारत के और करगोपुर में, जिसमें और प्रवेश करते ही मन एकदम पुलकित हो जाता है। तो हम पंडित सूरज जी से अभी और भी संदेश सुनेंगे।
2: ये है मंदिर गांव में खरगोपुर, और हम लोग ने यहाँ पहुँच गए हैं। ये जय शिव शंकर भवानी।

0: सुनने वालों, जैसे कि हम सब मंदिर का दर्शन किए, हनुमान जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर जो वहाँ है, और उसके बाद में मंदिर से बाहर निकलते तो एक बड़ा सा वृक्ष था, और बड़ा सा वृक्ष के बगले में एक तालाब, तालाब वाटर फाइफर जो वहाँ पर बनाया गया है, कितना सुंदर रूप से जो और है, और उसके पाछे में एक समाधि। तो समाधि का मतलब क्या है, इसे तो हम सुन करके और चकित हो गए, पर वो समाधि के बारे में बताया गया, और उसके बारे में तो एक अलग सा कार्यक्रम हम रखने वाले हैं और ज्योति का प्रकाश के अंतर्गत। पर समाधि वहाँ पर एक संत का वहाँ एक समाधि बनाया गया है, और उसे और देख करके भी दैट इज ओकन हेल बिसोंदर है दच दत कांसिन एंड दत दत बस्तात इन इंडिया, ऐसा ऐसा चीज़ों जो हम और भी शायद तीर्थ स्थानों पे नहीं देखेंगे, ये सुंदर सा और स्थान से देखे। तो सुनने वालों, आगे का कार्यक्रम में हम सब बढ़ रहे हैं, और वहाँ जो मंदिर के पास एक छोटा सा शहर है जिसे तौन सिटी कहते हैं वो लोग, जो बखेन यार नई खंतीन होंदत में जो अभी ब्रिटेन का राज चल रहा था वहाँ, और उसे तौन सिटी बनाया गया एक छोटा सा गांव में। और ऐसा समझिए कि एक रास्ता जो पत्थर का है, और छोटे छोटे दुकानें बगल बगल करीब करीब में है, और सब एक दूसरे के वहाँ पहचानते हैं, क्योंकि मैं पंडित जी के साथ वहाँ और प्रवेश लिए है। मंदिर के बस कुछ मलिटो यानी कि 2-3 मलिट का रास्ता था।
1: ये गांव है हम लोग,
2: ये खरगुपुर है,
1: खरगुपुर गांव,
2: खरगुपुर नगर पंचायत,
1: नगर पंचायत। और ये हम लोग पीछे के रास्ते से जा रहे हैं मार्केट,
2: नहीं अभी मार्केट तो उधर
1: जाए, वो उस तरफ है,
2: टाइम में है, गुरु जी गए मार्केट में, हम जब तक जो घूम आएंगे तब तक जो है जो वो भी आ जाएंगे, गुरु जी आएंगे तो उनसे भी हो जाएगी आपकी मुलाकात।
1: अच्छा
2: आइए चलते
3: हैं।
1: समाधि
3: सेतन वर्ति नाम लख बखराफ अध्ययन वर्ग नहीं है क्रीम तो मलित वर्ग क्रीम आपके पास समा का देना मिशन ट्रांसलेट
2: जी जी जी जी।
1: ये राजेंद्र जी बहुत चलाक आदमी है, ये ट्रांसलेशन में बहुत बढ़िया। पंडित जी कौन सा पूजा होता है
2: यहाँ? बाबा श्री चंद्र का पूजा होता है, और यहाँ पे भगवान शिव जी, भगवान हनुमान जी महाराज, सीताराम परिवार, ये सब जो है विद्यमान है इस मंदिर पे। ये उदासीन संप्रदाय का मंदिर है, राम जानकी मंदिर उदासीन आश्रम खरगुपुर के नाम से विख्यात है। इसमें जो भी लोग अपनी मनोकामनाओं को मान करके यहाँ आते हैं और उनके कार्य जो है पूर्ण होते हैं, सिद्ध होते हैं, उनके भगवान श्री चंद्र उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, यहाँ के क्षेत्र के लोगों की मान्यता है। और हम सभी, हमारा बड़ा भाग्य है कि हम जो है मंदिर के सेवादार के रूप में बाबा श्याम सुंदर दास तूफानी बाबा जी जो हमारे गुरु जी हैं उनके सानिध्य में हम सही मंदिर पे रहते हैं। आप लोग आए हैं, इतने दूर से आए, कहाँ से आए हैं आप?
1: होलैंड
2: जर्मन के पास,
1: जर्मन के बगल बिल्कुल करीब है।
2: तो आपकी जिज्ञासा यहाँ आने की कैसे?
1: जिज्ञासा ये हुआ कि कितने बार देखा कि लोग अपना खोज किए
2: जी,
1: मुझे भारत से कुछ 2001 से संबंध है, और मन में ये उठा
2: वही जो है हॉलैंड जहाँ रहते हैं वही,
1: हाँ हाँ हाँ,
2: तो वहाँ करते हैं,
1: तो वहाँ पर ये एक से हुआ दो, यानी कि ऐसे आगे बढ़ता गया।
2: ये मार्केट यहाँ से प्रारंभ होता है,
1: वो मार्केट तो आपने कहा था 10 मिनट का, ये तो 2 मिनट
2: अब स्टार्ट हो गए।
1: हाँ ये तो मार्केट है,
2: ये हमारा मार्केट है, और यहाँ पर जो है छोटा सा एक कस्बा है, और यहाँ से आगे 2-3 मीटर जाएंगे का मंदिर,
1: अच्छा,
2: जो कि बहुत ही भव्य है, दिव्य है, एशिया का नंबर एक शिवलिंग है, सबसे ऊंचा शिवलिंग है।
1: अच्छा,
2: अगर आप उसके दर्शन जो है करना चाहें तो अभी बाहर से है रास्ता, वहाँ से चलते हैं, वहाँ पे दर्शन
1: कीजिएगा। यहाँ ले लेते
2: नहीं, वो तो है ना,
1: ओ
2: आपके पास से वही गाड़ी, इसको बढ़िया हाईवे रोड बना है। अब योगी जी के शासन में जान लीजिए यहाँ का बहुत बढ़िया विकास हो गया। योगी जी ने अयोध्या में जिस तरह तरीके से महोत्सव मनाया है, अब जान लीजिए पूरा जनता जागरूक हो गई
1: जी,
2: आज लोग अपने धर्म को पहचान रहे हैं, सनातन धर्म क्या है इसके बारे में लोग जान रहे हैं, आज बच्चा बच्चा जो है अपने धर्म को पूर्ण रूप से जान रहा है। तो ये बहुत बड़ा अलख जगह है, आदरणीय योगी जी के,
1: खरगोपुर बाजार है ये सुंदर से।
0: दोस्तों जैसे कि अभी आपने ये कार्यक्रम में सुन रहे हैं कि कुछ मटेरियल जो हम सब टेलीफोन द्वारा वहाँ से और बनाए थे और इसी कार्यक्रम में रख रहे हैं ताकि आपको ये महसूस हो पाए और वहाँ का वातावरण किस प्रकार से है। दोस्तों ये हुआ कि हम सब वहाँ पर पंडित जी के माध्यम से हम सब वहाँ पहुँचे जो उस शहर का सबसे अवस्था वाला व्यक्ति था। वो बाबा जी कुछ 100 साल का था और उसके पास हम सब जा कर के पहुँचे और वहाँ ये प्रश्न रखे कि आप हम जिस जिस नाम से जुड़े हुए हैं जिस नाम को चला रहे हैं उस नाम को कोई व्यक्ति को वहाँ पहचानते हैं या नहीं। और वहाँ इस बात को भी ये पता चला कि ऐसा हुआ जो 150 साल पहले के बात होते हैं सुनने वालों, तो उस समय से और आज तक भी काफ़ी और बदलाव भी आ गया है देश में। कोई कोई बिल्कुल पूरा परिवार वो और स्थान को छोड़कर दूसरा स्थान से चले गए हैं और कोई कोई भी अभी तक वहाँ रह रहे हैं। और जैसे कि बाबा जी हम सबको और अपना संदेश सुनाए कि 5 पीढ़ी तक उन्होंने ऐसा दर्शन दिलाए कि कैसे एक ही व्यक्ति जो अपना जिस प्रकार से वो बाबा जी रह रहे इतना अवस्था का हो गए हैं और उनको इतना व्यक्ति को पता था। तो हम देखते हैं और कोशिश करते हैं ये जो मोबाइल द्वारा मटेरियल इकट्ठा गया है उसे रखने के लिए
2: बाजार में आप आए। हमारा भाग्य है कि आपको लेकर के हम मार्केट टहला रहे हैं। जो अलैया गट्टे की दुकान है, सब छोटे व्यापारी यहाँ पर जो अपना व्यवसाय
1: व्यापारी करते हैं।

0: वो कश्यप गोत्र से
1: काम चलता है,
2: कश्यप से निकलता। हम ज्यादातर इस बारे में जानते भी हैं।
3: अच्छा,
2: नहीं वो तो मिल जाता 1826 नहीं, ये आप 1192 की अगर खोज करें तो हम बता देंगे आपको।
1: अच्छा,
2: यदि आप 1192 की वाली बात पूछेंगे तब भी हम बता देंगे आपको खरगपुर में।
1: वही बात समझ गए, वही बात
0: मार्केट में हम बता रहे हैं। मार्केट में 1896 में हमारे पूर्वज रहे, 1896 के बाद में
2: ये 1904 में टाउन एरिया बनी।
0: मैंने आपसे बताया 1904 में ये टाउन एरिया बनी और देश आजादी के बाद से इलेक्शन होने लगा और उसके पहले बहुत सारे लोग आए गए।
1: कितना बदल गया,
0: बहुत बदल गया। अब देख जब आए होंगे
2: पहले आप लोग नहीं,
1: ना
2: हम देखने से भी हम लोगों को मालूम हो जाता है कि आप लोग किस कास्ट से, आप लोग अपर कास्ट से।
0: चलिए आप अभी आपको जन्मभूमि मिले है
4: सीधे नाम राम का देश तो यहाँ चल गई, लेकिन सर नाम से फिर तो हॉलैंड आ गया यूरोप में, हॉलैंड से तो यहाँ आ गया, लेकिन भूमि यहाँ है कि यहाँ पर चलते तो आपको लगते है कि यहाँ के हो।
0: अब यहाँ से 18 किलोमीटर दूर भगवान लवकुश का क्षेत्र है, जहाँ पे भगवान की गायें, ये गोंडा में गाय चरती थी और जो है राज्य उनका लवकुश का श्रावस्ती है, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ।
5: सुनो वालों, ऐसा हुआ वहाँ पर हम सब बैठ के बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं और उसी समय पे वहाँ पर मीडिया वाला भी उपस्थित हो गए। मीडिया वाला भी अपने ओर से और जोर डाले और जाकर के फिल्म बनाई, यूट्यूब पे रखा गया है और उससे और खरगोपुर में जो एक गांव है वहां पर दिखाया गया। तो कार्यक्रम को आगे अभी हम सब कुछ और रखने वाले हैं। ये आप सुन रहे हैं जो मटेरियल जो टेलीफोन द्वारा बनाया गया था और वहां का हमारे अपनापन जो जैसे कि अभी आप महसूस कर रहे होंगे, तो हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे।
0: उनके पूर्वज
1: और जदुनाथ नहीं था भाई,
0: जदुनाथ कोई
1: उनका बाप का बाप
0: जगुनाथ जगन्नाथ जगन्नाथ
1: वो जो
0: अब आप 18,000 किलोमीटर से दूर खाली यही पता कर रहे हैं।
6: हाँ, अपने जन्मस्थली
7: जैसे कसस आपके संबंध
0: ये वहाँ इंकित है, इनके जो पास जो कागज है वो खरगोपुर ही दर्शा
1: और नहीं देता। और उस टाइम पे नहीं था सब कुछ ना, कंप्यूटर था ही नहीं, तो वो जो जो बोल दिया तो लिख दिया।
0: अच्छा, वो मोहल्ला
7: तो उनके भाई जगदम्बा रहे, तो वो सब मर मराए गए सब।
0: उनके पूर्वज
1: और जदुनाथ नहीं था भाई,
0: जदुनाथ कोई
1: या उनका बाप का बाप
0: जगुनाथ जगन्नाथ जगन्नाथ
1: वो जो 1896 में गया तो लिखवाया था 26 साल का, पर वो कॉन्फिडेंट नहीं कि 26 साल का
0: यही पता कर रहे हैं।
6: जन्मस्थली
7: जैसे कसस आपके संबंध
0: ये वहाँ इंकित है, इनके जो पास जो कागज है वो खरगोपुर ही दर्शा
1: और नहीं देता। और उस टाइम पे नहीं था सब कुछ ना, कंप्यूटर था ही नहीं, तो वो जो जो बोल दिया तो लिख दिया। दादाजी कैसे चार भाई थे?
6: जगत मणि चार भाई थे, ब्राह्मण।
0: जगत मणि थे ठाकुर और
7: विश्वनाथ
0: संसारी,
1: ऐसे
0: ये चार भाई थे और बाकी ठठेर में
1: 1904 में ये दूसर सेटी बना।
0: 1904 में
6: जब पूरा पूरा सब गायब होगा,
0: अब इससे पहले घर द्वारिया होता रहा।
7: जय देखो हम बताइए, पहले अंग्रेज जब आवा है 1857 में यहाँ अंग्रेज भारत पे यहाँ कब्जा की, 1860 में यहाँ बंदोबस्त अव्वल बनाई,
6: बंदोबस्त अव्वल
7: बना, तब वो पूरे जिला बनाई, बाजार के नक्शा बनाई, उसके बाद अव्वल के बाद फिर उमा बना है 72 में, पहले बना जब 72 नहीं घुमा बना 47 जो अब सब पटवारी उठवारी
8: अच्छा अच्छा हाँ
1: 47 में यानी 75 साल पहले के बाद
7: और उसके बाद में 72 में आखिरी बना है लेकिन वही आबादी के नहीं बना है खाली खेत खरियान बाग बगीचे बना अब आपके बहुत दिन तो हो गया
1: अब बहुत दिन हो
8: पांचवी पीढ़ी
7: पांचवी पीढ़ी देर नहीं लगता देखो लाला महादेव श्यामलाल राजकिशोर
6: और
7: कल्लू लड़का पांच पीढ़ी हमारे सामने हो गई
8: पांच पीढ़ी आपके सामने
7: बड़ी बात नहीं है समय ज्यादा हो गया
8: समय बहुत ज्यादा
5: है। दादाजी जो भारत करगोपुर में सबसे अवस्था वाला आदमी व्यक्ति जो वहाँ पर हम सबको अपना संदेश सुनाए और जो संदेश को रखे कि कैसे पांच पीढ़ी उसके सामने जन्म लिया और फिर जाकर के आज भी वो और स्वस्थ हम सबको हम सब के साथ बात किए और जो रेडियो में कोशिश किया गया रखने को और शायद क्वालिटी जो हमारे और वॉइस का उतना बढ़िया नहीं होंगे पर संदेश जो दादाजी ने रखे तो संदेश से हम सबको और ज़रूर उस पर ध्यान देते हैं और ज़रूर इसके बारे में सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों जो भारत को छोड़ करके सूरीनाम आए थे क्या हम कहाँ से आए थे हमारे बीच कहाँ से रखे हुए भारत जो हमारी मातृभूमि ही कहलाते हैं मातृभूमि है और क्या हम अपने जीवन में जो ये सुंदर सा शरीर जो ये पांच तत्वों का बना हुआ शरीर है इसके लिए तो देवताओं भी तरसते हैं क्या हम उसके कभी खोज किए हैं। इस साल हम सब जो इसी प्रकार के कार्यक्रम में और यानी कि तेईमा जो एमिग्रासी नार सूरीनाम इसी अंतर्गत में और भी कार्यक्रम बनाया जाएगा आप के ओर से जब इसमें आप सहयोग देना चाहते हैं आप कोई के और किस प्रकार से आपके अवस्था वाला आपके नानी नाना आजी आजा अभी जीवित है और वो वॉइस आप रिकॉर्ड करवाना चाहते हो तो ज़रूर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो में मालूमात कीजिए और मांग कीजिए संजय को और संजय जो कोशिश करेंगे मैं ज़रूर इस बात को कोशिश करेंगे कि वो वॉइस जो आर्काइव में रखा जाएगा और ये हम अपना यानी कि उनस एख आइडेंटिटी को और हम जान सकेंगे। तो दोस्तों हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे हमारे न्यूज़ और कमर्शियल के बाद हम सब फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: सुनने वालों, जैसे कि हमने कार्यक्रम बना रहे हैं और कार्यक्रम जो हमारा गांव से जुड़ा हुआ है, भारत भारत में एक, जैसे कि अभी आप सुन भी लिए हैं कि ये हमारा जो जहां से हमारे पुरखों जो आज से 150 साल पहले छोड़ करके सूरीनाम को गए थे और वहाँ का त्योहारों कैसे मनाया जाता है, तो हम इस समय लाइन पे आ रहे हैं हमारे श्री पंडित सूरज देवराज जी से, और जो हम सबको वहाँ पर का वातावरण वहाँ के और संदेश वहाँ से और हम सब के सारा वृतांत जो सुनाए हैं, तो हम पंडित सूरज देव राज जी को और लाइन पे ला रहे हैं, और ताकि हम सबको जो वहाँ अभी तक जो अपना गांव है वहाँ का वातावरण, वहाँ कैसे वो त्यौहार, जैसे होली हम सब यहाँ मनाते हैं, जैसे दिवाली हम सब यहाँ मनाते हैं हॉलैंड में, सूरीनाम देश में जो हमारे पुरखों लेकर गए थे वहाँ से हम सब यहाँ आकर के मना रहे हैं, तो हम इस समय लाइन पे आ गया। मैं देख रहा हूँ कि सूरज पंडित सूरज देवराज जी, और पंडित सूरज जी आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़ रहे इस कार्यक्रम में। तो सूरज जी, भला ये बताइए कि जो हमारे पुरखों लेकर गए हैं और अभी तो हम सब उसी तरह से और चला रहे हैं कार्यक्रम, पर हमारे गांव में कैसे और करगोपुर में कैसे त्यौहार जैसे होली पे खास करके मनाया जाता है?
1: जी जी, जैसा कि मैं आपको बताऊं, हमारे खरगोपुर में गोंडा जनपद है, गोंडा जनपद का नगर है खरगोपुर, जो 1904 में अंग्रेजों के समय पे भी टाउन एरिया रहा है, और उस वक्त से हमारे यहाँ परंपरा चली आई है, कोई ये हमारी परंपरा तोड़ नहीं पाया है। और ये प्रभाव जब हमारा देश आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद से हमारे खरगोपुर में, जैसे मथुरा में होली होती है, ऐसे हमारे यहाँ लोग कम से कम 8-10 जिलों के लोग हमारे यहाँ होली देखने आते हैं। होली में खासकर पर्व ऐसा पर्व मनाया जाता है, ऐसी व्यवस्था की जाती है कि दिन में हम लोग जुलूस निकालते हैं, लोग ग्रुपिंग वाइज जो है एक भारी संख्या में पूरे नगर के लोग, आसपास के क्षेत्र के लोग एकत्रित होकर के ढोल नगाड़े के साथ में, साउंड ऑन के साथ में जो है वो पूरा जुलूस निकालते हैं, और जहां जहां होलिका दहन की जाती है वहां वहां जाकर के दर्शन करते हैं, उनका भभूति लेते हैं, और उसके बाद में फिर ये कार्यक्रम होली खेलते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, गुजिया मिठाइयों जो है अंबाल लगी रहती है, हर लोग एक दूसरे से मिल करके खाते पीते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जब शाम होती है, शाम होते होते एक नई रोशनी उदय होती है और हमारे यहाँ सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, और एक नई राधा कृष्ण के साथ, जो भगवान भोलेनाथ के साथ, पार्वती जी के साथ में, हनुमान जी के साथ में एक दिव्य भव्य झांकी निकाली जाती है, जो पूरे नगर के क्षेत्र के लोग और आसपास के लोग, आसपास जिलों के लोग आते हैं, और पूरे प्रशासन के साथ जो एडिशनल एसपी एसपी लोग रहते हैं इस कार्यक्रम को संपन्न करवाते हैं, और दिव्य और भव्य झांकी होती है, और ये पूरे नगर का एक जो है एकमात्र ऐसा त्योहार होता है, ये आपके खरगोपुर का, विशेष रूप से खरगोपुर में, आसपास जिले में ऐसा कार्यक्रम भी नहीं होता है।

0: तो सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने पंडित सूरज जी की, जैसे कि हम लोगों ने भी फिर भी कुछ उसमें से मैं निकाला हूँ कि जैसे होली में अभी जैसे पंडित जी ने कहा कि खाने वाला पकवानों में और गुजिया, तो ये भी आज तक हम लोगों मनाते और बना कर के खाते हैं इस त्यौहार में। पर जिस प्रकार से और जुलूस निकलते हैं, जैसे कि अबतोख बोले जाते हैं, और हर एक स्थान पे जहाँ पर जैसे पंडित जी अभी और चर्चा किए कि जहाँ होली का दहन यथा होली को और दहन मनाया गया, वहाँ वहाँ जा कर के और सभी मिल कर के एक दूसरे के साथ मिलते हैं। पर पंडित जी ये बात हो जाता है कि हम लोगों ने भी सूरीनाम देश में भी कुछ देहाते थे और जहाँ पर कुछ 60 लोग का परिवार रहते थे और वहाँ घर घर जैसे क्रोनमबेरो सूरीनाम में एक स्थान है, उसे क्रोनमबेरो कहा जाता है, वहाँ भी घर घर जा कर के और ये जो चौताल आदि किया जाता था। तो जैसे कि अभी आपने चर्चा की है तो वहाँ का और ऐसा वातावरण वहाँ का करगोपुर का कैसे किया जाता है?
1: यहाँ पर जो है जितने भी लोग होते हैं वो अपने स्थान पे जाकर के अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, मंदिरों पे जाते हैं, दर्शन करते हैं और चौपाल लगा करके जो है हारमोनियम के साथ ढोलक के साथ बढ़िया जो है खेले अवध में होली ऐसे करके गानों के साथ में जो है और तमाम प्रकार के जो है बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, आयोजन किए जाते हैं और हर लोग जो है हंसी खुशी माहौल के साथ ऐसे ही जो है होली मनाई जाती है और ये 8 दिनों तक लगातार चलता है। 2 दिन पहले से ही तैयारी होने लगती है कि हाँ भैया होली है, होली है। हमारे यहाँ बहुत विधवत तरीके से और हमें बड़ा गर्व है कि आप वहां पर भी अपनी संस्कृति को नहीं भूले और चौपाल लगा करके हर जगह जा करके लोगों से होली मिल रहे हैं, होली खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ी विशेष बातें हैं। और

ये तो गर्व का बात हो जाता है पंडित जी ऐसा बात सुनने में, क्योंकि हमें जरूर जो हमारे पुरखों ने लेकर गए भारत से और आज तक हम लोगों ने करते आए हैं, और हर हर जैसे कि आप लोगों पूरा सब जगह जा पाते हैं, तो हम लोगों का यहाँ जो शहर थोड़ा दूर दूर से है, जैसे कि देनहाग, रोटरडम, लेवार्ड और आम्स्टरडम, इन शहरों में होलिका दहन